0: தொடர்வது ஹிந்தி மற்றும் ஆங்கிலத்தில் செய்தி அறிக்கைகள் டெல்லி அஞ்சல்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷவாணி சமாச்சார் கே சாத் மே ஃபர்ஹத் நாஸ். लोकसभा में आज लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2024 पर फिर से चर्चा शुरू होगी। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कल सदन में विधेयक को विचार और पारित कराने के लिए पेश किया था। ये विधेयक लोक परीक्षाओं में अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन के लिए लाया गया है। विधेयक में कई महत्वपूर्ण प्रावधान हैं, जिनमें 10 वर्ष तक की कैद, 10 करोड़ रूपये तक का जुर्माना और अपराधियों की संपत्ति की जब्त करने जैसे कठोर दंड भी शामिल है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने विधेयक पेश करते हुए कहा कि ये नया कानून देश के छात्रों और युवाओं के कल्याण की रक्षा के लिए सरकार की गहरी प्रतिबद्धता का परिचायक है।
2: 2 महीने के भीतर सारी जांच मुकम्मल की जाएगी और उसके बाद जो भी ट्रायल कोर्ट होगा, फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट, उसमें ये 3 महीने, यानी जिस दिन वारदात रिपोर्ट हुई है उस दिन से लेकर के आखिरी निर्णय आने तक 5 महीने से ज्यादा अवधि काल नहीं रहा जाएगा।
1: श्री सिंह ने कहा कि ये विधेयक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प को भी दोहराता है कि देश के युवाओं के भविष्य से कोई समझौता नहीं होने दिया जाएगा। वहीं कांग्रेस के गौरव गोगोई ने कहा कि सरकार शिक्षा क्षेत्र के प्रति गंभीर नहीं है।
3: ये सरकार शिक्षा विभाग को लेकर गंभीर नहीं है, सुधार नहीं लाना चाहिए। ये सिर्फ एक दिखावा का बिल है, क्योंकि ये बिल एक संशोधन बिल है।
1: वहीं भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने इस विधेयक को क्रांतिकारी कदम बताया। समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव ने विभिन्न परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक होने पर चिंता व्यक्त की। एआईटीसी के अभिषेक बनर्जी, तेलुगु देशम पार्टी के लाऊ श्री कृष्ण देवरियालू और शिवसेना के डॉक्टर श्रीकांत शिंदे ने विधेयक का समर्थन किया। तेलुगु देशम के सांसद ने प्रश्न पत्र तैयार करने वाली समितियों के विकेंद्रीकरण की भी मांग की। विधेयक पर अभी चर्चा पूरी नहीं हुई है। पीठासीन अधिकारी राय ने सदन को आज सुबह 11 बजे फिर से शुरू करने तक के लिए स्थगित कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट परीक्षा पेपर लीक के विरोध में हुए प्रदर्शनों में शामिल नाबालिग छात्रों को रिहा करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने अधिकारियों को प्रदर्शनों से जुड़े इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित रखने का निर्देश दिया। इस बीच पश्चिम बंगाल में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए और नीट परीक्षा के पेपर लीक से संबंधित विरोध प्रदर्शनों के सभी पहलुओं के मूल्यांकन के बाद राज्य सरकार ने विरोध प्रदर्शनों में भाग लेने वाले छात्रों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई न करने का निर्णय लिया है। झारखंड में सुरक्षा बलों ने नक्सल विरोधी अभियान में बड़ी सफलता हासिल की है। प्रमुख माओवादी नेता और पोलित ब्यूरो सदस्य मिसर बेसरा को धनबाद गिरिडीह सीमा से गिरफ्तार किया गया है। उस पर 1 करोड़ रुपए का इनाम था। क्षेत्रीय समिति सदस्य मेहनत उर्फ मोछू, माओवादी कार्यकर्ता गौरव और 2 ग्रामीणों को भी संयुक्त अभियान के दौरान गिरफ्तार किया गया। गृह मंत्रालय ने सशस्त्र सीमा बल में कांस्टेबल सामान्य ड्यूटी भर्ती के नए नियम जारी किए हैं। इन नियमों के तहत हर साल होने वाली भर्ती में कांस्टेबल सामान्य ड्यूटी के 50% पद पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित रहेंगे। ये नए नियम 27 जुलाई से लागू हो गए हैं। गणपति भक्तों की सुविधा के लिए मध्य रेलवे 11 से 27 सितंबर तक 246 गणपति विशेष रेलगाड़ियां चलाएगा। इनमें मुंबई और पुणे को सावंतवाड़ी रोड, रत्नागिरी और मडगांव से जोड़ने वाली 184 आरक्षित रेलगाड़ियां और दीवा और खेड़ के बीच चलने वाली 62 अनारक्षित रेलगाड़ियां शामिल हैं। टिकट की बुकिंग 1 अगस्त से सभी टिकट काउंटर और IRCTC वेबसाइट पर शुरू हो जाएगी। मानवाधिकार संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल ने पाकिस्तान के अवैध

कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर कथित रूप से बल प्रयोग की घटनाओं की स्वतंत्र और पारदर्शी जांच की मांग की है। संगठन ने पाकिस्तानी अधिकारियों से क्षेत्र में संचार सेवाएं बहाल करने और मीडिया तथा स्वतंत्र पर्यवेक्षकों को वहां जाने की अनुमति देने की अपील की है। मौसम विभाग ने आज जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में तेज बारिश का अनुमान जताया है। कर्नाटक, केरला, माहे, कोंकण, गोवा, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश और राजस्थान में भी ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी है। भारोत्तोलक हरजिंदर कौर और धावक गुलवीर सिंह ने रजत पदक अपने नाम किया। गुलवीर सिंह ने पुरुषों की 10,000 मीटर दौड़ में ऐतिहासिक रजत पदक जीता। गुलवीर राष्ट्रमंडल खेलों की स्पर्धा में पदक जीतने वाले पहले भारतीय है। भारत पदक तालिका में 2 स्वर्ण, 7 रजत और 3 कांस्य सहित कुल 12 पदकों के साथ 9वें स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: தொடர்வது ஆர்ட்ஸ் அவேரே டெல்லியிலிருந்து.
1: प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।

0: The very beautiful Western instrument, the piano, mingling with our own ethereal heavenly instrument, Santur, to produce that wonderful melody, friends, so familiar to one and all. So it goes to show that there is harmony and unity in strength. North, east, west or south, we are one. Peace to all. On that note, friends, I welcome my co-host Farhat and we, that is me and myself, that is Subhadra, with another brand new session of Aaj Savere. Good morning, Farhat.
1: गुड मॉर्निंग सुभद्रा, नमस्कार. बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि पियानो और संतूर की जो धुन हमें सुनाई दे रही है, और जब संतूर की झनकार मराइन ड्राइव की हवा से टकराती है और पियानो के सुर गेटवे के सामने गूंजते हैं, तो बनती है एक ही धुन, मुंबई मेरी जान. और वही हमें सुनाई दे रहा है पीछे. और हम आपको बता दें कि आज जॉनी वॉकर का जन्मदिन भी है, तो उस पर हम लोग बात करेंगे उनके बारे में, और जिस इस गाने में वो नजर भी आए. बिल्कुल. और आपने जैसे कि यूनिटी की बात की, तो हम यही कहेंगे वर्किंग टूगेदर ब्रिंग सक्सेस, पीस एंड ग्रेट पावर. क्योंकि मदर टेरेसा का मानना था कि इवन द वीक बिकम स्ट्रॉन्ग व्हेन दे आर यूनाइटेड.
0: यस, ऑफ कोर्स.
1: तो इसलिए कुछ बेहतर करना है तो एक होना जरूरी है. इसी विचार के साथ आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं. सबसे पहले आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि सभी के जीवन में गुरु का एक विशेष महत्व होता है, जो हमारे अंदर अच्छे गुणों को, अनुशासन को और विनम्रता को भरते हैं. और आज के संक में हम विश्व बाघ दिवस के बारे में भी बातचीत करेंगे. तो आज के संक में बहुत कुछ होने वाला है खास, और आप पूरे आधे घंटे रहिए हमारे साथ. लेकिन सबसे पहले मुख्य समाचारों से शुरुआत कर लेते हैं.
0: The Lok Sabha will resume the discussion on the Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026 today. Union Minister Dr. Jitendra Singh moved the bill for consideration and passing in the House yesterday. The bill seeks to amend the Public Examinations Prevention of Unfair Means Act 2024. The legislation incorporates several significant provisions, including stringent penalties such as imprisonment for up to 10 years, fines of up to 10 crore rupees, and the seizure of the properties of convicted offenders. To ensure the expeditious disposal of cases, the legislation mandates that every state government and union territory administration establish special fast-track courts for the day-to-day trial.
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अपने आवास पर सरकार के सचिवों के साथ दूसरी उच्च स्तरीय बैठक की. उन्होंने वित्त और अर्थव्यवस्था, वाणिज्य और उद्योग तथा प्रौद्योगिकी क्षेत्रों से संबंधित मंत्रालयों और विभागों की भावी कार्यसूची की समीक्षा की. बैठक का मुख्य उद्देश्य था विकसित भारत के लक्ष्यों की दिशा में प्रगति को गति देना. श्री मोदी ने मंत्रालयों और विभागों के बीच मजबूत टीम बनाने का आग्रह किया और अधिकारियों से साझा उद्देश्य की भावना के साथ काम करने की अपील की.
0: And there's something interesting, Goa Water Metro project to boost green mobility and tourism, Farhat. It must be, you know, fun to, fun riding these electric boats. Goa is moving closer to a modern and sustainable water metro system. A detailed project report will soon be prepared to take forward the ambitious project aimed at improving connectivity, promoting tourism and providing eco-friendly transport across the state. We have more from our correspondent.
2: The proposed Goa Water Metro project is set to transform travel across state's waterways with modern, green and integrated transport. Planned over more than 100 kilometers, the project is expected to be implemented in phases with around 32 terminals connecting villages, towns and urban centers. More than 100 battery-powered boats of different capacities are proposed, subject to detailed traffic studies. Officials said the initiative follows Prime Minister Narendra Modi's vision of promoting sustainable water transport across India's navigable waterways. The project will feature digital ticketing, seamless integration with buses, taxis and railways, and affordable monthly passes for regular commuters. Advanced safety systems, passenger counting technology and fast charging electric boats are also planned. For Aaj Savere, Mahesh Sopre, Akashwani News, Panji.
1: भारत समुद्री नाविक उपलब्ध कराने वाला विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश बनकर उभरा है. वैश्विक जहाजरानी उद्योग में भारत ने 3,11,936 समुद्री पेशेवरों का योगदान किया है. और अगर बात की जाए भारतीय रिजर्व बैंक की, तो आपको बता दें आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड के संचालन को बंद करने की घोषणा की है, और एसबीआई के पूर्व मुख्य महाप्रबंधक गिरी कुमार नायर को आधिकारिक परिसमापक नियुक्त किया गया है. आरबीआई ने कहा है कि यह निर्णय दिल्ली उच्च न्यायालय के उस आदेश के बाद लिया गया है जिसमें बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 और कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार बैंक को बंद करने की अनुमति

0: from Lok Bhavan for acquiring essential equipment and facilities while promising further support through government channels. And Farhat, over to you now for rest of the news.
1: Ji, Delhi, Mumbai, Kolkata ki khabrein hum apne shrotaon ko batayenge. Sabse pehle baat Rajdhani Delhi ki. Delhi sarkar ne Delhi Lakshmi yojana ko manzoori de di hai. Ye yojana mahilaon ke aarthik sashaktikaran aur samajik suraksha ki disha mein ek mahatvapurna kadam hai. Is yojana ke antargat patra mahilaon ko har mahine 2500 rupaye ki vittiya सहायता प्रदान की जाएगी। वहीं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम ने कांवड़ यात्रा के दौरान यात्रियों की बड़ी संख्या को देखते हुए दिल्ली मेट्रो नमो भारत कॉरिडोर पर इस महीने की 30 तारीख से लेकर अगले महीने की 14 तारीख तक प्रतिदिन 52 अतिरिक्त ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया है। निगम ने बताया है कि अतिरिक्त ट्रेनें फेरे की शुरुआत के साथ अब नमो भारत ट्रेनें हर 8 मिनट के अंतराल पर उपलब्ध रहेंगी। और अब बात करते हैं मुंबई की। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस कल नशा मुक्त मुंबई अभियान का शुभारंभ करेंगे। मुंबई नगर निगम ने सोशल मीडिया पोस्ट में ये जानकारी दी और बताया कि स्कूली बच्चे बड़ी संख्या में शपथ लेंगे। ये पहल एक साल तक चलने वाला जन कार्यक्रम होगा जिसमें छात्र, शिक्षक, अभिभावक, स्वयंसेवी संगठन, मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ, राष्ट्रीय सेवा योजना, राष्ट्रीय कैडेट कोर आदि इसमें भाग लेंगे। और अब बात पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल सरकार ने नागरिकों को विशिष्ट श्रेणियों की शिकायतों की सीधी रिपोर्ट करने में सक्षम बनाने के लिए 4 समर्पित टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर आधिकारिक तौर पर शुरू किए हैं। इस पहल का उद्देश्य जनता को प्रशासनिक और नागरिक मुद्दों के संबंध में अपनी चिंताओं को व्यक्त करने देना है और ये एक सरल और निशुल्क व्यवस्था प्रदान की गई है। इसके मुताबिक कट मनी से संबंधित समस्याओं की रिपोर्ट करने के लिए नागरिक 155-334 पर कॉल कर सकते हैं। वहीं गिरोह से संबंधित मामलों की शिकायतें दर्ज होंगी 155-335 पर। वहीं अवैध सड़क कर या अनधिकृत टोल वसूली से संबंधित शिकायतें आप हेल्पलाइन नंबर 155-337 पर दर्ज करा सकते हैं। ये सभी लाइनें पूरी तरह से टोल फ्री हैं। ये नियंत्रण कक्ष प्रतिदिन सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक काम करेगा। और अब महानगरों के मौसम का हाल जानते हैं। दिल्ली की बात सबसे पहले। कल भी बारिश का दौर रहा, आज भी बारिश का अनुमान मौसम विभाग ने व्यक्त किया है क्योंकि मौसम में अभी भी तब्दीली आना शुरू हो गई है। बारिश अब होना जरूरी है। न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। मुंबई में भी बादल छाए रहेंगे, बारिश हो सकती है। न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। और कोलकाता में बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा।
0: And Chennai is likely to witness a thunderstorm accompanied with lightning. The temperatures are expected to range between a minimum of 29 degrees and a maximum of 39 degrees Celsius. Bengaluru is forecast to generally cloudy sky with light rain. The minimum temperature is expected to be 21 degrees Celsius, while the maximum may reach 29 degrees Celsius. Hyderabad is likely to see a generally cloudy sky with one or two spells of rain or thunder showers. Temperatures are expected to range from 23 degrees degrees to 32 degrees Celsius.
1: और सुभद्रा, जैसा कि हमने शुरुआत में बताया था कि आज हम बात कर रहे हैं दो विशेष महत्वपूर्ण दिवसों
0: yes,
1: के बारे
0: of course,
1: में
0: uh-huh.
1: जी, सबसे पहले हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के बारे में।
0: यस ऑफ कोर्स, वी ऑल लव द बिग कैट्स, राइट? द मैजेस्टिक क्रीचर्स दैट रोम फ्रीली विद देयर रॉयल लुक्स। ग्लोबल टाइगर डे, ऑफन कॉल्ड इंटरनेशनल टाइगर डे, इट इज एन एनुअल सेलिब्रेशन टू रेज अवेयरनेस फॉर टाइगर कंजर्वेशन। हेल्ड दिस डे एवरी ईयर ऑन 29th ऑफ जुलाई, दैट्स ऑफ कोर्स टुडे, एंड इट वाज created in 2010 at the St. Petersburg Tiger Summit in Russia. And Farhat, the theme this year is Securing the Future of Tigers with Indigenous Peoples and Local Communities at the Heart.
1: बिल्कुल, और सरकार इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान भी हासिल कर रही है और जगह जगह पर जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है ताकि बाघों के संरक्षण पर ध्यान दिया जाए, क्योंकि बाघ केवल भारत की ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की जैव विविधता और पर्यावरण संतुलन के लिए बेहद महत्वपूर्ण माने जाते हैं। और कहते भी हैं कि जहाँ बाघ सुरक्षित रहते हैं वहाँ के जंगल भी समृद्ध और संतुलित
0: बने। जी, मे बी वी शुड बाय वन एज अ पेट।
1: बिल्कुल बिल्कुल, आप खरीदिएगा। और हम आपको ये भी बता दें कि बाघ केवल भारत का राष्ट्रीय पशु ही नहीं बल्कि स्वस्थ पर्यावरण का प्रमाण भी है।
0: yes.
1: तो संरक्षण इसका बेहद जरूरी है। तो अब आइए गुरु पूर्णिमा के बारे में बात कर लेते हैं। गुरु को भगवान से भी ऊंचा दर्जा प्राप्त है, ये yes, सब हम course, सब जानते yeah. हैं mm-hmm. और गुरु पूर्णिमा का दिन सनातन परंपरा में खास महत्व रखता है और ये खास दिन गुरु या माता पिता के

प्रति सच्ची श्रद्धा और सम्मान जाहिर करने के लिए मनाया जाता है और इसका सबसे बड़ा उद्देश्य यही है कि गुरु के प्रति हम सब लोग सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त करें। तो ये गीत सुन लेते हैं जो गुरु के ऊपर ही है।

0: और सुभद्रा, आज हमने अपने सहयोगियों से भी बात करी, आखिर उनका क्या कहना रहा अपने गुरुओं के बारे में, आइए जान लेते हैं।
1: यूं तो सारी दुनिया में, लेकिन खास तौर पर एशिया में और उसमें भी भारत में गुरु को जो महत्व दिया गया है वो अतुल्य है। और इसके विषय में कहा गया है कि जैसा कि कबीरदास जी कह गए हैं, लिख गए हैं अपनी वाणी में कि सब धरती कागद करूं, करूं लेखनी बन राय, सब सागर को मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। गुरु की महिमा परम्पार है, यदि सारे सागर की स्याही बना ली जाए और सभी वनों की कलम बना करके भी लिखा जाए तो भी गुरु की जो महिमा है उसका वर्णन बड़ा कठिन है। गुरु पूर्णिमा की हमारे सभी श्रोताओं को मैं अपनी ओर से शुभकामनाएं देता हूँ।
2: ऑन दिस गुरु पूर्णिमा आई फील ट्रूली ग्रेटफुल फॉर ऑल माय गुरुज एंड टीचर्स हु हैव गाइडेड, मोटिवेटेड एंड इंस्पायर्ड मी एट एवरी स्टेप ऑफ माय जर्नी। थैंक यू फॉर बिलीविंग इन मी व्हेन आई डाउटेड माय सेल्फ। योर वर्ड्स, गाइडेंस एंड सपोर्ट हैव शेप्ड मी इनटू द पर्सन आई एम टुडे। हैप्पी गुरु पूर्णिमा टू ऑल माय वंडरफुल गुरुज एंड टीचर्स।
3: गुरु पूर्णिमा के इस खास दिन अपने सभी गुरुओं और शिक्षकों को दिल से धन्यवाद। आप सभी ने मुझे हर परिस्थिति में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है, मेरा हौसला बढ़ाया और सही रास्ता दिखाया। की सीख ने मुझे सिर्फ पढ़ाई में ही नहीं बल्कि जिंदगी में भी बहुत कुछ सिखाया है।
4: हम सब कभी न कभी लास्ट बेंच पर बैठे हैं, कभी स्टेज पर बोलने से डरे हैं, तो कभी यह सोचा है कि मुझसे यह सब्जेक्ट नहीं होगा। पर हमारे टीचर्स ने कभी हार नहीं मानी, उन्होंने हमारी कमियों को हमारी ताकत बनाया। आज जब स्कूल का वह दौर याद आता है तो बस एक ही बात दिल में याद आती है, आप थे तो हम संभल गए।
0: बहुत खूब, आप थे तो हम संभल गए। सुभद्रा,
5: yes,
0: ये बिल्कुल सही कहा उन्होंने कि कलम पकड़ा था जब उंगलियां कांपती थी हम सबकी, शब्द जोड़ना सिखाया, सोचना सिखाया, आज जो भी हम हैं उनकी ही मेहनत से हैं। मेरे हर लफ्ज में मेरे गुरु की दुआ है, तो मैं भी अपने गुरु को, जो अपने टीचर्स हैं, अपने पेरेंट्स हैं, उनको ये आज का दिन जो है वो शुभकामनाएं।
5: एंड वी जस्ट टॉक्ड अबाउट टीचर्स फरहत टुडे, एज द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कंप्लीट्स 6 सक्सेसफुल ईयर्स, स्कूल्स and colleges across the country are embracing practical learning, regional languages and skill development to help every student unlock their true potential. Building on this momentum, the policy has championed inclusive education by bridging digital divides, offering flexible pathways for lifelong learning and nurturing critical thinking.
0: और इसमें बहुत ही एक अच्छी चीज जो हुई वो हुई बोर्ड एग्जाम्स को के जो प्रेशर थे उसको कम करने के लिए दो बार एग्जाम्स जो है वो
5: yes.
0: अब होंगे, क्लास 10वीं और 12वीं के बोर्ड साल अब साल में दो बार आयोजित होंगे। तो इससे ये नहीं कि जो बच्चे रट्टा मारकर पास हो जाते थे वो चीज नहीं, आपको समझना है अपने सब्जेक्ट को, ध्यान पूर्वक समझना है ताकि इन फ्यूचर भी अगर आप उस चीज में करियर बनाना चाहते हैं तो वो आपके
5: yes,
0: लिए बेहद हेल्पफुल साबित हो। और अब आइए इतिहास के पन्नों को पलट लेते हैं। आज है 29 जुलाई 2026।
5: 1567, James VI was crowned King of Scotland at just 13 months of age, becoming one of the youngest monarchs in history. 1836, the Arc de Triomphe, one of the largest triumphal arches in the world, was officially inaugurated in Paris.
0: 1876 में भारत के सबसे पुराने वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंसेज की स्थापना कोलकाता में हुई। 1946 में टाटा एयरलाइंस का आधिकारिक रूप से नाम बदलकर एयर इंडिया किया गया, जो देश की राष्ट्रीय एयरलाइन की शुरुआत का प्रतीक है।
5: 1957 दिस डे द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA वाज ऑफिशियली एस्टैब्लिश्ड व्हेन इट्स स्टैट्यूट एंटर्ड इनटू फोर्स। 1958 नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन एस्टैब्लिश्ड NASA, क्रिएटेड आफ्टर द रशियंस लॉन्च द सैटेलाइट स्पुतनिक। The legislation was signed by the then US President Dwight D. Eisenhower this day in 1958.
0: सन 1980 में भारत ने बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की हॉकी में। मॉस्को ओलंपिक में पुरुषों की हॉकी में स्वर्ण पदक जीता, जिसमें उसने फाइनल में स्पेन को 4-3 से हराया।
5: And 2010, United Nations General Assembly adopted a landmark resolution recognizing safe and clean drinking water and sanitation as a human right.
0: और अब आ गया हमारा वो सेगमेंट जिसका था सभी को इंतजार, जहां
5: yes.
0: पर हम याद करेंगे कुछ जानी मानी शख्सियत।

0: बहुत ही खूब। और अगर इसका हिंदी अनुवाद किया जाए सुभद्रा, तो कविताओं में यही है, मेरी बेटी की आंखों में सब बराबर है, अंधेरा रोशनी में बदल जाता है और दुनिया शांति में होती
1: है। ब्यूटीफुल, यू कैन रिलेट टू इट, यू हैव डॉटर्स।
0: जी बिल्कुल, बेटियां वैसे भी बहुत ही प्यारी होती हैं।
1: ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स।
0: और अब आइए आगे बढ़ते हैं। शुरुआत में जो हमने बात करी थी संतूर और पियानो की, मुंबई मेरी है,
1: yes, of course,
0: तो उन्हीं के गीत की बात कर लेते हैं। जॉनी वॉकर की, भारत के सुप्रसिद्ध हास्य अभिनेता ने आज ही के दिन अलविदा कहा हमसे, और इनका असली नाम था बद्रुद्दीन जमालुद्दीन काजी। बाजी, आर पार, मिस्टर एंड मिसेस 55, सीआईडी, कागज के फूल, प्यासा जैसी गुरुदत्त की फिल्मों में एक समांतर पहचान बनाने वाले जॉनी वॉकर ही थे। चोरी चोरी, नया दौर, मधुमति, मेरे

महबूब आनंद जैसी फिल्मों में जॉनी वॉकर मीठी फुहार की तरह राहत देने आते थे जब दर्शकों को फिल्म की गंभीरता से उभरना मुश्किल लगने लगता था। जॉनी वॉकर के अभिनय ने इतनी ऊंचाई दी कि आमतौर पर हल्की फुल्की मनोरंजक फिल्मों की जगह गंभीर फिल्मों की गंभीरता के बर्फ को तोड़ने की जवाबदेही मिली। तो आइए आज उनकी हसीन यादों को ताजा किया जाए।

0: मेरी जान।
1: अरे गोली से क्या, मैं तो तोप से उड़ाने वाला था और दो वक्त ट्राईपन किया, लेकिन वाह री औरत वाह, एक नजर एक मुस्कुराहट। जरा मैडम दोनों का सेम

0: And friends, after Johnny Walker, we remember the founding father and primary architect of the modern jazz guitar style, Charlie Christian from Texas, USA. He was the first major soloist on the electric guitar. With Christian, the electric guitar became a distinct solo voice, equivalent to a saxophone, trumpet or clarinet, and capable of the same levels of expressiveness and intensity.
1: और श्रोताओं, आज आपके पसंदीदा संजू बाबा का भी जन्मदिन है. जी हाँ, 80 और 90 के दशक के बॉलीवुड के शीर्ष प्रमुख एक्शन हीरो होने के साथ साथ एक संवेदनशील अभिनेता के रूप में वो उभरे और साथ ही उन्होंने हास्य शैली में भी उल्लेखनीय प्रशंसा मिली. 1981 में फिल्म रॉकी से संजय दत्त ने बतौर अभिनेता अपने करियर की शुरुआत की थी. फिल्म खलनायक हो, साजन या फिर अग्निपथ, मुन्ना भाई, MBBS, कई बेहतरीन फिल्मों में इन्होंने काम किया और अपना लोहा मनवाया. तो आज हमने उनकी कुछ चुनिंदा फिल्मों को चुना है आपके लिए, आइए सुन लेते हैं.
2: मौत के साथ रेस लगाना चाहता है. अरे जिंदगी जीने का मजा तब आता है दोस्त, जब मौत की उंगलियां थाम कर भागा जाए. क्या कहता है
3: वो? बाहर कैजुअलिटी में कोई मरने की हालत में रहा तो उसको फॉर्म

0: और सुभद्रा, आपको पता है कि संजय दत्त की जो माँ थी नरगिस दत्त, उनसे भी वो बहुत प्यार करते थे और वो हमेशा कहा करते थे कि वो उनकी स्ट्रेंथ थी। उनके गाने जाने के बाद उन्होंने बहुत मुश्किल टाइम देखा था।
1: वेरी सैड, वी आर वेरी सैड
0: जी। और इसके साथ ही अब वक्त हो चला है आपसे अनुमति लेने का। हम उम्मीद करते हैं कि आज का ये अंक आपको जरूर पसंद आया होगा।
1: नमस्कार।
0: नमस्कार।
2: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
3: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
2: और लाइट बिल के
3: अब 0 रुपए कैसे दूं?
2: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
3: पक्का।
4: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
5: हर घर सूर्य घर।
6: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
7: नमस्कार,

0: आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों से बेहतर तालमेल के साथ काम करने का आह्वान किया। श्री मोदी ने उच्च अधिकारियों के साथ भावी कार्य योजना की समीक्षा की। लोकसभा में लोक परीक्षाओं में अनुचित साधनों के प्रयोग की रोकथाम संबंधी संशोधन विधेयक 2026 पर आज फिर चर्चा होगी। दिल्ली सरकार ने प्रत्येक पात्र महिला को 2,500 रुपए प्रतिमाह की आर्थिक सहायता देने के लिए लक्ष्मी योजना को मंजूरी दी। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी सेना की बर्बर कार्रवाई में पिछले 2 दिनों में मरने वालों की संख्या 30 हुई। ईरान ने पश्चिम एशिया में अमरीकी सेना पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। अमरीका और सऊदी अरब की सेनाओं ने भी संयुक्त रूप से इराक में ईरान समर्थित समूहों के खिलाफ हमले किए। और राष्ट्रमंडल खेलों में गुलवीर सिंह 10,000 मीटर दौड़ में रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने। हरजिंदर कौर ने भी भारोत्तोलन में रजत पदक अपने नाम किया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अपने आवास पर सरकार के सचिवों के साथ दूसरी उच्च स्तरीय बैठक की। उन्होंने वित्त और अर्थव्यवस्था, वाणिज्य और उद्योग तथा प्रौद्योगिकी क्षेत्रों से संबंधित मंत्रालयों और विभागों की भावी कार्यसूची की समीक्षा की। बैठक का मुख्य उद्देश्य विकसित भारत के लक्ष्यों की दिशा में प्रगति को गति देना था। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: बैठक के दौरान श्री मोदी ने मंत्रालयों और विभागों के बीच एकजुटता की भावना के साथ काम करने का आग्रह किया। नागरिक केंद्रित शासन के महत्व का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की जनता शासन के केंद्र में रहनी चाहिए। उन्होंने याद दिलाया कि प्रत्येक निर्णय और नीति आम नागरिक के हितों और आकांक्षाओं के अनुरूप होना चाहिए। श्री मोदी ने कहा कि भारत बुनियादी ढांचे में महत्वपूर्ण निवेश कर रहा है, लेकिन स्वदेशी प्रौद्योगिकियों के विकास को भी समान प्राथमिकता दी जानी चाहिए। प्रधानमंत्री ने तकनीकी आत्मनिर्भरता और महत्वपूर्ण क्षेत्रों में घरेलू क्षमताओं के निर्माण के महत्व पर जोर दिया। श्री मोदी ने कहा कि ऊर्जा सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक स्थिरता और नागरिकों के कल्याण से घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई है। उन्होंने कहा कि देश को नवाचार, विविधीकरण और क्षमता निर्माण में तेजी लाकर ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार को हमेशा युवा, गतिशील और दूरदर्शी बने रहना चाहिए और नई चुनौतियों और अवसरों के अनुरूप फुर्ती और नवाचार के साथ लगातार अनुकूलन करना चाहिए। आदित्य प्रताप सिंह, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: लोकसभा में आज लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पर फिर से चर्चा शुरू होगी। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कल सदन में विधेयक को विचार और पारित कराने के लिए पेश किया था। ये विधेयक लोक परीक्षाओं में अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन के लिए लाया गया है। विधेयक में कई महत्वपूर्ण प्रावधान हैं, जिनमें 10 वर्ष तक की कैद, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और अपराधियों की संपत्ति को जब्त करने जैसे कठोर दंड शामिल हैं। डॉ. जितेंद्र सिंह ने विधेयक पेश करते हुए कहा कि ये नया कानून देश के छात्रों और युवाओं के कल्याण की रक्षा के लिए सरकार की गहरी प्रतिबद्धता का परिचायक है।
2: 2 महीने के भीतर सारी जांच मुकम्मल की जाएगी और उसके बाद जो भी ट्रायल कोर्ट होगा, फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट, उसमें ये 3 महीने, यानी जिस दिन वारदात रिपोर्ट हुई है उस दिन से लेकर के आखिरी निर्णय आने तक 5 महीने से ज्यादा अवधि काल नहीं रहा जाएगा।
0: श्री सिंह ने कहा कि ये विधेयक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प को भी दोहराता है कि देश के युवाओं के भविष्य से कोई समझौता नहीं होने दिया जाएगा। वहीं कांग्रेस के गौरव गोगोई ने कहा कि सरकार शिक्षा क्षेत्र के प्रति गंभीर नहीं है।
3: ये सरकार शिक्षा विभाग को लेकर गंभीर नहीं है, सुधार नहीं लाना चाहिए। ये सिर्फ एक दिखावा का बिल है, क्योंकि ये बिल एक संशोधन बिल है।
0: भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने इस विधेयक को क्रांतिकारी कदम बताया।
4: ट्रांसफॉर्मेटिव अमेंडमेंट है, इसकी न केवल आवश्यकता है बल्कि ये आज के समय की मांग भी है। और इस अमेंडमेंट को लाना आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की संवेदनशीलता और उनकी जिम्मेदाराना सरकार का प्रमाण। जब एक कंपेटिटिव एग्जामिनेशन कॉम्प्रोमाइज होता है तो उसका

0: केवल उस कैंडिडेट पे नहीं होता जिसका भाग्य दाव पर लग जाता है, और ये बिल ये ज्यूरिसडिक्शन की उलझन को सुलझाता है, उसको समाप्त ही कर देता है।
1: समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव ने विभिन्न परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक होने पर चिंता व्यक्त की। एआईटीसी के अभिषेक बनर्जी, तेलुगु देशम पार्टी के लाबू श्री कृष्ण देव रायलु और शिवसेना के डॉक्टर श्रीकांत शिंदे ने विधेयक का समर्थन किया। तेलुगु देशम के सांसद ने प्रश्न पत्र तैयार करने वाली समितियों के विकेंद्रीकरण की भी मांग की। विधेयक पर अभी चर्चा पूरी नहीं हुई है। पीठासीन अधिकारी संध्या राय ने सदन को आज सुबह 11 बजे फिर से शुरू होने तक के लिए स्थगित कर दिया। पश्चिम बंगाल में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए और नीट परीक्षा के पेपर लीक से संबंधित विरोध प्रदर्शनों के सभी पहलुओं के मूल्यांकन के बाद राज्य सरकार ने विरोध प्रदर्शन में भाग लेने वाले छात्रों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई न करने का निर्णय लिया है।

0: करते हुए और नीट परीक्षा के पेपर लीक से संबंधित विरोध प्रदर्शनों के सभी पहलुओं के मूल्यांकन के बाद राज्य सरकार ने विरोध प्रदर्शन में भाग लेने वाले छात्रों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई न करने का निर्णय लिया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
1: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को अपनी स्वीकृति दे दी है। दिल्ली सचिवालय में कल मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में ये निर्णय लिया गया। इस योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपये की आर्थिक सहायता मिलेगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस योजना में पंजीकरण के लिए रजिस्ट्रेशन पोर्टल 1 अगस्त से खुल जाएगा।
2: बहनों के अप्लाई करने के बाद, स्क्रूटनी होने के बाद जो भी अप्रूवल रहेगा उसके बाद मुझे लगता है कि राखी पे हम पहली किश्त पहले लॉट की बहनों को दे पाएंगे। ये दिल्ली की बहनों के लिए बहुत ही खुशी का अवसर है कि हमने अपनी सरकार के मात्र 1.25 साल के भीतर इसको कर दिया है दिल्ली की बहनों के लिए, जिसका लाभ अब उस श्रेणी में आने वाली सभी बहनें ले पाएंगी।
1: झारखंड में सुरक्षा बलों ने नक्सल विरोधी अभियान में एक बड़ी सफलता हासिल की है। प्रमुख माओवादी नेता और पोलित ब्यूरो सदस्य मिसिर बेसरा को धनबाद गिरिडीह सीमा से गिरफ्तार किया गया है। उस पर 1 करोड़ रुपए का इनाम था। क्षेत्रीय समिति सदस्य मेहनत उर्फ मोछू, माओवादी कार्यकर्ता गौरव और 2 ग्रामीणों को भी संयुक्त अभियान के दौरान गिरफ्तार किया गया। आध्यात्मिक और शैक्षणिक गुरुओं को समर्पित गुरु पूर्णिमा का पर्व आज मनाया जा रहा है, जिसे व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस अवसर पर लोग अपने गुरुओं को याद करते हैं और उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। भारतीय जनता पार्टी आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की 650वीं जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रव्यापी श्री गुरु रविदास महाराज समरसता संकल्प अभियान का शुभारंभ करेगी। इस अभियान का औपचारिक उद्घाटन आज वाराणसी के सीर गोवर्धनपुर स्थित संत रविदास के जन्म स्थान पर किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
3: आज वाराणसी के सीर गोवर्धनपुर स्थित संत रविदास के जन्म स्थान पर इस अभियान का औपचारिक शुभारंभ किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज शाम यहां संत रविदास के जन्म स्थान पर दर्शन करेंगे और उनका आशीर्वाद लेंगे। इस अभियान के तहत संत रविदास के पवित्र जन्म स्थान की मिट्टी को 131 कलशों में भरकर उत्तर प्रदेश के विभिन्न हिस्सों और देश भर के अन्य राज्यों में भेजा जाएगा। एक समरसता संकल्प सभा का भी आयोजन किया जाएगा, जिसमें लगभग 25,000 लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। कार्यक्रमों की यह श्रृंखला माघी पूर्णिमा और संत रविदास की जयंती यानी अगले वर्ष 20 फरवरी तक चलेगी। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्य भाजपा अध्यक्ष पंकज चौधरी, संगठन महासचिव धर्मपाल सिंह और अन्य प्रमुख नेताओं के इस कार्यक्रम में शामिल होने की उम्मीद है। पवित्र मिट्टी से भरे 131 कलशों की विधिवत पूजा की जाएगी और उन्हें विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधियों को सौंप दिया जाएगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: मध्य प्रदेश में भी आज यह अभियान शुरू होगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर पीओजेके में बर्बर सरकारी कार्रवाई में मरने वालों की संख्या पिछले 2 दिनों में बढ़कर 30 हो गई है, जबकि कई अन्य घायल हुए हैं। इस बीच एमनेस्टी इंटरनेशनल ने पाकिस्तानी सेना द्वारा पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर पीओजेके में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ घातक बल के प्रयोग की खबरों की स्वतंत्र और पारदर्शी जांच की मांग की है। अमरीका ने कहा है कि ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर ने कल रात पश्चिम एशिया क्षेत्र में तैनात अमरीकी बलों पर अचानक हमले के प्रयास

0: में कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। अमरीकी केंद्रीय कमान ने कहा कि सभी ईरानी मिसाइलों को रोक दिया गया और अमरीकी बल सतर्क और उच्च स्तर की तैयारी में हैं। अमरीका ने यह भी दावा किया कि पिछले 72 घंटों में 30 से ज्यादा हवाई ड्रोन हमलों के साथ ही अमरीका और सऊदी लड़ाकू विमानों ने पूर्वी इराक में कई रसद और हथियार स्थलों पर हमले किए। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में गुलवीर सिंह ने पुरुषों की 10,000 मीटर दौड़ में रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। वो इस स्पर्धा में पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। हरजिंदर कौर ने महिलाओं की 69 किलोग्राम भारोत्तोलन स्पर्धा में रजत पदक जीता है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
1: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों के पहले पन्ने पर पेपर लीक मुद्दे पर संसद में हुई बहस और पेपर लीक मामलों को रोकने के लिए बनाए गए नए कानून से संबंधित समाचार छाए हुए हैं। लोकसत्ता ने अपनी पहली खबर को शीर्षक दिया है पेपर लीक, मोदी सरकार ने बनाया विश्व का सबसे कठोर कानून। राजस्थान पत्रिका ने सरकार और विपक्ष दोनों के वक्तव्यों से अपनी खबरों की शुरुआत की है। पंजाब केसरी ने इस खबर को शीर्षक दिया है पूर्व सरकारों में भी हुए पेपर लीक। साथ ही प्रियंका गांधी की इस टिप्पणी को भी प्रमुखता से छापा है, प्रधानमंत्री को कैमरे का नहीं दिल का एंगल बदलना पड़ेगा। दैनिक भास्कर ने पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर के घटनाक्रम को पहले पन्ने पर सबसे ऊपर प्रकाशित करते हुए शीर्षक दिया है पीओके में सेना ने चुनाव का विरोध कर रहे लोगों पर गोलियां बरसाई, 30 मौतें। पत्र ने मारे गए नागरिकों की तस्वीर भी प्रकाशित की है। अमर उजाला ने राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के शानदार प्रदर्शन को पहली खबर बनाते हुए शीर्षक दिया है एक दिन में 6 पदक। पत्र ने पदक विजेता खिलाड़ियों की तस्वीरें छापी हैं। जनसत्ता ने अपने संपादकीय को शीर्षक दिया है खतरे का तापमान। पत्र का कहना है कि जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए दुनिया भर में कई योजनाएं और कार्यक्रम बनाए गए हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर उन्हें अमल में लाने की गंभीरता कहीं नजर नहीं आती। विडंबना यह है कि कार्बन उत्सर्जन में जिन देशों का योगदान सबसे कम है उन्हें ही जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का खामियाजा सबसे ज्यादा भुगतना पड़ रहा है।
0: और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों से बेहतर तालमेल के साथ काम करने का आह्वान किया। श्री मोदी ने उच्च अधिकारियों के साथ भावी कार्य योजना की समीक्षा की। लोकसभा में लोक परीक्षाओं में अनुचित साधनों के प्रयोग की रोकथाम संबंधी संशोधन विधेयक 2026 पर आज फिर चर्चा होगी। दिल्ली सरकार ने प्रत्येक पात्र महिला को 2,500 रुपए प्रति माह की आर्थिक सहायता देने के लिए लक्ष्मी योजना को मंजूरी दी। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी सेना की बर्बर कार्रवाई में पिछले 2 दिनों में मरने वालों की संख्या हुई 30। ईरान ने पश्चिम एशिया में अमरीकी सेना पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी और राष्ट्रमंडल खेलों में गुलवीर सिंह 10,000 मीटर दौड़ में रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय हो गए हैं। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Abhishek Mukhopadhyay. The headlines. Prime Minister Narendra Modi calls for breaking horizontal and vertical silos within government to ensure close coordination, reviews future action agenda of ministries and departments, Lok Sabha to resume discussion on public examinations prevention of unfair means, Amendment Bill 2026 today. Delhi government approves Lakshmi Yojana to provide financial assistance of 2,500 rupees per month to every eligible woman. Death toll and brutal crackdown by Pakistani forces in POJK rises to 30 during past 2 days. Iran launches multiple ballistic missiles towards US forces in West Asia. US and Saudi forces carry out joint precision strikes against Iran-aligned groups in Iraq. And Gulveer Singh becomes first Indian to win silver medal in the men's 10,000 meter race at the Commonwealth Games. Harjinder Kaur also bagged silver medal in women's weightlifting event. Prime Minister Narendra Modi chaired the second high-level meeting with secretaries to the government at his residence yesterday. During the meeting, the Prime Minister reviewed the future action agenda of ministries and departments dealing with finance and economy, commerce and industry, and technology sectors.

0: செய்யுங்கள்.
1: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
2: अम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना, जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना, हर संकट का समाधान है भारतीय सेना, भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह है।

0: அரங்கிசை நிகழ்ச்சியில் இதுவரை வி பரத்குமார் அவர்களின் பாட்டு கேட்டீர்கள். டாக்டர் உஷா ராஜகோபாலன் அவர்கள் வயலின், திருவனந்தபுரம் வி பாலாஜி அவர்கள் மிருதங்கம்.
1: தொடர்வது செய்திகள் டெல்லி அஞ்சல்.
2: நமஸ்கார், ஆகாஷவாணி சமாச்சார் கே சாத் மே ஃபர்ஹத் நாஸ். लोकसभा में आज लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पर फिर से चर्चा शुरू होगी। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कल सदन में विधेयक को विचार और पारित कराने के लिए पेश किया था। ये विधेयक लोक परीक्षाओं में अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन के लिए लाया गया है। विधेयक में कई महत्वपूर्ण प्रावधान हैं, जिनमें 10 वर्ष तक की कैद, 10 करोड़ रूपये तक का जुर्माना और अपराधियों की संपत्ति को जब्त करने जैसे कठोर दंड शामिल हैं। डॉ जितेंद्र सिंह ने विधेयक पेश करते हुए कहा कि ये नया कानून देश के छात्रों और युवाओं के कल्याण की रक्षा के लिए सरकार की गहरी प्रतिबद्धता का परिचायक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अपने आवास पर सरकार के सचिवों के साथ दूसरी उच्च स्तरीय बैठक की। उन्होंने वित्त और अर्थव्यवस्था, वाणिज्य और उद्योग तथा प्रौद्योगिकी क्षेत्रों से संबंधित मंत्रालयों और विभागों की भावी कार्यसूची की समीक्षा की। बैठक का मुख्य उद्देश्य विकसित भारत के लक्ष्यों की दिशा में प्रगति को गति देना था। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: बैठक के दौरान श्री मोदी ने मंत्रालयों और विभागों के बीच एकजुटता की भावना के साथ काम करने का आग्रह किया। नागरिक केंद्रित शासन के महत्व का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की जनता शासन के केंद्र में रहनी चाहिए। उन्होंने याद दिलाया कि प्रत्येक निर्णय और नीति आम नागरिक के हितों और आकांक्षाओं के अनुरूप होना चाहिए। श्री मोदी ने कहा कि भारत बुनियादी ढांचे में महत्वपूर्ण निवेश कर रहा है, लेकिन स्वदेशी प्रौद्योगिकियों के विकास को भी समान प्राथमिकता दी जानी चाहिए। आदित्य प्रताप सिंह, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को स्वीकृति दे दी है। दिल्ली सचिवालय में कल मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में कल ये निर्णय लिया गया। योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को प्रतिमा 2500 रूपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। अमेरिका ने कहा है कि ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने कल रात पश्चिम एशिया क्षेत्र में तैनात अमेरिकी बलों पर अचानक हमले के प्रयास में कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। अमेरिकी केंद्रीय कमान ने बताया कि सभी ईरानी मिसाइलों को रोक दिया गया है और अमेरिकी बल सतर्क और उच्च स्तर की तैयारी में है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर में बर्बर सरकारी कार्रवाई में मरने वालों

की संख्या पिछले 2 दिनों में बढ़कर 30 हो गई है, जबकि कई अन्य घायल हुए हैं। असम में बाढ़ से मरने वालों की आधिकारिक संख्या बढ़कर 75 हो गई है। अकेले शिवसागर जिले से कल 7 और मौतें दर्ज की गईं। ऊपरी असम के प्रभावित जिलों में बाढ़ की स्थिति धीरे धीरे सामान्य हो रही है और अधिकतर क्षेत्रों से बाढ़ का पानी उतर रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व सरमा ने बाढ़ से संबंधित घटनाओं में जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों के लिए 4 लाख रूपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। ग्लासगो में चल रहे राष्ट्रमंडल खेल 2026 में गुलवीर सिंह ने पुरुषों की 10,000 मीटर दौड़ में रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। वो स्पर्धा में पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बन गए हैं। इन्होंने स्कॉट्स काउंट में समय निकाला और ऑस्ट्रेलिया के कोई रॉबिन्सन के बाद दूसरे स्थान पर रहे। इसके अतिरिक्त हरजिंदर कौर ने भी महिलाओं की 69 किलोग्राम भारोत्तोलन स्पर्धा में रजत पदक हासिल किया। इसके साथ ही ग्लासगो में चल रही स्पर्धाओं में भारत के कुल पदकों की संख्या 12 हो गई है, जिसमें 2 स्वर्ण, 7 रजत और 3 कांस्य पदक शामिल हैं। आध्यात्मिक और शैक्षणिक गुरुओं को समर्पित गुरु पूर्णिमा आज मनाई जा रही है, जिसे व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस अवसर पर लोग अपने गुरुओं को याद करते हैं और उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पर पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि गुरु केवल ज्ञान प्रदान ही नहीं बल्कि अपने शिष्यों में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं और उन्हें नेक विचारों और सद्गुणों से परिपूर्ण बनाते हैं। प्रधानमंत्री ने नागरिकों से आग्रह किया कि वो अपने आदर्शों को अपने जीवन की शक्ति का स्रोत बनाएं। भारतीय जनता पार्टी आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की 650वीं जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रव्यापी श्री गुरु रविदास महाराज समरसता संकल्प अभियान का शुभारंभ करेंगी। इस अभियान का औपचारिक उद्घाटन आज वाराणसी के सीर गोवर्धनपुर स्थित संत रविदास के जन्मस्थान पर किया जाएगा। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: is being celebrated today. The festival is dedicated to spiritual and academic teachers. On the occasion, people remember and pay their gratitude to their gurus who guide and shape their lives with their wisdom and blessings. Prime Minister Narendra Modi extended greetings, saying that beyond imparting knowledge, a guru instills positive energy in their disciples, nurturing them with noble thoughts and virtuous values. Union Home Minister Amit Shah also extended his greetings, saying the guru holds a supreme position in Indian culture, enriching the lives of disciples with the nectar of knowledge. Domestic equity markets opened sharply higher this morning, with the benchmark indices gaining nearly 1% each as investors awaited the US Federal Reserve's policy decision. Sensex opened at 77,423.77, up 0.86%, while the Nifty started at 24,176.65, rising 0.80%. Sector-wise, most indices traded in the green in early deals. The death toll in the brutal state crackdown in the Pakistan-occupied Jammu and Kashmir, POJK, has risen to 30 in the past 2 days, with many more injured. According to the local group, Joint Awami Action Committee, JAAC, the Pakistani military fired on tens of thousands of peaceful protesters, killing 25 people on Monday and 5 more on Tuesday. The POJK is currently engulfed with a wave of protests against the Pakistani authorities since months. At the ongoing Commonwealth Games 2026 in Glasgow, Gulveer Singh scripted history by becoming the first Indian athlete to win a medal in the men's event, claiming a silver. And that's the end of this news bulletin.
1: के साथ मैं मुनीश शर्मा मुख्य समाचार। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पिछले 2 दिनों में पाकिस्तानी सेना की बर्बर कार्रवाई में मरने वालों की संख्या 30 हुई। ईरान ने पश्चिम एशिया में अमरीकी सेना पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। अमरीका और सऊदी अरब की सेनाओं ने भी संयुक्त रूप से इराक में ईरान समर्थित समूहों के खिलाफ हमले किए। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ बैठकें की। राष्ट्रमंडल खेलों में गुलवीर सिंह 10,000 मीटर दौड़ में रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। हरजिंदर कौर ने भी भारोत्तोलन रजत पदक किया अपने नाम। और क्रिकेट में बीसीसीआई ने श्रीलंका के खिलाफ 15 अगस्त से शुरू होने वाली 2 टेस्ट मैच की श्रृंखला के लिए 15 सदस्य टीम की घोषणा कर दी है। और अब समाचार विस्तार से। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर पीओजेके में बर्बर सरकारी कार्रवाई में मरने वालों की संख्या पिछले 2 दिनों में बढ़कर 30 हो गई है, जबकि कई अन्य घायल हुए हैं। स्थानीय संगठन संयुक्त आवामी एक्शन कमेटी के अनुसार पाकिस्तानी सेना ने हजारों शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी की, जिसमें सोमवार को 25 और मंगलवार को 5 और लोग मारे गए। पीओजेके पिछले कई महीनों से पाकिस्तानी अधिकारियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों की लहर से घिरा हुआ है। पाकिस्तान संबंधी मामलों के विशेषज्ञ ओम प्रकाश दास ने पाकिस्तान के कार्य करने के तरीकों पर गंभीर सवाल उठाए।
2: अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को ये देखना चाहिए कि पाकिस्तान ने ना सिर्फ एक आम नागरिक संगठन को आतंकवादी घोषणा कर दिया, बल्कि उसके निहत्थे लोगों के ऊपर गोलियां बरसा रही है, और वो भी चुनाव प्रक्रिया के बीचों बीच। बहुत ही निंदनीय है पाकिस्तान का ये कायरता। इसीलिए जैक ने ये कह दिया है कि अब वो पीछे नहीं हटेगा और ना ही पाकिस्तान से कोई बातचीत करेगा।
1: इस बीच एमनेस्टी इंटरनेशनल ने पाकिस्तानी सेना द्वारा पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ घातक बल प्रयोग की खबरों की स्वतंत्र और पारदर्शी जांच की मांग की है। साथ ही उसने पाकिस्तानी अधिकारियों से संचार सेवाएं बहाल करने और मीडिया तथा स्वतंत्र पर्यवेक्षकों को क्षेत्र में जाने की अनुमति देने का आग्रह भी किया है। अमरीका ने कहा है कि ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर ने कल रात पश्चिम एशिया क्षेत्र में तैनात अमरीकी बलों पर अचानक हमले के प्रयास में कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में अमरीकी केंद्रीय कमान ने कहा है कि सभी ईरानी मिसाइलों को रोक दिया गया और अमरीकी बल सतर्क और तैयार हैं। अमरीका ने यह भी दावा किया कि पिछले 72 घंटों में 30 से ज्यादा हवाई ड्रोन हमलों के साथ ही

0: अमरीका और सऊदी लड़ाकू विमानों ने पूर्वी इराक में कई रसद और हथियार स्थलों पर हमले किए हैं। पश्चिम एशिया क्षेत्र में हालिया हमले अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू की व्हाइट हाउस में हुई मुलाकात के कुछ घंटों बाद हुए हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की और इसराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू के साथ बैठकें की। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लिविट ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप ने राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की और प्रधानमंत्री नेतन्याहू के साथ अपनी वार्ता समाप्त कर ली है और ये बातचीत सकारात्मक रही। ईरान के खिलाफ संयुक्त युद्ध शुरू करने के बाद नेतन्याहू और ट्रंप की ये पहली मुलाकात थी। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन ने चेतावनी दी है कि अफ्रीका भर में लाखों लोगों को आपराधिक गिरोहों द्वारा तस्करी करके ऑनलाइन धोखाधड़ी के धंधों में धकेल दिया गया है, जिससे सालाना अरबों डॉलर का अवैध मुनाफा कमाया जाता है। संगठन ने कहा कि मानव तस्करी के गिरोह नौकरी चाहने वालों को तेजी से निशाना बना रहे हैं और पीड़ितों को अवैध गतिविधियों में धकेल रहे हैं। ऐसी खबरें हैं कि केन्या, इथियोपिया और पड़ोसी देशों के नागरिकों को एशिया में चल रहे धोखाधड़ी के गिरोहों में तस्करी करके लाया गया है। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। भारत का कुल निर्यात वित्त वर्ष 2025-26 में रिकॉर्ड 863.1 अरब अमरीकी डॉलर तक पहुंच गया है। सरकार ने कल संसद में बताया कि वृद्धि वस्तुओं और सेवाओं दोनों के निर्यात में मजबूत बढ़ोतरी और देश के मुक्त व्यापार समझौतों के अंतर्गत बाजार पहुंच बढ़ने के कारण हुई है।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार वस्तुओं का निर्यात 441.8 अरब डॉलर रहा, जबकि सेवाओं का निर्यात 421.3 अरब डॉलर तक पहुंच गया, जो देश की निर्यात वृद्धि में दोनों क्षेत्रों की संयुक्त शक्ति को दर्शाता है। मंत्रालय ने बताया कि भारत के हाल के व्यापार समझौते के कारण विशेष रूप से संयुक्त अरब अमीरात, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, ओमान और EFTA देशों के साथ निर्यात के अवसरों में उल्लेखनीय विस्तार हुआ है। साथ ही इसने निर्यात बाजारों में विविधता लाने और श्रम प्रधान को सशक्त बनाने में सहायता की है। मंत्रालय ने उद्गम प्रमाण पत्रों के बढ़ते उपयोग और व्यापक उत्पाद कवरेज के माध्यम से भारत के हाल ही में लागू किए गए व्यापार समझौते के बढ़ते उपयोग का भी उल्लेख किया। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से फरहत नाज।
0: भारत समुद्री नाविक उपलब्ध कराने वाला विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश बनकर उभरा है। वैश्विक जहाजरानी उद्योग में भारत ने 311,936 समुद्री पेशेवरों का योगदान किया है। BIMCO ICS Seafarer वर्कफोर्स रिपोर्ट 2026 के अनुसार अब वैश्विक समुद्री कार्यबल में भारत का 12.16% का हिस्सा है। केंद्रीय बंदरगाह जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने वैश्विक जहाजरानी मार्गों को प्रभावित कर रहे बढ़ते भू राजनैतिक तनावों के बीच संघर्ष संवेदनशील क्षेत्रों में व्यापारिक जहाजों पर काम करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए सुरक्षा और कल्याणकारी उपायों की समीक्षा की। बैठक के दौरान श्री सोनोवाल को मौजूदा सुरक्षा स्थिति, समुद्री घटनाक्रम और आपात स्थिति में भारतीय नाविकों की मदद के लिए विदेशों में भारतीय दूतावासियों की तैयारियों के बारे में जानकारी दी गई। बाघों के संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने, प्राकृतिक आवासों की रक्षा करने और बाघों की घटती संख्या की रोकथाम के लिए आज विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जा रहा है। और अब खेल के मैदान की खबरों के साथ हैं शक्ति सिंह।
2: ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में गुलवीर सिंह ने पुरुषों की 10,000 मीटर दौड़ में रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। वे इस स्पर्धा में पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने 27:49.78 में ये दौड़ पूरी की। हरजिंदर कौर ने महिलाओं की 69 किलोग्राम भारोत्तोलन स्पर्धा में रजत पदक जीता। 29 वर्षीय हरजिंदर कौर ने 227 किलोग्राम के कुल भार को उठाकर ग्लासगो में 8 भारोत्तोलक स्पर्धाओं में भारत का 7वां पदक हासिल किया। अब भारत के कुल पदकों की संख्या 12 हो गई है, जिसमें 2 स्वर्ण, 7 रजत और 3 कांस्य पदक शामिल हैं। वहीं भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने श्रीलंका के साथ आगामी 2 टेस्ट मैचों की क्रिकेट श्रृंखला के लिए कल 15 सदस्यीय टीम

0: की घोषणा कर दी है। ये श्रृंखला 15 अगस्त से शुरू होगी। शुभमन गिल को भारतीय टीम का कप्तान बनाया गया है, जबकि केएल राहुल उप कप्तान होंगे। साई सुदर्शन और जसप्रीत बुमराह की उपलब्धता बीसीसीआई के उत्कृष्टता केंद्र की ओर से फिटनेस की स्वीकृति दिए जाने पर निर्भर करेगी, जबकि वॉशिंगटन सुंदर पहले टेस्ट के चयन के लिए उपलब्ध नहीं थे। दाएं हाथ के ऑफ स्पिन ऑलराउंडर सारांश जैन को पहली बार भारतीय टेस्ट टीम में शामिल किया गया है और अनुभवी ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा ने भी वापसी की है। श्रृंखला का पहला मैच 15 अगस्त से गाले में शुरू होगा, इसके बाद दूसरा और अंतिम टेस्ट मैच 23 अगस्त से कोलंबो में खेला जाएगा।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों की 10,000 मीटर दौड़ में रजत पदक जीतने पर गुलवीर सिंह और भारोत्तोलन में रजत पदक जीतने पर हरजिंदर कौर को बधाई दी है। और अंत में सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पिछले 2 दिनों में पाकिस्तानी सेना की बर्बर कार्रवाई में मरने वालों की संख्या हुई 30। ईरान ने पश्चिम एशिया में अमरीकी सेना पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की और इसराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू के साथ बैठकें की। राष्ट्रमंडल खेलों में गुलवीर सिंह 10,000 मीटर दौड़ में रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। हरजिंदर कौर ने भी भारोत्तोलन में रजत पदक अपने नाम किया। और क्रिकेट में बीसीसीआई ने श्रीलंका के खिलाफ 15 अगस्त से शुरू होने वाले 2 टेस्ट मैच की श्रृंखला के लिए टीम की घोषणा कर दी है। और इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good morning, this is Akashvani and I am Abhishek Mukhopadhyay with the World News.

0: நேயர்கள் இதுவரை ரசித்த சுகுமான ராகங்கள் நிறைவு பெற்றது. மீண்டும் இணைவும் 11:10 திரைகானம் நிகழ்ச்சியில். இன்னும் சில நொடிகளில் தொடர்வது ஹிந்தி மற்றும் ஆங்கிலத்தில் செய்திகள்.
1: साथ में प्रियंका अरोड़ा लोकसभा में आज लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर फिर चर्चा शुरू होगी। ये विधेयक लोक परीक्षाओं में अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन के लिए लाया गया है। विधेयक में कई महत्वपूर्ण प्रावधान हैं, जिनमें 10 वर्ष तक की कैद, 10 करोड़ तक का जुर्माना और अपराधियों की संपत्ति को जब्त करने जैसे कठोर दंड शामिल हैं। कल कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि नया कानून देश के विद्यार्थियों और युवाओं के कल्याण की रक्षा के लिए सरकार की गहरी प्रतिबद्धता का परिचायक है। श्री सिंह ने कहा कि ये विधेयक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस संकल्प को भी दोहराता है कि देश के युवाओं के भविष्य से कोई समझौता नहीं होने दिया जाएगा। वहीं कांग्रेस के गौरव गोगोई ने कहा कि सरकार शिक्षा क्षेत्र के प्रति गंभीर नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अपने आवास पर सचिवों के साथ दूसरी उच्च स्तरीय बैठक की। उन्होंने वित्त और अर्थव्यवस्था, वाणिज्य और उद्योग तथा प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों से संबंधित मंत्रालयों और विभागों की भावी कार्यसूची की समीक्षा की। बैठक का मुख्य उद्देश्य विकसित भारत के लक्ष्यों की दिशा में प्रगति को गति देना था। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: बैठक के दौरान श्री मोदी ने मंत्रालयों और विभागों के बीच एकजुटता की भावना के साथ काम करने का आग्रह किया। नागरिक केंद्रित शासन के महत्व का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की जनता शासन के केंद्र में रहनी चाहिए। उन्होंने याद दिलाया कि प्रत्येक निर्णय और नीति आम नागरिक के हितों और आकांक्षाओं के अनुरूप होना चाहिए। श्री मोदी ने कहा कि भारत बुनियादी ढांचे में महत्वपूर्ण निवेश कर रहा है, लेकिन स्वदेशी प्रौद्योगिकियों के विकास को भी समान प्राथमिकता दी जानी चाहिए। आदित्य प्रताप सिंह, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: सरकार ने कहा है कि देश में मत्स्य पालन को बढ़ावा देने, उससे जुड़ी बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और मछुआरों की आजीविका में सुधार लाने के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत जम्मू कश्मीर के लिए 1,54,57,00,000 रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। अमरीका ने कहा है कि ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने कल रात पश्चिम एशिया क्षेत्र में तैनात अमरीकी बलों पर अचानक हमले के प्रयास में कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। अमरीकी केंद्रीय कमान ने कहा कि सभी ईरानी मिसाइलों को रोक दिया गया और अमरीकी बल सतर्क तथा उच्च स्तर की तैयारी में है। ओडिशा में लगातार हो रही बारिश से राज्य के कई हिस्सों में जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है। इसके कारण भद्रक जिला सबसे अधिक प्रभावित है। अधिकारियों ने संवेदनशील क्षेत्रों में बचाव और राहत कार्य तेज कर दिए हैं। उधर असम में बाढ़ से मरने वालों की आधिकारिक संख्या बढ़कर 75 हो गई है। शिवसागर जिले में ही कल 7 और लोगों की मौत हुई। ऊपरी असम के जिलों में बाढ़ की स्थिति धीरे धीरे सामान्य हो रही है और अधिकतर क्षेत्रों में बाढ़ का पानी उतर रहा।

0: है। मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंता बिस्व शर्मा ने बाढ़ से संबंधित घटनाओं में जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों के लिए 4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि की घोषणा की है। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल तक तेज वर्षा के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के लिए अगले 2 दिनों तक ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में आज मूसलाधार वर्षा हो सकती है। आज वैश्विक बाघ दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाघ संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले वन कर्मियों और वैज्ञानिकों की सराहना की है। वन और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि भारत ने बाघों के संरक्षण में शानदार सफलता हासिल की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री यादव ने कहा कि विश्व के 75% बाघ भारत में हैं। आध्यात्मिक और शैक्षणिक गुरुओं को समर्पित गुरु पूर्णिमा आज मनाई जा रही है, जिसे व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। प्रधानमंत्री ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इस अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में गुलवीर सिंह ने पुरुषों की 10,000 मीटर दौड़ में रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। वे स्पर्धा में पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बन गए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने रजत पदक जीतने पर गुलवीर सिंह को बधाई दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani. The news read by Abhishek Mukhopadhyay. Prime Minister Narendra Modi chaired the second high-level meeting with secretaries to the government at his residence yesterday. During the meeting, the Prime Minister reviewed the future action agenda of ministries and departments dealing with finance and economy, commerce and industry, and technology sectors. The meeting focused on accelerating progress towards the goals of Viksit Bharat. The Lok Sabha will resume the discussion on the Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026 today. Union Minister Dr. Jitendra Singh moved the bill for consideration and passing in the House yesterday. The bill seeks to amend the Public Examinations Prevention of Unfair Means Act 2024. The legislation incorporates several significant provisions, including stringent penalties such as imprisonment for up to 10 years, fines of up to 10 crore rupees, and the seizure of the properties of convicted offenders. Moving the bill yesterday, Union Minister Dr. Jitendra Singh said, the new legislation reaffirms the government's deep commitment to safeguard the welfare of students and the youth of this country.
2: You must compliment Prime Minister Modi and this government. It has finished an unfinished task which you should have accomplished. In 2024, this bill was brought in to reassure the students that their future is safe. So we learned from the experience of the 2024 Act and the subsequent sequence of events, like any responsible government should do. And therefore, this amendment is being brought in to make the law more stringent, and to ensure speedy justice, so that the credibility of all these exams gets enhanced and gets reinstated.
1: The central government on Tuesday informed the Lok Sabha that projects worth 154.57 crore have been approved for Jammu and Kashmir under the Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana PMMSY to strengthen fisheries infrastructure, boost fish production and improve the livelihoods of fishermen. Replying to a question raised by Muhammad Hamdullah Sayed, Union Minister for Fisheries, Animal Husbandry and Dairy, Rajiv Ranjan Singh, alias Lallan Singh, said the Department of Fisheries has approved projects worth 1,032.66 crore across Union Territories under PMMSY with a central share of Rs. 844.37 crore. The Minister informed the House that Jammu and Kashmir has been sanctioned projects worth 154.57 crore rupees, including a central share of 81.43 crore. Rupees. So far, 79.61 crore rupees has been released, of which 63.44 crore rupees has been utilized. The death toll in the brutal state crackdown in the Pakistan-occupied Jammu and Kashmir POJK has risen to 30 in the past 2 days, with many more injured. According to the local group Joint Awami Action Committee, JAAC, the Pakistani military fired on tens of thousands of

0: संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित हुई। आज सवेरे लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिड़ला ने प्रश्नकाल चलाने की कोशिश की तो विपक्षी सदस्यों ने विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि प्रश्नकाल सदस्यों का होता है और सरकार से जवाब मांगना सदस्यों के लिए सबसे महत्वपूर्ण काम है।
1: प्रश्नकाल के बाद इस चर्चा में भाग लीजिए। आप माननीय सदस्यों के हक को नहीं मार सकते, ये तरीका उचित नहीं है। आप अगर सदन को व्यवधान करना चाहते हैं, नियोजित तरीके से गतिरोध पैदा करना चाहते हैं, ये संसदीय परंपराओं के अनुरूप नहीं है।
0: राज्यसभा में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने शून्यकाल शुरू किया। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी सांसद जॉन ब्रिटास ने जेएनयू छात्र संघ की पूर्व अध्यक्ष आयशे घोष के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए दिल्ली पुलिस द्वारा पार्टी मुख्यालय में कथित तौर पर घुसने का मुद्दा उठाया। इस पर सदन के नेता जेपी नड्डा ने कहा कि यह कानून व्यवस्था का एक सामान्य मामला है। हालांकि विपक्षी सदस्यों ने अपनी मांग पर जोर देते हुए विरोध जारी रखा, जिसके कारण सभापति ने सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने संसद में चर्चा के दौरान कांग्रेस के सांसदों पर लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 के प्रावधानों पर चर्चा न करने का आरोप लगाया है।
2: आज हम उम्मीद करते हैं राहुल गांधी जी और बाकी लोग बिल पे बोले, वो इधर उधर का बात करके और राजनीतिकरण करके वो ध्यान भटकाना चाहते हैं। एग्जामिनेशन को लेकर के कोई और सजेशन है तो सजेशन दे सकते हैं कांग्रेस पार्टी। इतना महत्वपूर्ण बिल है और बिल पे नहीं बोलते हैं, ये ठीक बात नहीं है।
0: झारखंड लोक सेवा आयोग परीक्षा के कथित पेपर लीक मामले के विरोध में झारखंड समेत कई भाजपा सांसदों ने आज संसद परिसर में प्रदर्शन किया। उन्होंने मामले की केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई जांच और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग की। इस बीच केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता संजय सेठ ने भी मामले की सीबीआई जांच की मांग की। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने दक्षिण पश्चिमी जापान के कुमामोतो इलाके में कल आए जबरदस्त भूकंप पर दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने वहां के लोगों और सरकार के प्रति भारत का समर्थन और एकजुटता जाहिर की। भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 13 हो गई है। जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची ने कहा है कि प्रभावित इलाकों में बचाव कार्य चल रहा है। यूक्रेन के कीव स्थित भारतीय दूतावास ने कहा है कि एमवी अमीरवन जहाज पर सवार भारतीय नाविकों से संबंधित स्थिति उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है और वे जहाज पर सवार सभी भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए संबंधित पक्षों के साथ निरंतर संपर्क में हैं। दूतावास ने ये जानकारी सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से दी। भारत ने होर्मुज जलडमरू मध्य में हाल ही में हुए कई समुद्री जहाजों पर हमलों की कड़ी निंदा की है। भारत ने कहा है कि इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों और नागरिक बुनियादी ढांचों को निशाना बनाए जाने की घटनाएं तुरंत बंद होनी चाहिए। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा कि पश्चिम एशिया में हमले फिर से शुरू होना चिंता का विषय है। उन्होंने इस महीने होर्मुज से गुजरने के दौरान जीएफएस गैलेक्सी, एमटी अल बहिया और एमटी मुंबासा सहित कई जहाजों पर हुए हमलों की निंदा की। गृह मंत्री अमित शाह ने असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिस्व शर्मा से ऊपरी असम में आई विनाशकारी बाढ़ के बाद चल रहे राहत कार्यों की जानकारी ली। डॉक्टर शर्मा ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि श्री शाह ने जमीनी स्थिति की समीक्षा की और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत बहाली और पुनर्निर्माण के लिए केंद्र सरकार के हर संभव सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 1% की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 823 अंक बढ़कर 77,588 तथा निफ्टी 236 अंक की वृद्धि के साथ 24,221 पर थे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Anuja Kumar.

0: territory. International Tiger Day is being observed across the world today to raise awareness about tiger conservation, protect natural habitats and address the declining numbers of wild tigers. Prime Minister Narendra Modi has extended his greetings saying India is home to 70% of the global tiger population. He noted that India's tiger conservation efforts are inspired by the nation's centuries-old culture of living in harmony with nature and powered by the collective will of the people. Addressing an event in New Delhi, Minister of Environment, Forest and Climate Change Bhupendra Yadav today said that tiger conservation is not merely about protecting one species but about safeguarding the entire ecological system and preserving India's compassionate relationship with nature.
1: India has made significant strides in conservation under Prime Minister Narendra Modi's leadership. The tiger population has increased from 2,226 to over 3,600. Tiger reserves have expanded from 47 to 58, and elephant reserves have also gone up from 28 to 32. Underscoring the country's growing commitment to water conservation, designated Ramsar sites have also grown from 26 to 100.
2: Designated Ramsar sites ki sankhya 26 thi, jo badhkar ke ab 100 ho gayi.
0: During the event, he also launched ecotourism web portal developed by the National Tiger Conservation Authority. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Lok Sabha continues discussion on Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026. Government says bill aims to strengthen students' confidence in examination system. Home Minister Amit Shah reviews flood relief efforts in Assam, says centre to provide all help to Assam during difficult time. India strongly condemns recent attacks on several maritime vessels in Strait of Hormuz, says commerce through international waterways must be restored. Death toll reaches 40 in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir following brutal crackdown by Pakistani forces. And International Tiger Day 2026 being observed today, India leads the world in tiger conservation efforts with nearly 70% global tiger population. And with that, we end the midday news.
3: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार लोकसभा में आज लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर फिर चर्चा सरकार ने कहा विधेयक का उद्देश्य परीक्षा प्रणाली में विद्यार्थियों का विश्वास बढ़ाना है गृह मंत्री अमित शाह ने असम में बाढ़ राहत कार्यों की समीक्षा की उन्होंने कहा सरकार इस कठिन समय में असम को हर संभव सहायता प्रदान करेगी भारत ने हुरमूज जलडमरू मध्य में हाल में हुए कई समुद्री जहाजों पर हमले की कड़ी निंदा की कहा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों से व्यापार बहाल होना चाहिए पाकिस्तानी सेना की बर्बर कार्रवाई के बाद पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में मरने वालों की संख्या 40 हुई और आज अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा विश्व में बाघों की कुल संख्या का 70% भारत में अब समाचार विस्तार से लोकसभा में आज लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर विचार और पारित करने के लिए चर्चा फिर शुरू हुई ये विधेयक लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 में संशोधन का प्रावधान करता है विधेयक में कई महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल किए गए हैं इसके तहत दोषी पाए जाने वालों के लिए अधिकतम 10 वर्ष के कारावास 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने और दोष सिद्ध अपराधियों के संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए विधेयक में प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन को विशेष फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करने का प्रावधान किया गया है ताकि मामलों की दैनिक आधार पर सुनवाई हो सके इसके अतिरिक्त पुलिस थाने में मामला दर्ज होने की तिथि से 2 महीने के भीतर जांच पूरी करना अनिवार्य होगा जबकि आरोप पत्र दाखिल होने के 3 महीने के भीतर मुकदमे का निपटारा करना होगा केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने ये विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया था चर्चा में भाग लेते हुए जनता दल यूनाइटेड के सांसद दिलेश्वर कामत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ये विधेयक विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य को सुनिश्चित करेगा और शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ाएगा। उन्होंने कहा कि ये विधेयक

0: विधेयक विद्यार्थियों के हित में लाया गया है। वहीं विधेयक का विरोध करते हुए आरएसपी सांसद एनके प्रेमचंद्रन ने कहा कि विधेयक अपने घोषित उद्देश्य को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। विधेयक पर चर्चा के दौरान लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि देश की शिक्षा व्यवस्था अब बहुत महंगी हो गई है। इस दौरान संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने गृह मंत्री अमित शाह पर राहुल गांधी की टिप्पणियों पर कड़ी आपत्ति व्यक्त की। श्री रिजिजू ने श्री गांधी से सदन में अपनी टिप्पणी के लिए माफी मांगने की मांग की।
1: कौन सा ऑर्डर है वो ऑर्डर पे आप निकल के बताइए। आपने कहा होम मिनिस्टर ने ऑर्डर दिया है फायरिंग के लिए, आप वो ऑर्डर का कॉपी निकालिए, आप बताइए किसने आपको बताया, कौन सा ऑर्डर नंबर किस व्यक्ति को कहा है, कौन सा अधिकारी, आप कॉपी निकाल करके सदन में रखिए। ऐसा नहीं हो सकता है, चर्चा ऐसा नहीं हो सकता है। कुछ भी मन में चाहेगा बोल करके आप भाग जाइए हेडलाइन बतौड़ने के लिए, ऐसा नहीं हो सकता। ये भारत का संसद है, यह जिम्मेदारी के साथ बोलना चाहिए।
0: श्री राहुल गांधी की टिप्पणियों पर हंगामे के बीच लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 2:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली है। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने शून्यकाल शुरू किया। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी सांसद जॉन ब्रिटास ने जेएनयू छात्र संघ की पूर्व अध्यक्ष आयशे घोष के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए दिल्ली पुलिस द्वारा पार्टी मुख्यालय में कथित तौर पर घुसने का मुद्दा उठाया। इस पर सदन के नेता जेपी नड्डा ने कहा कि यह कानून व्यवस्था का एक सामान्य मामला है। हालांकि विपक्षी सदस्यों ने अपनी मांग पर जोर देते हुए विरोध जारी रखा, जिसके कारण सभापति ने सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी। राज्यसभा की कार्यवाही जारी है। भाजपा सांसद डॉ. सतीश पूनिया ने संसद में कांग्रेस के आचरण की आलोचना करते हुए आरोप लगाया है कि पार्टी रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाने में विफल रही है। भाजपा सांसद संजय जायसवाल ने भी विपक्ष पर परीक्षा सुधारों पर हुई चर्चा में रचनात्मक रूप से भाग न लेने का आरोप लगाते हुए कहा कि विपक्ष ने प्रस्तावित कानून में कोई कमी नहीं बताई और न ही सुधार के लिए कोई सुझाव दिया। भाजपा सांसद शशांक मणि ने लोक परीक्षा संशोधन विधेयक 2026 को प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। झारखंड लोक सेवा आयोग परीक्षा के कथित पेपर लीक मामले के विरोध में झारखंड समेत कई भाजपा सांसदों ने आज संसद परिसर में प्रदर्शन किया। उन्होंने मामले की केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई जांच और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग की। केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता संजय सेठ ने भी मामले की सीबीआई जांच की मांग की।
2: झारखंड के अंदर एक टीडीपीएल एजेंसी है जो परीक्षा कराती है, उत्तर प्रदेश सरकार ने उसको ब्लैकलिस्टेड किया, यहाँ तक कि जेपीएससी ने ब्लैकलिस्टेड किया, फिर उसको बुलाकर पिछले 4 सालों से उसी को जिम्मा दे दिया। जो ब्लैकलिस्टेड है आपने भी किया, थालियां परोस के दे दिया, अब आप कहां से न्याय दे पाओगे। तभी तो आज झारखंड के लाखों युवा मांग कर रहे हैं कि सीबीआई जांच कराओ। हम तो इंतजार कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी का, कब वो झारखंड आएंगे, कब मुख्यमंत्री आवास के सामने धरने बैठेंगे, कब वो मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांगेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री शिक्षा मंत्री हैं।
0: भाजपा सांसद विद्युत बरन महतो ने झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस सरकार पर गहरे भ्रष्टाचार में लिप्त होने का आरोप लगाया है।
3: जेपीएससी बहाली में पेपर लीक हुआ है और आए दिन झारखंड में इस तरह कुछ न कुछ होता है। लॉ एंड ऑर्डर एकदम खत्म है, हर विभाग में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। इसके लिए हम लोग यहाँ पर धरना दिए हैं। हम लोग चाहते हैं कि जो जेपीएससी में धांधली हुआ इसको सीबीआई जांच करे।
0: लोकसभा ने एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित विधेयकों की जांच कर रही संयुक्त संसदीय समिति का कार्यकाल इस वर्ष संसद के शीतकालीन सत्र के अंतिम सप्ताह के पहले दिन तक बढ़ा दिया है। समिति के अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी सांसद पीपी चौधरी ने संविधान 129वां संशोधन विधेयक 2024 तथा केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक 2024 की समीक्षा कर रही संयुक्त संसदीय समिति का कार्यकाल बढ़ाने का प्रस्ताव सदन में पेश किया। इन विधेयकों का उद्देश्य लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने की व्यवस्था लागू करना है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इस प्रस्ताव को ध्वनिमत से पारित कर दिया।
4: प्रश्न है कि सिर्फ पीपी चौधरी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में हाँ कहें,
5: हाँ।
4: जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में ना कहें,
5: हाँ।
4: मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों पक्ष में हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

0: समाचार हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंता बिस्व शर्मा से बात की और ऊपरी असम में आई भीषण बाढ़ के मद्देनजर जारी राहत कार्यों की समीक्षा की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर शर्मा ने बताया कि श्री शाह ने जमीनी स्थिति का जायजा लिया और आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत, पुनर्स्थापन और पुनर्निर्माण के लिए सभी आवश्यक सहायता प्रदान करती रहेगी। इस बीच असम में बाढ़ की स्थिति में और सुधार हुआ है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राहत और बचाव अभियान युद्ध स्तर पर जारी है।
1: असम में शिवसागर, गोलाघाट, सोराइदेव और जोरहाट जैसे सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित जिलों में राहत और पुनर्वास कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। स्थिति धीरे धीरे सामान्य हो रही है। असम सरकार ने हाल की बाढ़ में प्रभावित लोगों के लिए राहत और पुनर्वास उपायों की घोषणा की है। इनमें बाढ़ में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को अनुग्रह राशि, प्रभावित परिवारों को वित्तीय सहायता तथा विद्यार्थियों के लिए शैक्षणिक सहायता शामिल है। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: ओडिशा से हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि राज्य में गंभीर होती बाढ़ की स्थिति से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है।
2: उड़ीसा में बाढ़ की स्थिति गंभीर हो गई है। इसमें 4 लोगों की मौत हुई है और 6 जिले में 2,00,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं, जबकि लगभग 28,000 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। जाजपुर, भद्रक, बालेश्वर और केंदुझर सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों में शामिल है। बैतरणी नदी आखुआपदा में खतरे के निशान से काफी ऊपर बह रही है और सालंदी नदी में अभी भी उफान है। जाजपुर के दशरथपुर में तटबंध टूटने से सैकड़ों परिवार फंस गए हैं। बचाव और राहत कार्यों के लिए एनडीआरएफ और ओडीएफ के 17 टीम तैनात की गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: भारत ने होर्मुज जलडमरू मध्य में हाल में हुए कई समुद्री जहाजों पर हमलों की कड़ी निंदा की है। भारत ने कहा है कि इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों और नागरिक बुनियादी ढांचे को निशाना बनाए जाने की घटनाएं तुरंत बंद होनी चाहिए। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा कि पश्चिम एशिया में हमले फिर से शुरू होना चिंता का विषय है।
3: पश्चिम एशिया भारत के लिए बहुत अहम इलाका है। इस इलाके की सुरक्षा और स्थिरता में हमारे बड़े हित जुड़े हैं। भारत का व्यापार और ऊर्जा सप्लाई चेन इस इलाके से मजबूती से जुड़े हैं। खाड़ी इलाके में लगभग 1 करोड़ भारतीय रहते हैं और काम करते हैं। उनकी सुरक्षा और भलाई हमारे लिए सबसे आवश्यक है। इस इलाके में चल रहे टकराव में कुछ समय के लिए रुकावट के बाद हमलों का फिर से शुरू होना और तनाव का बढ़ना चिंता की बात है। ये बहुत चिंताजनक है और भारत तनाव को तुरंत कम करने की अपील करता है।
0: श्री हरीश ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों पर आवाजाही और व्यापारिक स्वतंत्रता शीघ्र बहाल की जानी चाहिए। यूक्रेन के कीव स्थित भारतीय दूतावास ने कहा है कि एमवी अमीर वन जहाज पर सवार भारतीय नाविकों से संबंधित स्थिति उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है और वे जहाज पर सवार सभी भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए संबंधित पक्षों के साथ निरंतर संपर्क में हैं। दूतावास ने ये जानकारी सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से दी। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अशांति लगातार बढ़ती जा रही है। जम्मू कश्मीर मानवाधिकार निगरानी संस्था ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त के कार्यालय से हस्तक्षेप करने की अपील की है। ये अपील उन खबरों के बाद की गई है जिनमें आरोप लगाया गया है कि पाकिस्तानी सुरक्षा बलों द्वारा की गई गोलीबारी में 40 से अधिक प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई है और कई घायल हुए हैं। जम्मू कश्मीर मानवाधिकार निगरानी संस्था ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त वोल्कर तुर्क को भेजी अपनी अपील में कहा है कि ये घटना 27 जुलाई को ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी द्वारा शांतिपूर्ण मार्च के रावलकोट से मुजफ्फराबाद की ओर दोबारा शुरू होने के बाद हुई। उधर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त के प्रवक्ता जेरेमी लॉरेंस ने जारी एक बयान में कहा है कि किसी नागरिक समाज संगठन को अपराधी घोषित करना और शांतिपूर्ण सभाओं पर कड़े प्रतिबंध लगाना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सभा और संगठन बनाने के अधिकार के उल्लंघन को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा करता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये

0: आकाशवाणी है। आज वैश्विक बाघ दिवस है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर वन्य जीव प्रेमियों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्व में बाघों की कुल संख्या का 70% भारत में है। भारत के बाघ संरक्षण प्रयास प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करने की सदियों पुरानी संस्कृति से प्रेरित हैं और जनता की सामूहिक इच्छा शक्ति से संचालित हैं। वन और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि भारत ने बाघों के संरक्षण में शानदार सफलता हासिल की है।
1: हमारी जो टाइगर पॉपुलेशन 2226 थी वो बढ़कर 3600 से ज्यादा हुई। 2014 में 47 टाइगर रिजर्व्स होते थे, उनकी संख्या बढ़कर भी 58 हुई है। एलिफेंट रिजर्व्स की संख्या जो 28 होती थी वो भी पिछले 10 वर्षों में बढ़कर के 32 हुई है। डेजिग्नेटेड रामसर साइट्स की संख्या 26 थी जो बढ़कर के अब 100 हो गई है।
0: इस दौरान श्री यादव ने राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा विकसित इको टूरिज्म वेब पोर्टल का भी शुभारंभ किया। इस पोर्टल पर सभी बाघ अभयारण्यों की जानकारी उपलब्ध है। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेल 2026 में गुलवीर सिंह ने पुरुषों की 10,000 मीटर दौड़ में रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने रजत पदक जीतने पर गुलवीर सिंह को बधाई दी है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा में आज लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर फिर चर्चा। सरकार ने कहा विधेयक का उद्देश्य परीक्षा प्रणाली में विद्यार्थियों का विश्वास बढ़ाना है। गृह मंत्री अमित शाह ने असम में बाढ़ राहत कार्यों की समीक्षा की। भारत ने होर्मुज जलडमरू मध्य में हाल में हुए कई समुद्री जहाजों पर हमलों की कड़ी निंदा की। पाकिस्तानी सेना की बर्बर कार्रवाई के बाद पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में मरने वालों की संख्या 40 हुई और आज अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: நேரம் 2:30 நிமிடம்.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 आज लोकसभा में पारित हो गया है। ये विधेयक लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 में संशोधन का प्रावधान करता है। प्रावधानों के तहत दोषी पाए जाने वालों के लिए अधिकतम 10 वर्ष के कारावास, 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने और दोष सिद्ध अपराधियों की संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए विधेयक में राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन को विशेष फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करने का प्रावधान किया गया है, जिससे मामलों की रोजाना सुनवाई हो सके। उधर राज्यसभा ने राष्ट्रीय सम्मान की रक्षा के लिए राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। ये विधेयक राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 में और संशोधन करेगा। प्रस्तावित विधेयक वंदे मातरम को राष्ट्रीय गान जन गण मन के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करेगा। विधेयक पर हुई चर्चा का उत्तर देते हुए गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि विधेयक में संशोधन केवल विधायी परिवर्तन नहीं है। उन्होंने कहा कि ये भारत की आत्मा, राष्ट्रीय चेतना, सांस्कृतिक विरासत और स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों के प्रति सामूहिक प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इससे पहले चर्चा की शुरुआत करते हुए भाजपा सांसद डॉ राम मोहनदास अग्रवाल ने कहा कि पिछले 123 वर्षों से वंदे मातरम गीत का अपमान किया गया है। उन्होंने कहा कि इस गीत से प्रेरित होकर देश के क्रांतिकारियों ने राष्ट्र के लिए बलिदान दिया। YSRCP के गोल्ला बाबूराव ने सदन के सभी सदस्यों से राष्ट्रगीत का सम्मान करने का अनुरोध किया। उन्होंने इस विधेयक को पेश करने के लिए सरकार के प्रति आभार भी व्यक्त किया। इस चर्चा में बीजेडी की सुलता देव, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, AIADMK के डॉ एम थंबीदुरई और अन्य सदस्यों ने भाग लिया। गृहमंत्री अमित शाह ने आज असम के मुख्यमंत्री डॉ हिमंता बिस्वा सरमा से बात की और असम के ऊपरी हिस्सों में आई भीषण बाढ़ के मद्देनजर जारी राहत कार्यों की समीक्षा की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ सरमा ने बताया कि श्री शाह ने जमीनी स्थिति का जायजा लिया और आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत, पुनर्स्थापन और पुनर्निर्माण के लिए सभी आवश्यक सहायता प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि गृहमंत्री ने दोहराया है कि इस कठिन समय में केंद्र सरकार की सभी एजेंसी और संसाधन असम के लोगों की सहायता के लिए तत्पर हैं। इस बीच असम में बाढ़ की स्थिति में और सुधार हुआ है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि राहत और बचाव अभियान युद्ध स्तर पर जारी है।
1: असम में शिवसागर, घोलाघाट, सोरायदेव और जोरहाट जैसे सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित जिलों में राहत और पुनर्वास कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। स्थिति धीरे धीरे सामान्य हो रही है। असम सरकार ने हाल की बाढ़ में प्रभावित लोगों के लिए राहत और पुनर्वास उपायों की घोषणा की है। इनमें बाढ़ में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को अनुग्रह राशि, प्रभावित परिवारों को वित्तीय सहायता तथा विद्यार्थियों के लिए शैक्षणिक सहायता शामिल है।

है भारतीय सेना, जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना, हर संकट का समाधान है भारतीय सेना, भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह

0: as a data entry operator and Hindi typist in various pay levels. The initial deputation period will be for 3 years, extendable up to 2 additional years based on performance. Eligible government officers must apply through proper channel along with APARs, vigilance clearance and other required documents. Applications must reach the member secretary and CEO CARA within 30 days from the date of publication of this advertisement in the Employment News. Complete eligibility details, application procedure and the prescribed format is available on the official CARA website, that is at www.cara.wcd.gov.in. The National Institute of Educational Planning and Administration, New Delhi, a deemed to be university, has invited applications for 2 posts of guest faculty assistant professors for the Masters of Arts in School Leadership and Management program on an hourly basis. Interested candidates can apply as per terms and conditions provided by the institute. The last date for submission of applications is 21 days from the date of publication of this advertisement. For detailed information, kindly visit the official website at www.niepa.ac.in. And now we have the employment news in Hindi.
1: आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है रोजगार समाचार। नमस्कार, रोजगार समाचार के आज के अंक में मैं हूं मुनीष शर्मा। आइए जानकारी लेते हैं किन रिक्तियों के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। केंद्रीय शास्त्रीय तमिल संस्थान चेन्नई द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार वित्त अधिकारी के पद के लिए आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 30 दिन और बढ़ा दी गई है। विस्तृत जानकारी के लिए आप केंद्रीय शास्त्रीय तमिल संस्थान से संपर्क कर सकते हैं अथवा विज्ञापन संख्या CICT 1-2026 का संदर्भ देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ अनुसंधान संस्थान मथुरा अपने विभिन्न शिक्षण पदों पर भर्ती के लिए पात्र उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित कर रहा है। विस्तृत विज्ञापन विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.upvetuniv.edu.in पर देखा जा सकता है। पात्र उम्मीदवार निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र को भरकर उसे पंजीकृत अथवा स्पीड पोस्ट के माध्यम से प्रभारी भर्ती कोष DUVASU मथुरा को 30 जुलाई 2026 तक अथवा उससे पहले भेज सकते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो सहायक, कनिष्ठ निजी सहायक, अपर श्रेणी लिपिक और आशुलिपिकों की भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है। विस्तृत विवरण के लिए देखिए इसरो की वेबसाइट www.isro.gov.in। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला नवरंगपुरा अहमदाबाद में प्रशासनिक अधिकारी का 1 पद, लेखा अधिकारी के 2 पद तथा क्रय एवं भंडार अधिकारी के 2 पद रिक्त हैं। संपूर्ण विवरण के लिए देखिए भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला की वेबसाइट। इसके अतिरिक्त 25 से 31 जुलाई 2026 तक के रोजगार समाचार पत्र में भी इस विज्ञापन को देख सकते हैं। पावर फाउंडेशन ऑफ इंडिया नई दिल्ली कार्यकारी सहायक महानिदेशक हेतु आवेदन आमंत्रित कर रही है। इसके लिए इच्छुक अभ्यर्थी देख सकते हैं पावर फाउंडेशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट www.powerfoundation.org.in। पावर फाउंडेशन ऑफ इंडिया इन पदों के लिए भी आवेदन आमंत्रित करता है। सहायक प्रबंधक ट्रांसमिशन, सहायक प्रबंधक हाइड्रो, इन पदों से जुड़ी शर्तों के लिए भी आप देख सकते हैं वेबसाइट www.powerfoundation.org.in। आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।

आज गुरु पूर्णिमा के पावन दिवस पर गुरु अष्टकम की ये पंक्तियां गुरु की महिमा और शिष्य के जीवन में उनके महत्व को बहुत गहराई से समझाती हैं। इनका भाव है कि जो व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति के साथ गुरु के चरणों में समर्पित होता है, जो अपने मन और इंद्रियों को संयमित करना सीखता है, वो धीरे धीरे संसार के मोह और बंधनों से मुक्त होकर अपने भीतर बसे दिव्य स्वरूप का अनुभव कर पाता है। गुरु केवल बाहरी ज्ञान देने वाले नहीं होते, बल्कि वे हमारे भीतर छिपे सत्य और चेतना के मार्ग को दिखाते हैं। गुरु पूर्णिमा इसी दिव्य संबंध को नमन करने का अवसर है। ये केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि उस प्रकाश के प्रति कृतज्ञता है जिसने हमारे जीवन से अज्ञान का अंधकार दूर किया। आध्यात्मिक गुरु हमें सिखाते हैं कि जीवन की सबसे बड़ी यात्रा बाहर की उपलब्धियों की नहीं, बल्कि स्वयं को जानने की यात्रा है। वे हमारे मन को स्थिरता, विचारों को पवित्रता और जीवन को सही दिशा प्रदान करते हैं। एक गुरु शिष्य को केवल सफल बनना नहीं सिखाते, बल्कि एक बेहतर इंसान बनाना भी सिखाते हैं। ये हमें अहंकार से विनम्रता की ओर, भ्रम से ज्ञान की ओर और अशांति से आत्मिक शांति की ओर ले जाते हैं। इस गुरु पूर्णिमा पर आइए उन सभी गुरुओं के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करें, जिनकी सीख और आशीर्वाद हमारे जीवन में सदैव मार्गदर्शक प्रकाश बनकर साथ रहते हैं।

0: A guru is not just a guide, but a source of wisdom, inspiration, and inner awakening. From spiritual masters who lead us towards self-realization, to teachers who shape our thoughts and dreams, gurus illuminate the path of life with knowledge and values. On this Guru Purnima, we celebrate this timeless bond of gratitude and learning. We will discuss the significance and deeper meaning of this sacred day in our Dateline segment further.
1: गुरु पूर्णिमा की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सुन रहे हैं न्यूज़ मैगजीन प्रोग्राम परिक्रमा। मैं हूं विशाल शर्मा और आज मेरे साथ हैं सायरा मुश्तबा। अगले आधे घंटे तक हम इस कार्यक्रम में लाएंगे आप तक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार, क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास भी चलेंगे और जानेंगे कि आज क्या उनके पास खास रिपोर्ट्स हैं और खेल के मैदान की गतिविधियाँ भी होंगी, साथ ही साथ आर्थिक जगत की सुर्खियों पर भी हम डालेंगे एक नज़र और प्रोग्राम के आखिर में बात करेंगे उन विशिष्ट व्यक्तित्वों के बारे में जिनकी आज है पुण्यतिथि या आज ही के दिन जिनका हुआ था जन्म।
0: Absolutely. Namaskar, Radha. Welcome to Parikrama. Without much ado, let's start with the headlines, Vishal. Lok Sabha passes Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026. Rajya Sabha passes Prevention of Insults to National

0: ऑनर अमेंडमेंट बिल 2026।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने असम में बाढ़ राहत कार्यों की समीक्षा की, कहा कि केंद्र सरकार मुश्किल समय में असम को हर संभव मदद देगी।
0: India strongly condemns recent attacks on several maritime vessels in Strait of Hormuz, says commerce through international waterways must be restored.
1: पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी सेना की बर्बर कार्रवाई के बाद मरने वालों की संख्या 40 हो गई है।
0: And International Tiger Day 2026 being observed today, India leads the world in tiger conservation efforts with nearly 70% global tiger population. And as we had mentioned before that today we are going to cover two important topics. Of course, we'll talk about Guru Purnima, lekin aaj International Tiger Day bhi hai Vishal, so let's start with that. And of course, we know that tiger is often called the king of the jungle, but its real power lies far beyond its strength. A forest without a tiger may still look green, but the trees may still stand tall and birds may still sing. But beneath the surface, the balance of nature slowly begins to unravel.
1: बाघ कोई आम वन्य जीव नहीं है, बल्कि पूरे इकोसिस्टम को बनाए रखता है। बाघ को बचाने का मतलब है जंगलों, नदियों, वन्य जीवों और इन प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर लाखों लोगों की रक्षा करना।
0: That's why every year on 29th of July, the world marks International Tiger Day. A reminder that saving the tiger is ultimately about safeguarding our own future.
1: भारत जंगली बाघों के लिए दुनिया का सबसे बड़ा ठिकाना बन गया है। आज दुनिया में मौजूद सभी बाघों में से लगभग 70% बाघ हमारे ही देश में पाए जाते हैं।
0: That's right, Vishal. That means if there are 10 wild tigers anywhere on the planet, about 7 of them are living in Indian forests. And well, that's not sheer luck. That's decades of planning, scientific conservation, dedicated forest guards and participation of local communities.
1: भारत के इतिहास में बाघ का हमेशा से एक खास स्थान रहा है। 1972 में हमारा राष्ट्रीय पशु बनने से बहुत पहले ही इसे साहस और ताकत के प्रतीक के तौर पर पुराने सिक्कों, शाही मोहरों और मंदिरों की नक्काशी में दिखाया जाता था।
0: जी बिल्कुल सही कहा आपने विशाल। एंड इवन टुडे वेल स्पॉटिंग अ टाइगर इन द वाइल्ड इज कंसीडर्ड अ वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस फॉर मेनी। मे बी यू सीन पीपल सेलिब्रेटिंग आफ्टर कैचिंग अ ग्लिम्स ऑफ वन ड्यूरिंग अ सफारी इन रणथंबोर, जिम कॉर्बेट और बांधवगढ़।
1: ये उत्साह सिर्फ किसी खूबसूरत वन्य पशु को देखने का नहीं है, बल्कि ये अपनी आंखों के सामने संरक्षण की एक सफल कहानी को साकार होते देखने जैसा भी है। लेकिन यहाँ एक सवाल भी है कि बाघों को बचाने में इतनी मेहनत आखिर क्यों की जाती है? क्यों ना हर प्रजाति को एक एक करके बचाया जाए?
0: That's right. Well, the answer is simple also, that a tiger needs a huge and healthy forest to survive. That same forest is home to hundreds of other animals, birds, insects and plants. So when we protect the tiger's home, we end up protecting the homes of thousands of other species too. इसीलिए विशाल जो कहते हैं ना कि forest is something else. So forest cover है, उसको बचाना ज़्यादा ज़रूरी है. We can plant, of course, we should plant more trees. लेकिन अगर हम जो है एक तरफ अपने जो जंगल हैं, अगर उनको मिटाते जाएंगे और सोचेंगे उसके बदले हम 2-3 लाख पेड़ लगा दे, वो उसकी भरपाई कभी नहीं कर सकते। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कंजर्व द फॉरेस्ट।
1: वनों का संरक्षण बहुत जरूरी है और इस दिशा में भारत का सफर काफी शानदार रहा है। साल 2006 में बाघों की संख्या काफी कम थी, लेकिन लगातार संरक्षण प्रयासों की बदौलत 2022 की नवीनतम ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन में देश में 3,682 जंगली बाघ दर्ज किए गए हैं।
0: Well, that's more than double the scientifically assessed population in just over a decade. And of course, today's tiger conservation isn't done with notebooks alone. Technology has become one of the biggest allies. Camera traps silently capture wildlife movement day and night.
1: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बाघों की धारियों के अनूठे पैटर्न से उसकी पहचान करने में मदद करती है और सारा बाघों की जो धारियां होती हैं उसके पूरे शरीर पर, वो बहुत खूबसूरत लगती हैं, लगभग चेहरे की पहचान की तरह। बस फर्क इतना है कि हर बाघ की अपनी प्राकृतिक पंजों के निशान होते हैं। GPS आधारित निगरानी प्रणाली वन कर्मियों को घने जंगलों में अधिक प्रभावी ढंग से गश्त करने में भी सक्षम बनाती है।
0: Together, science and technology are making conservation smarter than ever before. And you have just mentioned that, of course, AI is a revolution in

0: almost every field. So I'm sure even in conservation efforts, it will play a very vital role. Protecting tigers isn't only about counting them. It's about protecting their homes. And that's where Project Tiger, launched in the year 1973, changed the game.
1: ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट था ये बाघों के संरक्षण की दिशा में, और आज इसी के चलते भारत में 18 राज्यों में फैले 58 टाइगर रिजर्व हैं जो लगभग 84,500 वर्ग किलोमीटर के इलाके में फैले हुए हैं। इन अभयारण्यों का प्रबंधन बहुत सावधानी से किया जाता है। इनमें वन्य जीवों के लिए सुरक्षित कोर एरिया और उनके आसपास बफर जोन होते हैं जहाँ संरक्षण और टिकाऊ आजीविका दोनों साथ साथ चलते हैं।
0: Well, wildlife corridors connect many of these forests, allowing tigers to move safely, find mates, and maintain healthy populations. India's success has also inspired the world. Today, countries collaborate with India to learn from its conservation experience.
1: भारत, नेपाल और भूटान जैसे पड़ोसी देशों के साथ मिलकर वन्य जीवों के साझा इलाकों की सुरक्षा करता है और वन्य जीव अपराधों से निपटने, वैज्ञानिक निगरानी को बेहतर बनाने और संरक्षण कार्यों को मजबूत करने के लिए कई अन्य देशों के साथ भी मिलकर काम कर रहा है।
0: The country also hosts the Global Tiger Forum, the world's only intergovernmental organization dedicated entirely to tiger conservation. And through the International Big Cat Alliance, India is helping protect not just tigers, but 7 iconic big cats across the globe.
1: देश के टाइगर कैपिटल नागपुर में आज इंटरनेशनल टाइगर डे के अवसर पर वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार 2026 समारोह आयोजित किया गया। सुनते हैं एक विशेष रिपोर्ट इस बारे में।
2: इंटरनेशनल टाइगर डे के अवसर पर नागपुर में एशियाटिक बिग कैट सोसाइटी का राष्ट्रीय पुरस्कार 2026 समारोह आयोजित किया गया। महाराष्ट्र वन विभाग के वन्य जीव प्रभाग और एशियाटिक बिग कैट सोसाइटी के संयुक्त तत्वावधान में यह कार्यक्रम IIM नागपुर के सभागार में संपन्न हुआ। समारोह में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाली 3 हस्तियों को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए। प्रत्येक पुरस्कार में 51,000 रुपए की सम्मान राशि और स्मृति चिन्ह दिया गया। महाराष्ट्र में वन्य जीव संरक्षण, संरक्षित क्षेत्र प्रतिबंधन, वन्य जीव अपराधों की जांच और जन सहभागिता आधारित संरक्षण कार्यों में 25 वर्षों से अधिक योगदान के लिए विशाल बंसोड़ को सम्मानित किया गया। चंद्रपुर जिले के सातारा ग्राम पंचायत के सरपंच गजानन गुल्दे को सतत ग्रामीण विकास, स्वच्छता और समाज कल्याण के क्षेत्र में किए गए कार्यों तथा सातारा गांव को आदर्श ग्राम के रूप में विकसित करने के लिए पुरस्कार दिया गया। वन्य जीव और वन्य संरक्षण के क्षेत्र में 14 वर्षों से अधिक समर्पित सेवा के लिए वन रक्षक श्रीमती VA डोंगरे को भी सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में वन्य जीव संरक्षण के प्रति जन जागरूकता बढ़ाने पर विशेष जोर दिया गया। परिक्रमा के लिए आकाशवाणी नागपुर से धनंजय वानखेड़े के साथ मैं हिमांगी कुलकर्णी।
0: Well, Vishal, that was all about International Tiger Day. And of course, the second topic is Guru Purnima. Vishal, there's a saying in India that a lamp can light thousands of other lamps without losing its own flame. That's exactly what a guru does to us. Every year on the full moon day of the month of Ashar, millions of people across India celebrate Guru Purnima, a day dedicated to expressing gratitude to those who illuminate our minds, shape our character, and guide us towards a better life.
1: भारतीय संस्कृति में गुरु का स्थान शिक्षक से भी कहीं ऊंचा बताया गया है। गुरु हमारे जीवन से अंधकार को दूर करते हैं, जादू से नहीं बल्कि ज्ञान, समझदारी, धैर्य और करुणा से। भारतीय परंपरा का एक बहुत ही सुंदर श्लोक है, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यह हमें याद दिलाता है कि गुरु की पूजा उनके अधिकार या पद के कारण नहीं बल्कि ज्ञान के उस अनमोल उपहार के लिए की जाती है जो वे हमें देते हैं।
0: That's right. I think आपने बहुत ही अच्छी तरह बताया कि गुरु का स्थान शिक्षक से कहीं ऊंचा होता है। So it's very important that you recognize the difference between a guru and a teacher. Maybe your teacher also becomes your guru, but maybe not all gurus are your teachers. You're like, you know, from who teach through books. So guru आपको जिंदगी के बारे में बताते हैं, और कुछ गुरु ऐसे होते हैं जिन्होंने शायद आपको कभी किसी कॉलेज में ना पढ़ाया हो, बट आपकी लिस्ट में, फहरिस्त में वो गुरु के स्थान पर सबसे ऊंचे होते हैं। So those are the people who थ्रू पर्ल्स ऑफ विजडम दे गाइड यू. उनके कई बार शब्द आपको जिंदगी के हर मोड़ पे याद आते हैं एंड दैट इज व्हाई इन आवर कल्चर वी सेलिब्रेट गुरु पूर्णिमा. इट्स ऑल्सो सेलिब्रेटेड एज द बर्थ एनिवर्सरी

0: the great sage Ved Vyas, one of India's greatest scholars. He compiled the Vedas, authored the epic Mahabharata, and preserved an enormous treasure of Indian knowledge for future generations. That is why this day is also known as Vyas Purnima.
1: हमारी सभ्यता हमेशा से ये मानती आई है कि ज्ञान ही सबसे बड़ा धन है। साम्राज्य बनते हैं और बिगड़ते हैं, पैसा आता है और जाता है, लेकिन ज्ञान हमेशा आपके साथ रहता है। ये एक ऐसी पूंजी है जो सदैव आपके साथ रहती है जब तक आप इस दुनिया में हैं, जीवित हैं।
0: That's right,
1: और हर सफल व्यक्ति के पीछे कोई अक्सर ऐसा व्यक्ति होता है जिसने दुनिया के मानने से पहले ही उनमें भरोसा किया हो, और शायद यही वो सबसे बड़ा तोहफा है जो एक गुरु आपको दे सकता है।

0: from across all the 8 northeastern states came together in the capital city of Meghalaya for the 2-day meeting and exhibition.
1: Mera naam Elina Dev Burma hai aur main Tripura se aayi hu aur hum webbing ka kaam karte hain jise hamare Tripura ka Rignai bolte hain jisko aur usme Rignai and Rikutu rehte hain set aur sath mein hum Risha bhi banate hain aur is platform mein hum matlab hame bulaya gaya hai ki hum apna Tripura ka traditional dress ko represent karne ke liye bulaya gaya hai to isliye hum thankful hai is platform ke liye.
0: Organized by the College of Community Science Tura under the Central Agricultural University Imphal, the exhibition was held on the indigenous and heritage products of the Northeast region. More than 100 artisans, buyers, investors, government agencies and entrepreneurship support organizations came together to strengthen market linkages for women-led enterprises.
2: Mera naam Nemi hai, main Manipur se aaya hai. Shillong mein hum log 2 din ke liye bear sale mein ke liye hum log aaya hai. Isme hum log participate kiya na, hum log ke liye bahut acha hota hai ki hum log ke liye aisa wala ek chance diya. Isliye ye department log thank you bol.
0: The exhibition showcased a wide range of indigenous and geographical indication products. There were also live craft demonstrations of mask making from Assam's Majuli and handcrafted bags made of a type of eco-friendly water reed called Kauna grass from Manipur.
3: Namaste, mera naam Bulbuli Hazarika, main Assam Majuli se hu aur 2024 se hum log ye mask making ka kaam kiya hai aur bahut acha laga ye kaam karke aur bahut sare log mujhe pehchanta hai iske liye.
0: It also had a diverse range of handloom, bamboo and cane handicrafts, herbal products as well as traditional food of the 8 northeast states. Sessions were also held on building a grassroots startup ecosystem for Viksit Bharat 2047. For Parikrama, Anumita from Akashvani Shillong.
4: और अब चलते हैं खेल के मैदान में और क्या हलचल है वहाँ की जानते हैं सबसे पहले सायरा बताइए.
5: Well, at the ongoing Commonwealth Games CWG 2026 in Glasgow, Gulveer Singh scripted history by becoming the first Indian athlete to win a medal in the men's 10,000 meter race event after claiming a silver. The reigning Asian champion clocked he finished behind Australia's Kay Robinson.
4: इसके अलावा हरजिंदर कौर ने महिलाओं की 69 किलोग्राम वेटलिफ्टिंग इवेंट में भारत के लिए एक और सिल्वर मेडल जीता. 29 साल की इस भारतीय वेटलिफ्टर ने कुल 227 किलोग्राम वजन उठाकर ग्लासगो में वेटलिफ्टिंग के 8 इवेंट्स में भारत के लिए 7वां मेडल पक्का किया. साथ ही ये हरजिंदर का लगातार दूसरा कॉमनवेल्थ गेम्स का मेडल था क्योंकि उन्होंने 2022 में बर्मिंघम में ब्रॉन्ज मेडल जीता था. इसके साथ ही ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के कुल पदकों की संख्या 12 हो गई है जिनमें 2 स्वर्ण 7 रजत और 3 कांस्य पदक शामिल हैं.
5: And now look at the news at some business news. Well, benchmark domestic equity indices ended over 1% higher today. Sensex surged 889 points to close at 77,655. Nifty gained 265 points to settle at 24,250. For more updates about market activities, tune in to Akashvani's bilingual program Market Mantra at 6:30 p.m. this evening.
4: और अब याद करते हैं उन महान विभूतियों को जिनका आज है जन्मदिन, जयंती या फिर पुण्यतिथि.
6: आज की कड़ी में हम शिक्षाविद और समाज सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर को याद कर रहे हैं. उनका निधन 29 जुलाई 1891 को हुआ था. वे बांग्ला गद्य साहित्य के जनक माने जाते हैं. ईश्वर चंद्र विधवा पुनर्विवाह के प्रमुख समर्थक थे. उन्हीं के कारण विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 अस्तित्व में आया.
7: ईश्वर चंद्र ने फोर्ट विलियम कॉलेज और संस्कृत कॉलेज में पढ़ाया और सन 1850 में उसके प्राचार्य नियुक्त हुए. प्राचार्य के रूप में ईश्वर चंद्र ने संस्कृत कॉलेज के कार्यों में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए. उन्होंने जाति की बाधाएं हटाई और वहां सभी के लिए पढ़ाई के द्वार खोल दिए. संस्कृत कॉलेज के आधुनिकीकरण और बालिकाओं के लिए विद्यालयों के अतिरिक्त शिक्षा में उनका सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान था.
6: इस बदलाव के लिए उन्होंने स्वयं ही पाठ्य पुस्तकें लिखी थी. 1851 में उनका लिखा हुआ वर्ण परिचय प्रकाशित हुआ. वर्ण परिचय से पहले आरंभिक शिक्षा के लिए ऐसी कोई मॉडल रीडर पुस्तक नहीं थी.
4: आज ही पुण्यतिथि है

0: मामा आसिफ अली, इनका नाम भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में विशेष रूप से लिया जाता है। इन्होंने भारत को आज़ादी दिलाने के लिए कई उल्लेखनीय कार्य किए थे। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाने वाली क्रांतिकारी जुझारू नेता अरुणा आसफ अली का नाम इतिहास में दर्ज है। अरुणा आसफ अली ने सन 1942 में अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया था, जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता।
1: Today we are also remembering another literature, right?
0: जी, और जब हम साहित्यकार की बात करते हैं तो आज के दिन जन्म हुआ था सिंगी रेड्डी नारायण रेड्डी जी। जाने माने साहित्यकार थे, तेलुगु भाषा के प्रख्यात कवि थे, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित तेलुगु भाषा के प्रख्यात कवि, अपनी पीढ़ी के सर्वाधिक जाने माने कवियों में से एक रहे हैं। इनकी रचनाओं को एक नई परंपरा की शुरुआत करने वाली रचनाओं के रूप में देखा जाता है। अब तक इनकी 40 से भी अधिक कृतियाँ प्रकाशित हो चुकी हैं, जिनमें कविता, गीत, संगीत, नाटक, नृत्य नाटक, निबंध, यात्रा संस्मरण शामिल हैं। और सी नारायण रेड्डी ने फिल्म जगत में भी काफ़ी नाम कमाया था और इनके लिखे गानों ने दक्षिण भारत की फिल्मों में खूब धूम मचाई। इन्होंने फिल्मों के लिए लगभग 3000 से ज़्यादा गाने लिखे थे। आज के दिन जन्म हुआ था बाबा साहेब मोरेश्वर पुरंदरे का, मराठी साहित्यकार, नाटककार। और बाबा साहेब पुरंदरे देश के लोकप्रिय इतिहासकार रहने के साथ ही थिएटर कलाकार भी रह चुके हैं। इन्हें जाड़ता राजा नाटक से शिवाजी को घर घर पहुँचाने का श्रेय जाता है।
1: That's right, and we're also remembering a very, very classic and evergreen actor of Hindi cinema. Yes, today is the death anniversary of Badruddin Jamaluddin Khan Qazi. और अगर आप सोच रहे हैं ये किसका नाम हमने लिया है, well, that is the real name of Johnny Walker. And now, of course, he doesn't need any introduction. He acted in around 300 films and best known for his humorous roles, notably being typecast as a hapless drunkard. और सबसे मजे की बात ये है कि उन्होंने ज़िंदगी में शराब की एक भी नहीं चखी थी
0: जी। और एक बात और सायरा, कि जो इन्होंने जो अपना जीवन शुरू किया, इससे पहले फिल्मों में आने से पहले एक बस कंडक्टर थे, और लेकिन इनका जो बात करने का तरीका था बहुत ही मजाकिया अंदाज में जो है यात्रियों से बात करते थे, और बलराज साहनी को इनका अंदाज बहुत पसंद आया और उसके बाद इन्होंने इनको गुरुदत्त से मिलाया और फिर संवेदना और हास्य के दो शिखर एक हो गए।

0: எஃப்எம் கோல்டு அலைவரிசையில் சில நொடிகளில் தொடர்வது டெல்லி அஞ்சல்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே ஜாகிருதி சர்மா. लोकसभा ने लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इस विधेयक से लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन किया गया है। विधेयक में 10 वर्ष तक के कारावास, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और अपराधियों की संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश को दैनिक सुनवाई के लिए विशेष फास्ट ट्रैक न्यायालय स्थापित करने का आदेश दिया गया है। अपराधों की जांच पुलिस थाने में सूचना दर्ज होने की तारीख से 2 महीने के भीतर पूरी

0: की जानी चाहिए। मुकदमे की सुनवाई आरोप पत्र दाखिल होने की तारीख से 3 महीने के भीतर पूरी होनी चाहिए। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा कि ये संशोधन कानून को और अधिक सख्त बनाने तथा त्वरित न्याय दिलाने के लिए किया गया है।
1: सरकार की प्रतिबद्धता का आप इसी बात से अनुमान लगा सकते हैं कि इसी विधेयक के लाने के साथ ही साथ हमारे लॉ मिनिस्टर की ओर से भी एक प्रस्ताव जारी कर दिया गया। स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट्स है, इनको स्थापित करने का भी क्रम प्रारंभ किया जाए। उसमें दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड में पहले ही इन्होंने गठित कर दिया है और आने वाले दिनों में बाकी स्थानों पर।
0: नया विधेयक छात्रों और युवाओं के कल्याण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। डॉक्टर सिंह ने कहा कि विभिन्न दलों द्वारा शासित राज्यों में पेपर लीक होने की घटनाएं हुई हैं। विपक्ष के आचरण पर डॉक्टर सिंह ने कहा कि जब एक महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा हो रही है तो विपक्ष सुझाव देने के बजाय राजनीति कर रहा है। उन्होंने विपक्ष के नेता राहुल गांधी के असंसदीय भाषा का इस्तेमाल करने की भी आलोचना करते हुए इसे अनुचित और दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उधर राज्यसभा ने राष्ट्रीय सम्मान की रक्षा के लिए राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक वंदे मातरम को राष्ट्रीय गान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करेगा। वंदे मातरम के अपमान के लिए अब 3 वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि विधेयक में संशोधन केवल एक विधायी परिवर्तन नहीं है। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम का विरोध तुष्टिकरण की राजनीति को दर्शाता है जो राष्ट्र के गौरव को ठेस पहुंचाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 अगस्त को नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान का शुभारंभ करेंगे। ये नशाखोरी के खिलाफ 100 सप्ताह का राष्ट्रव्यापी जनभागीदारी आंदोलन है। इस पहल का लक्ष्य जागरूकता, सामुदायिक सहभागिता और निरंतर जनभागीदारी को बढ़ावा देकर नशा मुक्त भारत के निर्माण के लिए युवाओं को सामूहिक राष्ट्रीय मिशन में एकजुट करना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में भारतीय पारंपरिक कला रूपों के कलाकारों से मुलाकात की और उनके कार्यों का अवलोकन किया। बनारस भित्तिचित्र, थंका, नायका, केरल भित्तिचित्र, बसोहली, सुरपुर और मैसूर जैसी कला शैलियों का प्रतिनिधित्व करने वाले 12 कलाकार कलाकार निवास कार्यक्रम के अंतर्गत राष्ट्रपति भवन में रह रहे हैं। कलाकार निवास कार्यक्रम भारत की कलात्मक परंपराओं की भावना का उत्सव है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले के एक निजी स्कूल में 5 वर्षीय बच्चे के साथ शिक्षक द्वारा कथित यातना और अमानवीय व्यवहार के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव और वाराणसी पुलिस आयुक्त को नोटिस जारी किया है। मीडिया रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लेते हुए NHRC ने 2 सप्ताह के भीतर इस मामले पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। बम्बई शेयर बाजार का सूचकांक आज 889 अंक बढ़कर 77,655 पर पहुंच गया। निफ्टी 265 अंक की तेजी के साथ 24,250 पर बंद हुआ। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में तजिंदर पाल सिंह तूर और समरदीप सिंह गिल ने शॉटपुट फाइनल में जगह बना ली है। अनिमेश कुजुर 200 मीटर दौड़ के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। आज रात मनप्रीत कौर महिला शॉटपुट फाइनल में खेलेंगी। श्री शंकर मुरली और लोकेश सत्यनाथन ऊंची कूद के फाइनल में और पारुल चौधरी 3000 मीटर स्टीपल चेज के फाइनल में चुनौती पेश करेंगी। पदक तालिका में भारत 2 स्वर्ण, 7 रजत और 3 कांस्य पदकों के साथ 9वें स्थान पर है। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में आज मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, दिल्ली, कोंकण, गोवा, केरल, माहे में कल तक तेज बारिश हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: நேரம் 6:05 ஆகாஷ்வாணி 100.1 FM கோல்ட் அலைவரிசையில் நிகழ்ச்சி நிரலை கேட்கும் முன்
3: இதை கேளுங்கள். உங்களுடைய வேலைகளுக்கு இடையில் இந்த முக்கியமான வேலையை மறந்துவிடாதீர்கள்.
4: 2025-26 நிதியாண்டிற்கான வரி செலுத்துபவர்களுக்கு வருமான வரி கணக்கை ITR 1 அல்லது ITR 2 தாக்கல் செய்ய வேண்டிய கடைசி தேதி July 31, 2026 ஆகும்.
3: வருமான வரி கணக்கை தாக்கல் செய்வதற்கு முன் உங்கள் AIS மற்றும் Form 26 AS ஐ கவனமாக சரிபார்த்து வெளிநாட்டு வருமானம் அல்லது வெளிநாட்டு சொத்துக்கள் குறித்த சரியான மற்றும் முழுமையான விவரங்களை வழங்கவும்.
4: வருமான வரி தாக்கல் படிவத்தில் சரியான மற்றும் துல்லியமான தகவல்களை வழங்குவது விரைவான டாக்ஸ் ரிட்டர்னுக்கு வழிவகுக்கும். துல்லியமான டாக்ஸ் ரிட்டர்ன் என்றால் விரைவான டாக்ஸ் ரிட்டர்ன்.
3: ஒவ்வொரு வரி செலுத்துவோரும் நாட்டை கட்டி எழுப்புபவரே இந்திய அரசின் வருமான வரித்துறை.
5: வீட்டு செலவு

0: कम होना और मानव वन्य जीव संघर्ष जैसी चुनौतियों ने इस शानदार जीव के सामने बड़ा खतरा खड़ा कर दिया था। लेकिन आज स्थिति बदल चुकी है। भारत अब दुनिया की लगभग 70% जंगली बाघ आबादी का घर है। ये उपलब्धि वर्षों की वैज्ञानिक सोच, मजबूत नीतियों, बेहतर प्रबंधन और लोगों की भागीदारी का परिणाम है। हर वर्ष 29 जुलाई को पूरी दुनिया में ग्लोबल टाइगर डे यानी अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य बाघों के संरक्षण, उनके प्राकृतिक आवास की सुरक्षा और लोगों में जागरूकता बढ़ाना है। भारत ने बाघ संरक्षण के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। आइए सुनते हैं ग्लोबल टाइगर डे के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने क्या कहा।
1: हम जब भी टाइगर रिजर्व्स की, फॉरेस्ट एरिया की, इकोलॉजी के संवर्धन की बात करते हैं तो ये केवल एंजाइटी के लिए नहीं है, ये केवल टूरिस्ट डेस्टिनेशन के लिए नहीं है, ये प्रकृति के साथ मनुष्य जीवन के रिश्तों को समझने के लिए भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्षों में भारत ने अनेक उपलब्धियां हासिल करी है। हमारी जो टाइगर पॉपुलेशन 2226 थी वो बढ़कर 3600 से ज्यादा हुई। 10 सालों में जो टाइगर रिजर्व्स की संख्या 2014 में 47 टाइगर रिजर्व्स होते थे उनकी संख्या बढ़कर भी 58 हुई है। देश में जो नेशनल पार्क्स थे 2014 में उनकी संख्या 103 थी, अब बढ़कर के 106 हो गई है। और सबसे अच्छी बात आज ये हुई है कि यहाँ पर हम लोगों ने जो अपने सारे टाइगर रिजर्व्स हैं वो लोगों की जानकारी में एक ही पोर्टल पे कैसे आए, एक ही वेबसाइट पर कैसे आए, ताकि जो प्रेशर केवल कुछ जगहों पे रहता है वो डिस्ट्रीब्यूट कैसे हो, ज्यादा अवेयरनेस कैसे हो, इसके लिए भी जो आज NTCA ने नए एक इंटीग्रेटेड पोर्टल की शुरुआत करी है उनको मैं बधाई देना चाहता हूँ।
0: आखिर कैसे भारत ने बाघ संरक्षण में ये सफलता हासिल की, कौन सी योजनाएं और तकनीकें इस अभियान को मजबूत बना रही हैं और कैसे भारत अब वैश्विक स्तर पर बाघ संरक्षण का नेतृत्व कर रहा है, आइए सुनते हैं।
2: भारत का बाघों से संबंध केवल वन्य जीव संरक्षण तक सीमित नहीं है बल्कि यह हमारी संस्कृति और प्राकृतिक विरासत से भी जुड़ा हुआ है। प्राचीन सिक्कों, राजसी मुहरों और मंदिरों की कलाकृतियों में बाघ को शक्ति और गौरव के प्रतीक के रूप में दर्शाया गया है। इसी विरासत को ध्यान में रखते हुए वर्ष 1972 में रॉयल बंगाल टाइगर को भारत का राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया। इसके बाद वर्ष 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई। आज प्रोजेक्ट टाइगर भारत की सबसे सफल वन्य जीव संरक्षण अभियानों में से एक माना जाता है। भारत की बाघ संरक्षण यात्रा की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है बाघों की संख्या में लगातार वृद्धि। ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन 2022 के अनुसार भारत में बाघों की संख्या बढ़कर 3682 हो गई है। यह सर्वेक्षण दुनिया के सबसे बड़े वन्य जीव आकलनों में से एक है। आज भारत में 58 टाइगर रिजर्व हैं, जो 18 राज्यों में फैले हुए हैं और लगभग 84,500 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को कवर करते हैं। इन प्रयासों के पीछे नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी यानी NTCA की महत्वपूर्ण भूमिका है, जो प्रोजेक्ट टाइगर के क्रियान्वयन, निगरानी और संरक्षण योजनाओं को दिशा देती है।
0: बाघों की संख्या बढ़ाना केवल जंगलों की सुरक्षा से संभव नहीं है, इसके लिए जरूरी है सटीक जानकारी, आधुनिक तकनीक और लगातार निगरानी। तो आइए जानते हैं कि विज्ञान और तकनीक ने भारत के बाघ संरक्षण अभियान को किस तरह नई ताकत दी है।
3: भारत ने बाघों की निगरानी के लिए आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल किया है, जिससे संरक्षण की पूरी प्रक्रिया अधिक वैज्ञानिक और प्रभावी बनी है। हर 4 साल में होने वाले ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन बाघों की संख्या, उनके आवास और जंगलों की स्थिति का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। इसमें कैमरा ट्रैप, डिजिटल तकनीक और वैज्ञानिक विश्लेषण का उपयोग किया जाता है। बाघ निगरानी के लिए भारत ने M-STRIPES यानी मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर्स इंटेंसिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस जैसे तकनीक विकसित की है। इसमें GPS, GPRS और रिमोट सेंसिंग जैसी तकनीकों का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित तकनीकों से कैमरा ट्रैप तस्वीरों का विश्लेषण भी किया जा रहा है। इसके लिए मैनेज

0: इन्वेस्टमेंट इफेक्टिवनेस इवैल्यूएशन यानी MEE किया जाता है। वर्ष 2022 तक 51 टाइगर रिजर्व का मूल्यांकन किया जा चुका है। इनमें 12 रिजर्व को एक्सीलेंट श्रेणी भी मिली है। इसलिए आज भारत का संरक्षण मॉडल केवल वन जीवों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें स्थानीय लोगों की आजीविका और भागीदारी को भी महत्व दिया जा रहा है।
1: भारत की बाघ संरक्षण यात्रा अब केवल देश तक सीमित नहीं है। आइए सुनते हैं, आज भारत अपने अनुभवों और तकनीकों को दुनिया के साथ साझा कर रहा है और वैश्विक स्तर पर संरक्षण प्रयासों का नेतृत्व कर रहा है।
2: भारत का वैश्विक नेतृत्व बाघ संरक्षण से बिग कैट संरक्षण तक। बाघ संरक्षण की भारत की यात्रा अब केवल अपने जंगलों तक सीमित नहीं है। भारत आज दुनिया के सामने एक ऐसा मॉडल प्रस्तुत कर रहा है जिसमें विज्ञान, तकनीक, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सामुदायिक भागीदारी को साथ लेकर वन्य जीव संरक्षण किया जा रहा है। भारत का मानना है कि वन्य जीव

0: भारत ने वैश्विक स्तर पर कई महत्वपूर्ण पहल की हैं। इनमें से एक प्रमुख पहल है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस यानी IBCA। वर्ष 2023 में शुरू की गई इस पहल का उद्देश्य दुनिया की 7 प्रमुख बड़ी बिल्ली प्रजातियों के संरक्षण के लिए देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना है। इन 7 प्रजातियों में शामिल हैं बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जैगुआर और प्यूमा। IBCA में 95 देशों, वैज्ञानिक संस्थानों और संरक्षण संगठनों की भागीदारी है। इसका मुख्यालय भारत में स्थापित किया गया है। ये पहल दिखाती है कि भारत अपने अनुभवों को केवल स्वयं तक सीमित नहीं रख रहा बल्कि वैश्विक वन्य जीव संरक्षण में भी सक्रिय भूमिका निभा रहा है। भारत ने नेपाल और भूटान के साथ सीमा पार जैव विविधता संरक्षण के क्षेत्र में सहयोग किया है। म्यांमार के साथ वन्य जीव तस्करी रोकने और संरक्षण के प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए काम किया जा रहा है। वहीं रूस के साथ कैमरा ट्रैप डेटा प्रबंधन और बाघ तथा तेंदुआ संरक्षण के क्षेत्र में सहयोग किया जा रहा है। इसके अलावा बांग्लादेश, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड और वियतनाम जैसे बाघ वाले देशों के साथ भारत ज्ञान तथा अनुभव साझा कर रहा है। बाघ संरक्षण के लिए एक और महत्वपूर्ण संस्था है ग्लोबल टाइगर फोरम यानी GTF। ये दुनिया का एकमात्र अंतर सरकारी संगठन है जो विशेष रूप से बाघ संरक्षण के लिए समर्पित है। ऐसा ही एक वैश्विक प्रमाणन है कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड्स यानी CATS। ये व्यवस्था सुनिश्चित करती है कि टाइगर रिजर्व में संरक्षण के लिए तय अंतर्राष्ट्रीय मानकों का पालन किया जा रहा है।
1: बाघ संरक्षण की ये कहानी हमें बताती है कि किसी भी प्रजाति को बचाने के लिए केवल कानून बनाना पर्याप्त नहीं होता। इसके लिए जरूरी है मजबूत संस्थाएं, वैज्ञानिक सोच, आधुनिक तकनीक और समाज की भागीदारी। आने वाले वर्षों में भारत का लक्ष्य केवल बाघों की संख्या बढ़ाना नहीं बल्कि ऐसे सुरक्षित और जुड़े हुए वन क्षेत्र तैयार करना है जहाँ वन्य जीव और मानव दोनों साथ रह सके। बाघों को बचाना वास्तव में उन जंगलों को बचाना है जो हमें स्वच्छ हवा, पानी और जीवन का आधार प्रदान करते हैं। इसी उम्मीद के साथ कि आने वाली पीढ़ियां भी भारत के जंगलों में बाघों की दहाड़ सुन सकेंगी, आज के विश्लेषण में बस इतना ही। इस कार्यक्रम को तैयार किया है हमारी सहयोगी श्रेया पाठक ने, तकनीकी सहयोग दिया है अरुणदीप सिंह ने। नमस्कार।

0: स्थल कह सकते हैं या वॉलेटिलिटी जो थोड़ा वॉलेटाइल है, वो जो अमेरिका और ईरान का जो युद्ध है, तो वो अनिश्चितता अभी भी कायम है। लेकिन साथ साथ उस अनिश्चितता के चलते या उससे पहले जो ट्रंप साहब के टैरिफ आए, उसके बाद जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो भारतीय बाजारों से निकल रहे थे, वो हमने देखा है हाल के दिनों में, खासकर पिछले एक महीने का डेटा है, तो उससे ये पता लग रहा है कि अब FPIs जो हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, वो वापस भारत की और जो भारतीय बाजारों में वापस आ रहे हैं। साथ साथ जो आपने रिपोर्ट में भी बात कही, जो आज की बढ़त का एक और जो आधार जो बना वो था जो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के जो जो डेटा आया वो बहुत पॉजिटिव था, काफ़ी रोबस्ट डेटा था, और वो ये इस बात को भी की तस्दीक करता है कि भारत के जो मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स हैं, जो अर्थव्यवस्था है, वो काफ़ी स्टेबल है। और साथ साथ एक और जो आज जो देख आज की बाजार में जो बाजार के उस रुख में जो दिखा पॉजिटिव हमने देखा, जो ट्रेडिशनल आईटी कंपनीज हैं उसकी तरफ भी निवेशकों ने दोबारा से रुख किया है, तो वो भी एक कारण बना। और साथ साथ जो एक ज़्यादातर एक बाज़ारों में जो यूएस में जो फेड की जो मीटिंग आज हो रही है और जो इंटरेस्ट रेट्स पे उनका जो फैसला आना है, उस पर एक ये ज़्यादातर एक इस तरह का पॉजिटिव व्यू ये है कि शायद वो इंटरेस्ट रेट्स में आज बदलाव ना करें, तो वो भी कहीं ना कहीं हमारी बाज़ारों के लिए पॉजिटिव खबर के तरह रुख बन के आया।
1: Also, before we move on and ask you, you know, in-depth questions about what happened in the market, let's have a look at what the sectoral indices did on the Bombay Stock Exchange. In the sectoral indices on the BSE, 20 out of the 27 sectors ended in the positive zone. Among the top gainers, information technology rose by 2.4%, metal advanced almost 2.3%, and focused IT gained 1.9%. In contrast, mid-small private banks' quality tilt fell over 0.6%. Services

0: मुझे लगता है ये बड़े दो तीन फायदे हैं।
1: लेकिन क्या प्रिंटिंग की कॉस्ट जो कागज के नोटों के मुकाबले ज्यादा आएगी?
0: नहीं अमरीश, प्रिंटिंग की कॉस्ट भी ज्यादा नहीं आएगी अगर काउंट, क्योंकि आप एक बात और समझें कि पहले हम लोग, अभी तो सरकार ने इस चीज पे भी काफी हद तक जो है नकेल कस दिया, नहीं तो कागज के नोटों की काउंटरफीटिंग जो नकली नोट बन रहे थे, तो वो शायद पॉलीमर नोट में हम इस तरह के सिक्योरिटी फीचर्स भी तो डाल पाएंगे
1: जी, जी।
0: तो और अभी तक ऐसा कोई एविडेंस भी नहीं है कि उसकी जो है कॉस्ट ज्यादा होगी, और क्योंकि उनकी शेल्फ लाइफ ज्यादा है तो वो अगर थोड़ा बहुत अगर कॉस्ट ज्यादा भी हो रही है तो वो भी जस्टिफाई हो जाएगी
1: जी। तो क्या सरकार का ऐसे भी आगे कोई इरादा हो सकता है कि बड़े नोट भी इस मतलब पॉलीमर में लाए जाए?
0: नहीं अमरीश, ये तो अभी ना तो रिजर्व बैंक की तरफ से ऐसा कोई स्पष्ट अभी तक कोई इंडिकेशन नहीं दिया गया है। मुझे लगता है अभी जो आपने बात बोली भी रिपोर्ट में कि फील्ड ट्रायल, तो अभी शायद इसके जो भी जिस तरह का भी जो इसके रिजल्ट्स आएंगे उसको स्टडी करने के बाद पे ही आगे जो है किस तरह से इसको और बढ़ाना है, क्या करना है, मुझे लगता है उसके बाद ही उस पर कोई फैसला होगा।
2: Siddharth, since we're talking about the currency note and its features, the rupee actually appreciated by 21 paise against the US dollar, and the RBI has even commented that the rupee is undervalued against the US dollar. There was an FCNR heavy deposit to the tune of $30+ billion because of the high rate of interest that the government provides on any deposit of foreign exchange under the FCNRB scheme. So what's your view on that?
0: See, basically, rupee appreciated. It's I think it's a positive also because the oil prices fell sharply because they touched almost, they'd gone beyond $100 per barrel. I think they've retracted to sub 90 level. So I think that was a big reason. And yes, government has always, the central bank as well as the government of the Indian government has been maintaining that we've always maintained this, that rupee is undervalued. Though we also at the same time, we say that we do not track a level of the rupee. The even the central bank says that it only looks at the volatility, it only controls orderly movement of the currency. So, and I think as the as far as the rupee level of rupee is concerned, I think it is oil price of crude oil which would kind of have a important impact on that
1: ji,
0: which would decide the.
1: और चलते हैं कुछ पहली तिमाही के जो कॉरपोरेट नतीजे आए हैं उनके बारे में जान लेते हैं। एशियन पेंट्स ने ऑपरेशन से होने वाली कंपनी का सकल राजस्व पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 18% बढ़कर 10,542 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। कंपनी का सकल कुल लाभ वार्षिक आधार पर लगभग 40% बढ़कर 1,539 करोड़ रुपए पर जा पहुंचा।
2: In more earnings results, Adani Ports and Special Economic Zone Limited today reported its financial results for the first quarter of the current fiscal year. The company's consolidated revenue from operations rose 18.6% year-on-year to 10,821 crore rupees. The firm's consolidated net profit increased by 9.2% to 3,620 crore rupees on an annual basis. Let's have a look at the Asian and the European markets.
1: जी, और एशिया के बाजारों का हाल जानते हैं। अधिकांश शेयर बाजारों में आज मिला जुला रुख रहा। दक्षिण कोरिया का कोस्पी निवेशकों द्वारा सेमीकंडक्टर शेयरों की लगातार बिकवाली के चलते 6% तक गिर गया। कोरिया के एक्सचेंज में आज लगातार दूसरे दिन सर्किट ब्रेकर लगाया गया और कारोबार की शुरुआत में ही 20 मिनट तक ट्रेडिंग रोक दी गई। कोरियाई बाजार में अभी तक आठ बार सर्किट ब्रेकर लगाया जा चुका है। ताइवान का ताइएक्स लगभग 3.8% और जापान का निकेई 1.5% तक गिर गया। दूसरी ओर हांगकांग का हैंगसेंग इंडेक्स लगभग 2% तक बढ़ा। सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स में बढ़त 1.7% से अधिक और चीन के शंघाई कंपोजिट सूचकांक में बढ़त 0.4% की रही। उधर प्रमुख यूरोपीय शेयर बाजारों में भी मिला जुला रुख दिखाई दिया। अंतिम समाचार मिलने तक लंदन के फुटसी और जर्मनी के डैक्स में 0.3% की तेजी, जबकि फ्रांस के कैक में लगभग 0.5% की गिरावट चल रही थी। सिद्धार्थ जी, अगर हम एशिया के बाजारों की अगर हम बात करें, खासतौर से दक्षिण कोरिया की, तो लगातार जिस तरह से सर्किट ब्रेकर लगाया गया और पूरे महीने इस तरह से चल रहा है, और खासतौर से जो सेमीकंडक्टर के शेयरों की बिकवाली है, आप क्या कहेंगे इस बारे में?
0: नहीं अमरीश, मुझे लगता है कि

0: जो अभी हमने पहले भी बोला, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या सेमीकंडक्टर से जुड़े जितनी भी कंपनियां हैं उनकी पिछले कुछ दिनों में काफ़ी जो है पिटाई हुई है, और शायद निवेशकों के मन में ये एक ऐसी बात है कि शायद जितना बड़े पैमाने पे जो इन्वेस्टमेंट इन कंपनियों में किया जा रहा है, क्या वो जस्टिफाई करेगा रिटर्न्स को इन कंपनियों द्वारा। हालांकि जो एक बड़ी कंपनी, जो ऑलमोस्ट दो कंपनियां हैं जो कॉस्पी या साउथ कोरिया का जो इंडेक्स है उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑलमोस्ट 50% है, अगर उनको आप देखेंगे उसके उसमें से एक का रिजल्ट बहुत अच्छा है, उसके बावजूद उस कंपनी के शेयर्स तकरीबन 10% तक जो है आज गिरे हैं। तो इसमें तरह तरह की बात की जा रही है, कहीं ना कहीं ये एक बात तो ये है कि वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा है, क्या ये इन्वेस्टमेंट जिस पैमाने पर वो कुछ एक ये भी फीलिंग है कि जो है कुछ लोग प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। तीसरा एक फैक्टर चाइना का भी आ रहा है उसमें, कि क्या चाइना के जो AI मॉडल्स हैं या जो उनके हार्डवेयर्स हैं, क्या वो आने वाले टाइम में जो अभी जो आगे जो इन कंपनियों के प्रोडक्ट्स हैं तो वो क्या उनसे बेहतर होंगे। तो इन सब चीज़ों की वजह से मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं एक निवेशकों में
1: जी,
0: एक
1: लेकिन लेकिन जैसे आपने चाइना की बात की, तो चाइना हो गया, ताइवान हो गया, या और भी देश जो सेमीकंडक्टर के मार्केट में है, बनाते हैं और बेचते हैं। तो अभी जिस तरह से आपने भी कहा कि AI की का जिस तरह से एक्सपेंशन है, तो अभी ज़रूरत तो लगातार सेमीकंडक्टर की है और बनी रहेगी।
0: नहीं वो है, और डिमांड भी है। अभी जो उन्होंने उनको जो ऑर्डर्स मिले हैं अमेरिकी कंपनियों के से इन खासकर इन दो चिप मेकर्स को, वो भी बहुत बड़ा ऑर्डर उनको मिला। उसके बावजूद कहीं ना कहीं लोगों में एक मन में ये बात है, तो इसकी वजह से खासकर अभी जो हम देख रहे हैं हाल के दिनों में जो ये शेयर्स इन इन कंपनीज़ के गिर रहे हैं, और ये अमेरिकी बाज़ार में भी ये अनिश्चितता दिख रही है। खासकर आज दो बड़ी कंपनियां जो अमेरिका में हैं उनके भी रिजल्ट्स आने हैं, और ऐसा माना जा रहा है कि रिजल्ट्स उनके भी अच्छे होंगे, लेकिन उसके बावजूद कहीं ना कहीं लोग जो है जो AI बेस्ड IT कंपनी से कहीं ना कहीं ऐसी नए क्षेत्रों, मतलब ऐसी दूसरी कंपनियां देख रहे हैं जहां ग्रोथ के ज़्यादा अवसर हैं, साथ साथ वैल्यूएशंस भी अट्रैक्टिव हैं।
2: प्लस शॉर्टिंग इज ऑल्सो अ टेक्निक टू ब्रिंग डाउन द वैल्यूएशन एंड बाय इट एट लोअर लेवल्स।
0: आई थिंक वॉट यू सेड अर्जुन, दैट ऑल्सो इज वन ऑफ द रीजन विच इज बींग साइटेड, बट वी डोंट नो बिकॉज देर आर सेवरल थिंग्स हैपनिंग साइमल्टेनियसली।
2: Let's have a look at the US markets now. Major US stock market indices displayed a mixed note yesterday ahead of key quarterly earnings reports and the US Fed Reserve policy decision. The Dow Jones Industrial Average rose for a third consecutive session, ending 1% higher. The rally in the Dow is supported by strong corporate earnings and a decline in oil prices. Meanwhile, the S&P 500 posted a modest gain of 0.2%. In contrast, the Nasdaq Composite Index extended its losing streak, settling over 0.2% down amid a sell-off in chip stocks. So we're talking about the Asian stock market now. The U.S. stock market, Nasdaq, is seeing a sell-off, only 0.2%. There seems to be a recovery there, but clearly there seems to be overvaluation, and because of artificial intelligence and the circular economy, which has been cited by many, and the raising of capital by pledging hardware, these kind of chips with banks in order to raise capital, what does it tell about liquidity and its future?
0: नो, आई थिंक लिक्विडिटी इज़ नॉट एन इशू, आई थिंक इशू इज़ दी वैल्यूएशन, बेसिक इज़ वैल्यूएशन, एंड डू दीज काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट्स जस्टिफाई दी फ्यूचर रियलाइजेशन और दी रिटर्न टू दी इन्वेस्टर। सो आई थिंक दैट इज़ दी बेसिक क्वेश्चन, एंड दी अदर क्वेश्चन विच इज़ करेंटली इम्पैक्टिंग दी US मार्केट्स इज ऑब्वियसली दी इंटरेस्ट रेट डिसीजन ऑफ दी फेड। सो आई थिंक दी मार्केट्स आर ऑल्सो लुकिंग एट दैट, बट आई थिंक देर इज़ अ सेंस ऑफ पॉजिटिवनेस इन दी US मार्केट बिकॉज दे एक्सपेक्ट द फेड टू होल्ड द रेट्स, एंड सिंस द न्यू फेड चेयरमैन मिस्टर केविन वॉश हैज टेकन, ही इज ऑल्सो एवर्स टू गिविंग एनी फ्यूचर गाइडेंस। सेम थिंग वी सॉ इन द यूरोपियन द डिसीजन ऑफ द यूरोपियन सेंट्रल बैंक लास्ट वीक। सो एंड दैट इज वाई ऑल्सो आई सी बिकॉज ऑफ दिस पॉजिटिव व्यू इन द अमंग द इन्वेस्टर्स दैट US विल होल्ड रेट्स, आई थिंक वी सी अ साइन ऑफ पॉजिटिव सेंस ऑफ पॉजिटिवनेस इवन इन द यूरोपियन मार्केट्स।
2: Let's now move on to the crude oil market. Global crude oil prices jumped more than 4% today amid renewed tensions in West Asia. Brent crude was trading over 4.8% up at $88.16 per barrel in intraday trade. West Texas Intermediate crude was trading 4.4% up at $82.76 per barrel when reports last came in. Meanwhile, India strongly condemned the recent attacks on several maritime vessels in the Strait of Hormuz. Permanent representative of India to the United Nations.

0: लोकसभा ने लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इस विधेयक से लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन किया गया है। विधेयक में 10 वर्ष तक के कारावास, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और अपराधियों की संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश को दैनिक सुनवाई के लिए विशेष फास्ट ट्रैक न्यायालय स्थापित करने का आदेश दिया गया है। अपराधों की जांच पुलिस थाने में सूचना दर्ज होने की तारीख से 2 महीने के भीतर पूरी की जानी चाहिए। मुकदमे की सुनवाई आरोप पत्र दाखिल होने की तारीख से 3 महीने के भीतर पूरी होनी चाहिए। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि ये संशोधन कानून को और अधिक सख्त बनाने तथा त्वरित न्याय दिलाने के लिए किया गया है।
1: सरकार की प्रतिबद्धता लगा सकते हैं कि इसी विधेयक के लाने के साथ ही साथ हमारे लॉ मिनिस्टर्स की ओर से भी एक प्रस्ताव जारी कर दिया गया। स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट्स है, इनको स्थापित करने का भी क्रम प्रारंभ किया जाए। उसमें दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड में पहले ही इन्होंने गठित कर दिया है और आने वाले दिनों में बाकी स्थानों पर।
0: राज्यसभा ने राष्ट्रीय सम्मान की रक्षा के लिए राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक वंदे मातरम को राष्ट्रीय गान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करेगा। वंदे मातरम के अपमान के लिए अब 3 वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि वंदे मातरम का जानबूझकर अपमान करना वर्तमान कानून के अंतर्गत दंडनीय होगा। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम का विरोध तुष्टिकरण की

नीति को दर्शाता है जो राष्ट्र के गौरव को ठेस पहुंचाता है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि रेलवे में सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है और पिछले कुछ वर्षों में उठाए गए विभिन्न सुरक्षा उपायों के कारण दुर्घटनाओं की संख्या में भारी कमी आई है। लोकसभा में आज लिखित उत्तर में श्री वैष्णव ने कहा कि व्यापक और विस्तृत परीक्षणों के बाद कवच के चौथे संस्करण को 20 जुलाई तक दिल्ली मुंबई और दिल्ली हावड़ा के व्यस्ततम मार्गों पर 2500 किलोमीटर से अधिक मार्ग पर सफलतापूर्वक चालू कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 अगस्त को नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान का शुभारंभ करेंगे। ये नशाखोरी के खिलाफ 100 सप्ताह का राष्ट्रव्यापी जन भागीदारी आंदोलन है। इस पहल का लक्ष्य जागरूकता, सामुदायिक सहभागिता और निरंतर जन भागीदारी को बढ़ावा देकर नशा मुक्त भारत के निर्माण के लिए युवाओं को सामूहिक राष्ट्रीय मिशन में एकजुट करना है। दिल्ली पुलिस ने 20 जुलाई के नीट पेपर लीक के विरोध में प्रदर्शन के दौरान एक प्रदर्शनकारी को गोली लगने की अफवाहों का खंडन किया है। ये अफवाह मेडिको लीगल सर्टिफिकेट के निष्कर्षों से मेल नहीं खाती। पुलिस ने कहा कि सर्टिफिकेट में घाव को हल्की चोट बताया गया है। डॉक्टर के अनुसार गोली लगने का कोई सबूत नहीं है। पुलिस ने लोगों को ऐसी अफवाह फैलाने से पहले प्रामाणिक स्रोतों से जानकारी की पुष्टि करने की सलाह दी है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले के एक निजी स्कूल में 5 वर्षीय बच्चे के साथ शिक्षक द्वारा कथित यातना और अमानवीय व्यवहार के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव और वाराणसी पुलिस आयुक्त को नोटिस जारी किया है। मीडिया रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए आयोग ने 2 सप्ताह के भीतर इस मामले पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। सरकार ने खराब वायु गुणवत्ता की समस्या से निपटने के लिए परिवर्तन नामक एक वाहन बेड़ा नवीनीकरण पहल को मंजूरी दी है। परिवर्तन परिवहन वायु प्रदूषण और उत्सर्जन को कम करने के लिए वाहन परिसंपत्तियों के त्वरित नवीनीकरण और प्रोत्साहन का कार्यक्रम है। इस योजना का उद्देश्य राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में पुराने और अधिक उत्सर्जन वाले ट्रकों और बसों को स्वच्छ भारत स्टेज BS6 मानकों के अनुरूप और इलेक्ट्रिक वाहनों में बदलना है। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में महिला मुक्केबाजी में अरुंधति चौधरी ने 70 किलोग्राम भार वर्ग और साक्षी चौधरी ने 51 किलोग्राम भार वर्ग के सेमीफाइनल में पहुंचकर भारत के लिए पदक पक्का कर लिया है। पुरुष मुक्केबाजी में सचिन सिवाच ने 60 किलोग्राम भार वर्ग के सेमीफाइनल में जगह बनाई है। वहीं एथलेटिक्स स्पर्धा में तजिंदर पाल सिंह तूर और समरदीप सिंह गिल ने पुरुष शॉर्टपुट फाइनल में प्रवेश कर लिया है। पदक तालिका में भारत 2 स्वर्ण, 7 रजत और 3 कांस्य पदकों के साथ 9वें स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: எஃப்எம் கோல்டு அலைவரிசையில் சில நொடிகளில் தொடர்வது டெல்லி அஞ்சல்.
1: ये आकाशवाणी है। अब आप जागृति शर्मा से संसद में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा सुनिए। पहले लोकसभा। लेखक हैं पीटीआई भाषा के दीपक रंजन। लोकसभा ने आज लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 को मंजूरी दे दी। नीट प्रश्न पत्र लीक की पृष्ठभूमि में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 में सख्त प्रावधान शामिल करने के लिए लाए गए इस संशोधन विधेयक पर हुई चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की कुछ टिप्पणियों को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक हुई। इस कारण सदन की कार्यवाही पहले एक बार करीब 40 मिनट के लिए अपराहन 2:30 बजे तक और फिर 3 बजे तक स्थगित कर दी गई। हंगामे के बीच ही प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब दिया और उनके जवाब के बाद सदन ने ध्वनि मत से विधेयक को मंजूरी प्रदान कर दी। विधेयक पारित होने के बाद कांग्रेस सांसदों की नारेबाजी के बीच ही अध्यक्ष ओम बिरला ने कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी। चर्चा का जवाब देते हुए जितेंद्र सिंह ने कहा कि नीट प्रश्न पत्र लीक के मामले में सरकार ने फौरन कार्रवाई की और 12 जुलाई को जांच सीबीआई को सौंप दी गई। उन्होंने कहा कि कल इस मामले में आरोप पत्र दायर कर दिया गया है और आज से सुनवाई शुरू हो गई है। श्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि नए संशोधन विधेयक के प्रभाव में आने के बाद फास्ट ट्रैक अदालत में सुनवाई के साथ इस मामले में 5 महीने में फैसला आ जाएगा। श्री सिंह ने कहा कि प्रश्न पत्र लीक के विरुद्ध कड़े प्रावधान के साथ मूल कानून 2024 में लागू किया गया था और आज प्रश्न पत्र लीक संबंधी खामियां सामने आने के बाद सरकार ने माना कि कानून को और कड़ा बनाने की आवश्यकता है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने चर्चा के दौरान कहा कि दिल्ली में मासूम बच्चों पर जुल्म सितम ढाया गया, जबकि सरकार ने सर्वोच्च संयम के साथ कार्रवाई की और सुनिश्चित किया कि कोई भी हताहत नहीं हो। श्री सिंह ने कहा कि कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने देश में पिछले कुछ साल में 152 बार प्रश्न पत्र लीक होने और इसमें 750 करोड़ बच्चों के प्रभावित होने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि पता नहीं प्रियंका गांधी ये आंकड़े कहां से लेकर आए हैं। उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी ने 2024 का कानून लागू होने के बाद कोई कार्रवाई नहीं होने की बात कही, जबकि ऐसे मामलों में 52 प्राथमिकियां दर्ज हो चुकी हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शिक्षा व्यवस्था में सुधार की प्रतिबद्धता के अनुरूप सरकार 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लेकर आई, जो कांग्रेस का अधूरा काम था। लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 के प्रावधानों के अनुसार परीक्षाओं में प्रश्न पत्र लीक करने या

उपयुक्त साधनों का इस्तेमाल करने वाले व्यक्तियों को कम से कम 5 साल और अधिकतम 10 साल तक के कारावास तथा 50 लाख रुपए तक के जुर्माने की सजा हो सकती है। इसी तरह संगठित अपराधों के लिए कम से कम 7 साल के कारावास और 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रस्ताव है। प्रस्तावित संशोधनों के तहत सभी जांच 2 महीने के भीतर पूरी करनी होगी। विधेयक में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को त्वरित अदालतें स्थापित करने का निर्देश देने का भी प्रस्ताव है। ये अदालतें आरोप पत्र दाखिल किए जाने के 3 महीने के भीतर मुकदमे की कार्यवाही पूरी करेंगी। इससे पहले सदन में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक पर चर्चा में हिस्सा लेते हुए लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने नीट प्रश्न पत्र लीक के खिलाफ छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कार्रवाई को लेकर बुधवार को लोकसभा में गृहमंत्री अमित शाह पर गंभीर आरोप लगाए। इसका सत्ता पक्ष ने तीखा विरोध किया और उनसे माफी की मांग की। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि या तो नेता प्रतिपक्ष बताएं कि किस आधार पर उन्होंने देश के एक जिम्मेदार व्यक्ति पर गंभीर आरोप लगाया है या फिर वे माफी मांगें। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष बिना किसी तथ्य जांच और साक्ष्य के किसी के ऊपर आरोप नहीं लगा सकते। श्री राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि देश की शिक्षा व्यवस्था की आत्मा पर भारतीय जनता पार्टी के वैचारिक संगठन ने कब्जा कर लिया है और पूर्व शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान तो सिर्फ एक प्रतीक मात्र थे। उन्होंने छात्रों के विरोध प्रदर्शन का उल्लेख करते हुए ये भी कहा कि प्रदर्शनकारी बच्चों के माता पिता में साहस नहीं है कि वे भाजपा और उसके वैचारिक संगठन का मुकाबला करें, लेकिन ये बच्चे सामने खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि छात्रों ने डर को बाहर निकालकर चुनौती दी और खुलकर सवाल किया। उन्होंने सदन में गृहमंत्री की गैर मौजूदगी को लेकर दावा किया कि उनमें हिम्मत नहीं है कि वे सदन में आ सकें। नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया कि गृहमंत्री डरे हुए हैं। इसके बाद उन्होंने छात्रों पर बल प्रयोग का उल्लेख करते हुए गृहमंत्री पर गंभीर आरोप लगाए। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष ने गंभीर आरोप लगाए हैं तो सरकार को बताना चाहिए कि छात्रों पर बल प्रयोग का आदेश किसने दिया था। सत्ता पक्ष के सदस्यों ने राहुल गांधी माफी मांगो और कांग्रेस के सदस्यों ने एलओपी को बोलने दो और गृहमंत्री जवाब दो के नारे लगाए। सदन में काफी देर तक गतिरोध की स्थिति बनी रही। श्री राहुल गांधी ने कहा कि सड़कों पर इस देश के भविष्य ने जो किया वो कोई गुस्सा हिंसा और नफरत नहीं थी, बल्कि ये युवाओं की अभिव्यक्ति थी तथा सत्तारूढ़ दल समेत सभी दलों को इसका सम्मान करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर भाजपा के मित्र अपने बच्चों से भी इसके बारे में पूछेंगे तो आंदोलनकारी बच्चों के साथ उनकी भी सहमति ही पाएंगे। उन्होंने कहा कि लोग एक परीक्षा पर जितना पैसा खर्च कर रहे हैं वो सरकार के शिक्षा बजट से ज्यादा है। सत्ता पक्ष के टोका टोकी के चलते राहुल गांधी ने बोलने से इनकार कर दिया और अपनी सीट पर बैठ गए। इसके बाद श्री रिजिजू ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष ने एक असंसदीय शब्द का इस्तेमाल किया जिस पर आपत्ति जताई गई है। उन्होंने कहा कि हम उन्हें सुनने को तैयार हैं और वे अपनी बात रखें। उन्होंने कहा कि आप भावुक चेहरा दिखाकर सदन को गुमराह नहीं कर सकते। श्री बिरला ने कहा कि सदन में अच्छी व्यवस्थाएं रही हैं और अच्छी मर्यादाएं रही हैं, मर्यादा बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। उन्होंने कहा कि कोई मर्यादा और तर्क से बोलता है तो देश सुनता है और सम्मान भी करता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी श्री राहुल गांधी से भाषण जारी रखने की अपील की और सत्ता पक्ष के सदस्यों से उनके भाषण के बीच में टीका टिप्पणी नहीं करने को कहा। इसके बाद नेता प्रतिपक्ष ने भाषण जारी रखा। हालांकि दोनों पक्षों में नोकझोंक की स्थिति बनी रही और कार्यवाही 2:30 बजे तक स्थगित कर दी गई। सरकार ने जन्म और मृत्यु के पंजीकरण संबंधी कानून में संशोधन करने के प्रावधान वाला विधेयक भी आज सदन में पेश किया। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने सदन में विपक्ष के हंगामे के बीच जन्म और मृत्यु का पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। संसदीय प्रक्रिया के तहत लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विधेयक को पेश किए जाने का विरोध करने के लिए विपक्ष के कुछ सदस्यों के नाम पुकारे। हालांकि कोई विपक्षी सदस्य नहीं बोला और इसके बाद श्री नित्यानंद राय ने विधेयक पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969-2023 में संशोधित की धारा 13(3) में और संशोधन करना है ताकि विलंब से होने वाले पंजीकरण के प्रावधानों को

और अधिक कड़ा बनाया जा सके। मौजूदा प्रावधानों के तहत यदि जन्म या मृत्यु का पंजीकरण एक वर्ष से अधिक की देरी से कराया जाता है तो इसके लिए जिला मजिस्ट्रेट, डीएम, उपमंडल मजिस्ट्रेट, एसडीएम अथवा किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट के आदेश की आवश्यकता होती है। विधेयक में देरी की अवधि के आधार पर दो स्तरीय मंजूरी व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। अब सुनिए राज्यसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखिका है पीटीआई भाषा की मनीषा श्रीवास्तव। राज्यसभा ने आज उस विधेयक को पारित कर दिया जिसके प्रावधानों के तहत राष्ट्रगीत वंदे मातरम के गायन के दौरान किसी भी तरह का व्यवधान या उसका अपमान आपराधिक कृत्य माना जाएगा और इसके लिए 3 वर्ष तक की सजा हो सकती है। उच्च सदन ने राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 को संक्षिप्त चर्चा के बाद ध्वनिमत से पारित कर दिया। विधेयक पारित किए जाने के समय कांग्रेस सहित विपक्ष के सदस्य सदन में मौजूद नहीं थे क्योंकि वे गृहमंत्री अमित शाह की गैर मौजूदगी सहित विभिन्न मुद्दों पर विरोध जताते हुए सदन से वॉकआउट कर गए थे। हालांकि आम आदमी पार्टी, बीजू जनता दल, भारत राष्ट्र समिति और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सदस्यों ने चर्चा में हिस्सा लिया। विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि ये विधेयक देश के लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए लाया गया है। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम देश के स्वतंत्रता संग्राम में देशवासियों का प्रिय नारा था। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने अपने तुष्टीकरण की नीति के कारण वंदे मातरम को आजादी के बाद वो सम्मान नहीं प्राप्त होने दिया जो उसे मिलना चाहिए था। उन्होंने कहा कि इसी कारण वंदे मातरम के केवल 2 अंतरों को ही सरकार ने स्वीकार किया और इसके 2 ही अंतरे सरकारी कार्यक्रमों और आयोजनों में गाए बजाए जाते थे। श्री राय ने कहा कि आजादी मिलने के बाद पहले दिन प्रथम गृहमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के निर्देश पर पंडित ओंकार नाथ ठाकुर ने आकाशवाणी पर पूरा वंदे मातरम गाया था। विधेयक के उद्देश्यों और कारणों में कहा गया है कि राष्ट्रगान की तरह राष्ट्रगीत को गाने से जानबूझकर रोकने या ऐसे गायन में लगी किसी सभा में व्यवधान पैदा करने को एक दंडनीय अपराध बनाने का प्रावधान किया जाता है। विधेयक में राष्ट्रगीत के अपमान के लिए 3 वर्ष तक की सजा या जुर्माना अथवा दोनों के प्रावधान हैं। इससे पहले विधेयक पर हुई चर्चा में सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री तथा आरपीआई के रामदास अठावले, भाजपा के राधामोहन दास, मयंक कुमार नायक, डॉ अशोक कुमार मित्तल, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के गोला बाबू राव, तेदेपा के विजया चिंता कायला, राजद के मनोज कुमार झा, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, शिवसेना की डॉ ज्योति नागनाथ वाघमारे, बीआरएस के रविचंद्र वद्दीराजू, बीजेपी की सुलता देव और अन्ना द्रमुक सदस्य डॉ एम थंबीदुरई ने हिस्सा लिया। विधेयक पारित होने के बाद भाजपा के माधव राव गोपछड़े, डॉ अनिल सुखदेव राव बोंडे और डॉ लक्ष्मीकांत वाजपेयी तथा भाजपा के नाम निर्देशित सतनाम सिंह संधू ने आसन की अनुमति से विशेष उल्लेख के जरिए लोक महत्व से जुड़े मुद्दे उठाए। विशेष उल्लेख के बाद 3:15 पर पीठासीन अध्यक्ष घनश्याम तिवारी ने उच्च सदन की बैठक पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी। सदन की बैठक अब बृहस्पतिवार को सुबह 11 बजे होगी। विपक्षी सांसद दिल्ली में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के मुख्यालय में दिल्ली पुलिस के प्रवेश और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ की पूर्व अध्यक्ष आयशी घोष को गिरफ्तार करने की कोशिश का विरोध कर रहे थे। साथ ही उन्होंने नीट प्रश्न पत्र लीक के विरोध में राष्ट्रीय राजधानी में प्रदर्शन करने वाले छात्रों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह के बयान की मांग भी दोहराई। सूचीबद्ध दस्तावेज सदन के पटल पर रखे जाने के तुरंत बाद माकपा सांसद जॉन ब्रिटास ने आयशी घोष का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि सादे कपड़ों में दिल्ली पुलिस की एक टीम 2021 में जेएनयू में हुए प्रदर्शन से जुड़े मामले में आयशी घोष को गिरफ्तार करने के लिए कल पार्टी कार्यालय में दाखिल हुई। उनकी बात का समर्थन करते हुए नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि लोकतंत्र खतरे में है। कांग्रेस अध्यक्ष ने सवाल किया कि एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल के कार्यालय में पुलिस के प्रवेश का आदेश किसने दिया। आरोपों का जवाब देते हुए सदन के नेता जेपी नड्डा ने कहा कि यह एक सामान्य कानून व्यवस्था से जुड़ा मामला है। उन्होंने कहा कि पुलिस को कानून के अनुसार कार्रवाई करनी होती है और उसने उसी के अनुरूप कार्रवाई की है। श्री नड्डा ने कहा कि वे भी छात्र आंदोलन से जुड़े रहे हैं और उन्हें भी ऐसी कई कार्रवाइयों का सामना करना पड़ा था। माकपा तथा अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों ने इस घटना पर विरोध जताया। सभापति ने सदन में शून्यकाल शुरू करने और आसन की

अनुमति से सदस्यों से अपने अपने मुद्दे उठाने के लिए कहा। इसी बीच विपक्षी सदस्यों ने नीट प्रश्न पत्र लीक के विरोध में पिछले सप्ताह राष्ट्रीय राजधानी में प्रदर्शन करने वाले छात्रों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर गृह मंत्री के बयान की मांग भी उठाई। सत्ता पक्ष के सदस्यों ने इसका विरोध किया। विपक्षी सदस्य श्री शाह के बयान की मांग करते हुए नारेबाजी करने लगे। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने शून्यकाल चलाने का प्रयास किया और भारतीय जनता पार्टी के मदन राठौर, तेजवीर सिंह, डॉ. लक्ष्मीकांत वाजपेयी और राजीव भट्टाचार्य जी ने यातायात जाम, सरकारी स्कूलों में खेल के मैदानों की स्थिति और खाली पड़ी जमीनों में सौर ऊर्जा उत्पादक संयंत्र लगाने संबंधी मुद्दे उठाए और सरकार से इनके समाधान की मांग की। इस दौरान विपक्षी सदस्यों का हंगामा जारी था। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सदस्यों से शून्यकाल चलने देने की अपील की, लेकिन सदन में व्यवस्था बनते न देख उन्होंने कार्यवाही को दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दिया। बैठक स्थगित करने से पहले सभापति ने प्रदर्शन कर रहे सदस्यों को आसन के समक्ष नहीं आने की चेतावनी दी। 20 जुलाई से शुरू हुए संसद के मानसून सत्र के दौरान राज्यसभा में लगातार व्यवधान देखने को मिल रहा है। मानसून सत्र में आज पहली बार उच्च सदन में शून्यकाल हुआ, लेकिन केवल 4 सदस्य ही अपने मुद्दे उठा पाए। इस सत्र में प्रश्नकाल एक बार भी नहीं हो पाया है। अभी आप संसद में हुई आज की कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।

0: साहब बोल रहे हैं हम।
1: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के, अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
2: अम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह है ये।

0: लोकसभा ने परीक्षा में गड़बड़ी रोकने के लिए सख्त सजा और फास्ट ट्रैक कोर्ट का प्रावधान करने
1: वाला विधेयक
0: राज्यसभा ने वंदे मातरम को
1: राष्ट्रगान के समान कानूनी संरक्षण देने और इसके अपमान को अपराध घोषित करने वाला विधेयक पारित किया। ओडिशा में बाढ़ की स्थिति गंभीर, 4 लोगों की मौत और 4 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित। छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में मरने वाले प्रदर्शनकारियों की संख्या बढ़कर 40 हुई। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय ने चिंता व्यक्त की। और राष्ट्रमंडल खेलों में मुक्केबाज अंकुश, साक्षी, अरुंधति, सचिन और नरेंद्र ने सेमीफाइनल में प्रवेश किया। अब तक 9 भारतीय मुक्केबाजों ने पदक सुनिश्चित किए। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा ने लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक में 10 वर्ष तक के कारावास, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और अपराधियों की संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश को दैनिक सुनवाई के लिए विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने का आदेश दिया गया है। अपराधों की जांच पुलिस थाने में सूचना दर्ज होने की तारीख से 2 महीने के भीतर पूरी की जानी चाहिए। मुकदमे की सुनवाई आरोप पत्र दाखिल होने की तारीख से 3 महीने के भीतर पूरी होनी चाहिए। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा कि ये संशोधन कानून को और अधिक सख्त बनाने तथा त्वरित न्याय दिलाने के लिए किया गया है। डॉ सिंह ने कहा कि नया विधेयक छात्रों और युवाओं के कल्याण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है।
2: सरकार की प्रतिबद्धता का आप इसी बात से अनुमान लगा सकते हैं कि इसी विधेयक के लाने के साथ ही साथ हमारे लॉ मिनिस्टर्स की ओर से भी एक प्रस्ताव जारी कर दिया गया। स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट्स है, इनको स्थापित करने का भी क्रम प्रारंभ किया जाए। उसमें दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड में पहले ही इन्होंने गठित कर दिया है और आने वाले दिनों में बाकी स्थानों पर भी।
0: डॉक्टर सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री ने टास्क फोर्स का गठन भी किया है।
2: कल ही प्रधानमंत्री जी ने एक टास्क फोर्स का भी ऐलान किया है टू रिकमेंड रिफॉर्म्स टू मेक द एग्जाम सिस्टम्स लीक प्रूफ। उसमें कुछ एक बड़े वरिष्ठ लोग सम्मिलित किए गए और साथ ही साथ जो राधा कृष्ण कमेटी गठित की गई थी 22 जून 2024 में, उसमें से जो 46 की रिकमेंडेशंस थी उसमें से भी 35 इम्प्लीमेंट हो चुकी है।
0: श्री सिंह ने विपक्ष के नेता राहुल गांधी के असंसदीय भाषा का इस्तेमाल करने की भी आलोचना करते हुए इसे अनुचित और दुर्भाग्यपूर्ण बताया। राज्यसभा ने राष्ट्रीय सम्मान की रक्षा के लिए राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। ये विधेयक वंदे मातरम को राष्ट्रीय गान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करेगा। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि वंदे मातरम के अपमान के लिए अब 3 वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है।
3: राष्ट्रीय गीत अपमान पर इस विधेयक के माध्यम से दंडनीय प्रावधान करने का विचार हुआ है। वर्तमान संशोधन का उद्देश्य राष्ट्र गीत वंदे मातरम के

0: जानबूझकर किए गए अपमान को भी उसी प्रकार के दंडनीय बनाया जाए जैसा कि वर्तमान कानून में है। हर भारतवासी के राष्ट्रप्रेम का उद्घोष है वंदे मातरम, विकसित भारत का संकल्प है वंदे मातरम।
1: संसद के दोनों सदनों में आज हुई कार्यवाही पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट।
2: संसद के दोनों सदनों में आज महत्वपूर्ण विधायी कार्य संपन्न हुए, हालांकि कार्यवाही के दौरान कई बार व्यवधान भी देखने को मिला। लोकसभा में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 प्रस्तुत किया। इसके अलावा लोकसभा ने एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित विधेयक की जाँच कर रही संयुक्त संसदीय समिति का कार्यकाल संसद के शीतकालीन सत्र 2026 के अंतिम सप्ताह के पहले दिन तक बढ़ाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। नीट मुद्दे को लेकर छात्रों के प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई के विरोध में विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार बाधित हुई। इस कारण लोकसभा और राज्यसभा में प्रश्नकाल नहीं चल सका। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: केंद्रीय मंत्रियों और भाजपा के नेताओं ने विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई को लेकर लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह पर विपक्ष के नेता राहुल गांधी की टिप्पणी की आलोचना की। केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने आकाशवाणी से विशेष बातचीत में कहा कि श्री राहुल गांधी अपने संवैधानिक पद की गरिमा बनाए रखने में विफल रहे हैं।
3: आज राहुल गांधी जी ने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जो संसदीय नहीं है। माननीय गृह मंत्री जी पर आरोप लगाया जबकि उनके पास इस प्रकार का कोई सबूत नहीं है। कभी भी कोई लाठी चार्ज, टियर गैस, कैनिंग या पानी के बौछार का आदेश कोई मंत्री नहीं देता है। ये उस मौके पर अनलॉफुल असेंबली को देखते हुए उस मौके के गजेटेड अफसर, पुलिस अफसर और प्रशासन के लोग ये निर्णय लेते हैं। ये मिथ्या आरोप उन्होंने माननीय गृह मंत्री पर लगाया है।
1: केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंह ने आरोप लगाया कि सदन में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की भाषा संसदीय कार्यवाही के लिए अनुचित थी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 अगस्त को नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान का शुभारंभ करेंगे। ये नशाखोरी के खिलाफ 100 सप्ताह का राष्ट्रव्यापी जनभागीदारी आंदोलन है। इस पहल का लक्ष्य जागरूकता, सामुदायिक सहभागिता और निरंतर जनभागीदारी को बढ़ावा देकर नशा मुक्त भारत के निर्माण के लिए युवाओं को सामूहिक राष्ट्रीय मिशन में एकजुट करना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में भारतीय पारंपरिक कला रूपों के कलाकारों से मुलाकात की और उनके कार्यों का अवलोकन किया। बनारस भित्तिचित्र, थंका नायका, केरल भित्तिचित्र, बसोहली सुरपुर और मैसूर जैसी कला शैलियों का प्रतिनिधित्व करने वाले 12 कलाकार कलाकार निवास कार्यक्रम के अंतर्गत राष्ट्रपति भवन में रह रहे हैं। कलाकार निवास कार्यक्रम भारत की कलात्मक परंपराओं की भावना का उत्सव है। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज आगामी नीट स्नातक काउंसलिंग 2026 की तैयारियों की समीक्षा की। श्री नड्डा ने कहा कि काउंसलिंग प्रक्रिया पारदर्शी, निष्पक्ष और योग्यता आधारित तरीके से संचालित की जानी चाहिए। ओडिशा में लगातार जारी तेज बारिश और नदियों में आए उफान से राज्य के बड़े हिस्से को मानवीय संकट में डाल दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बाढ़ के कारण 4 लोगों की मौत हो गई है।
4: बाढ़ का पानी लगातार आगे बढ़ रहा है। उफनती बैतरणी नदी भारी तबाही मचा रही है, जबकि भद्रक, जाजपुर और बालेश्वर में बाढ़ की स्थिति खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है। मयूरभंज में लगातार बारिश और नदियों के उफान ने संकट को और बढ़ा दिया है। सरकारी सूत्रों का कहना है कि 304 ग्राम पंचायत में लगभग 3,80,000 लोग प्रभावित हुए हैं। बचाव और राहत कार्य जारी है। इस बीच IMD ने नुआपड़ा, कलाहंडी, नवरंगपुर और कोरापुट जिले में ऑरेंज वार्निंग जारी की है। प्रकाश दास, आकाश समाचार, भुवनेश्वर।
1: छत्तीसगढ़ से हमारे संवाददाता ने बताया है कि पिछले 2 दिन से जारी मूसलाधार वर्षा के कारण कई जिलों में जनजीवन प्रभावित है।
5: छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में पंटोरा में स्थित कन्या आश्रम में पानी भरने से 50 से अधिक छात्राओं को दूसरे स्थान पर भेजा गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सभी जिला कलेक्टरों सहित अन्य अधिकारियों को सतर्क रहने और जरूरी उपाय करने के निर्देश दिए हैं। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान छत्तीसगढ़ के बालोद और कांकेर जिलों के लिए भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
1: मौसम विभाग ने मध्य महाराष्ट्र और पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में कल मूसलाधार वर्षा की आशंका व्यक्त की है। पूर्वोत्तर भारत, तटीय कर्नाटक, पूर्वी मध्य प्रदेश, राजस्थान

0: குஜராத், ஹிமாச்சல் பிரதேஷ், கேரள் ஓர் மாஹே, கோங்கட், கோவா, பஞ்சாப், தட்சிணாந்தரி கர்நாடக, உபஹிமாலய், பச்சிம பங்கால் ஓர் சிக்கிம் மே பி கல் தேஸ் பாரிஷ் கி சம்பாவனா ஹை. தில்லி, ஹரியானா, சண்டிகட், சத்தீஸ்கட், ஜம்மு கஷ்மீர், லத்தாக் ஓர் லட்சத்வீப் மே பி தேஸ் வர்ஷா கா அனுமான் ஹை. ஊப்பரி அசம் மே ஆயி விநாஷ்காரி பாட் கே மத்தினஜர் விதான்சபா கா பஹலா பஜெட் சத்ர ஆஜ் நிர்தாரித சமய சே தோ தின் பஹலே சமாப்த ஹோ கயா. ஏக் ரிப்போர்ட்.
1: पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री अतुल बोरा ने सदन को बताया कि राज्य सरकार बाढ़ प्रभावित लोगों को राहत प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है. उन्होंने कहा कि वरिष्ठ अधिकारियों की एक टीम कल ऊपरी असम का दौरा करेगी ताकि बाढ़ पीड़ितों को प्राथमिकता के आधार पर सहायता उपलब्ध कराई जा सके. सदन ने जान गंवाने वाले लोगों की स्मृति में एक मिनट का मौन भी रखा. इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी. राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी.
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं. ये आकाशवाणी है. पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अशांति लगातार बढ़ रही है. मरने वाले प्रदर्शनकारियों की संख्या बढ़कर 40 हो गई है. संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय ने प्रदर्शनकारियों की मौत पर चिंता व्यक्त की है. संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त के प्रवक्ता जेरेमी लॉरेंस ने कहा कि एक नागरिक समाज संगठन को अपराधी घोषित करना और सभाओं पर कड़े प्रतिबंध लगाना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सभा और संगठन के अधिकारों के उल्लंघन के बारे में गंभीर चिंताएं पैदा करता है. उधर ब्रिटेन में रहने वाले कश्मीरियों ने आज बर्मिंघम स्थित पाकिस्तानी वाणिज्य दूतावास के बाहर हत्याओं के विरोध में प्रदर्शन किया. उन्होंने संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी के साथ एकजुटता व्यक्त करने के लिए दूतावास के बाहर जूते रखे. कई ब्रिटिश सांसदों ने कथित कार्रवाई की निंदा की. सांसद नाज शाह और इमरान हुसैन ने प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी को बर्बर बताया और जवाबदेही तथा शांतिपूर्ण समाधान की मांग की. कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा नौसेना के लिए निर्मित 8 पनडुब्बी रोधी जलपोतों में से 7वें जलपोत मछलीपट्टनम का आज जलावतरण किया गया. ये जलपोत समुद्र के भीतर की निगरानी, पनडुब्बी रोधी युद्ध अभियान और कम तीव्रता वाले समुद्री अभियान के साथ साथ बारूदी सुरंग भेदन क्षमता से लैस है. 80% से अधिक स्वदेशी सामग्री कि ये परियोजना भारतीय पोत निर्माण उद्योग की बढ़ती क्षमता को प्रदर्शित करती है. दिल्ली पुलिस ने 20 जुलाई के नीट पेपर लीक के विरोध में प्रदर्शन के दौरान एक प्रदर्शनकारी को गोली लगने की अफवाहों का खंडन किया है. ये अफवाह मेडिको लीगल सर्टिफिकेट के निष्कर्षों से मेल नहीं खाती. पुलिस ने कहा कि सर्टिफिकेट में घाव को हल्की चोट बताया गया है. डॉक्टर के अनुसार गोली लगने का कोई सबूत नहीं है. पुलिस ने लोगों को ऐसी अफवाह फैलाने से पहले प्रामाणिक स्रोतों से जानकारी की पुष्टि करने की सलाह दी है. उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले के एक निजी स्कूल में 5 वर्षीय बच्चे के साथ शिक्षक द्वारा कथित यातना और अमानवीय व्यवहार के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव और वाराणसी पुलिस आयुक्त को नोटिस जारी किया है. मीडिया रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लेते हुए आयोग ने 2 सप्ताह के भीतर इस मामले पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है. सरकार ने कहा है कि लगभग 6 दशकों की हिंसा के बाद देश वामपंथी उग्रवाद से मुक्त हो गया है. राज्यसभा में एक प्रश्न के उत्तर में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि उपलब्धि वामपंथी उग्रवाद से निपटने के लिए 2015 की राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना के दृढ़ कार्यान्वयन तथा केंद्र और राज्य सरकारों के समन्वित प्रयासों से हासिल हुई है. और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं अमरीश सक्सेना.
2: सेंसेक्स 889 अंक ऊपर चढ़कर 77,655 पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी 265 अंक की तेजी के साथ 24,250 पर बंद हुआ. उधर अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया 21 पैसे मजबूत होकर 1 अमरीकी डॉलर की तुलना में 95.64 रुपए पर बंद हुआ.
0: ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय मुक्केबाज अंकुश, साक्षी, अरुंधति, सचिन और नरेंद्र ने सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है. भारतीय मुक्केबाजों ने अब तक 9 पदक सुनिश्चित कर लिए हैं. पदक तालिका में भारत 2 स्वर्ण, 7 रजत और 3 कांस्य पदकों के साथ 9वें स्थान पर है. जम्मू कश्मीर में आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर श्रीनगर के मैसुमा स्थित ऐतिहासिक दशनामी अखाड़े से पारंपरिक पवित्र गदा चारी मुबारक को विधिपूर्वक निकाला गया. ये समारोह श्री अमरनाथ जी गुफा

0: ये आकाशवाणी है। चर्चा का विषय है, कार्यक्रम में प्रस्तुत है, मॉनसून में आपदाओं से बचाव के उपाय और जन जागरूकता पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं भारत मौसम विज्ञान विभाग में वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर डी आर पटनायक और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान में प्रोफेसर सूर्य प्रकाश। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आनंद श्रीवास्तव।
1: नमस्कार। एक तरफ आसमान से बरसती जिंदगी तो दूसरी तरफ उसी बारिश का रौद्र रूप। कहीं किसान की आंखों में अच्छी फसल के सपने हैं तो कहीं बाढ़ का पानी घरों की चौखट लांघ चुका है। कहीं पहाड़ दरक रहे हैं, कहीं शहर कुछ घंटों की बारिश में थम जा रहे हैं और कहीं एक मोबाइल पर आया छोटा सा मौसम अलर्ट हजारों जिंदगियां बचाने की उम्मीद बन जाता है। आज मॉनसून केवल एक मौसम नहीं रहा, ये विज्ञान की परीक्षा भी है, प्रशासन की तैयारी भी और समाज की सामूहिक जिम्मेदारी भी। बदलते जलवायु परिदृश्य में मॉनसून का स्वरूप लगातार बदल रहा है। कहीं कुछ घंटों में पूरे महीने जितनी बारिश हो जाती है तो कहीं लंबे समय तक वर्षा का इंतजार बना रहता है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या हम आने वाले खतरों को समय रहते पहचान पा रहे हैं? क्या हमारी चेतावनी प्रणाली, हमारा आपदा प्रबंधन तंत्र और हमारी सामुदायिक तैयारी इस बदलती चुनौती का सामना करने के लिए पर्याप्त हैं? इन्हीं महत्वपूर्ण सवालों पर आज होगी चर्चा। हमारे साथ हैं भारत मौसम विज्ञान विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर डी आर पटनायक, जो मौसम पूर्वानुमान और चेतावनी प्रणाली के विशेषज्ञ हैं। साथ ही हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रोफेसर सूर्य प्रकाश, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के विशेषज्ञ, जो आपदा जोखिम न्यूनीकरण और आपदा प्रबंधन की रणनीतियों पर वर्षों से कार्य कर रहे हैं। आप दोनों का आकाशवाणी के इस कार्यक्रम चर्चा का विषय है में बहुत बहुत स्वागत है।
2: नमस्कार।
1: डॉक्टर पटनायक, शुरुआत आपके साथ करते हैं। पिछले कुछ वर्षों में देखा गया है कि कुल मॉनसूनी बारिश भले सामान्य रहे, लेकिन जिसे कहते हैं शॉर्ट ड्यूरेशन हाई इंटेंसिटी रेनफॉल, यानी कम समय में बहुत ज्यादा बारिश की घटनाएं बढ़ गई हैं। आईएमडी अपने मेशो स्केल और अर्ली वार्निंग मॉडल्स को इस सूक्ष्म स्तर के पूर्वानुमान के लिए पिछले कुछ वर्षों में अगर हम कहें तो किस तरीके का अपडेट उसमें आया है, क्या नई तकनीक आई है और उसका कितना असर आप देख रहे हैं?
3: जैसे आपने पहले भी बताया कि ये क्लाइमेट चेंज जो बोलते हैं, क्लाइमेट चेंज के कारण जो हाई इंटेंसिटी रेनफॉल उसका फ्रीक्वेंसी जो है वो नंबर बढ़ रहा है। ये एक बहुत परिमाण में हमारा जितने सारे भी डाटा देखा गया है पिछला 100 साल 50 साल अगर हम देखेंगे तो ये जो जितना हैवी रेनफॉल एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल का इवेंट जो है उसका फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है। ये क्लाइमेट चेंज के कारण इसलिए हो रहा है कि जब टेम्परेचर बढ़ रहा है तो उसमें जो मॉइस्चर है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है उसका काफी बढ़ जाता है एटमॉस्फेयर में, और जब इंस्टेबिलिटी होता है तो वो हैवी डाउनपोर हो जाता है। इसलिए अगर पूरा रेनफॉल अगर सीजन का मॉनसून सीजन जैसे जून टू सितंबर में अगर टोटल रेनफॉल अगर कंट्री एज ए होल अगर हम देखेंगे पिछले 30-40 साल में 50 साल में तो ऐसा कोई सिग्निफिकेंट ट्रेंड नहीं दिखने को मिलता है। वो बहुत अच्छी बात है, हमारा एग्रीकल्चर देश है, लेकिन तो हमारा जो एग्रीकल्चर देश है उसमें क्या होगा कि ये तो हमको अच्छी बात है कि रेनफॉल जो है डिक्रीजिंग ट्रेंड या इंक्रीजिंग ट्रेंड नहीं है, लेकिन जब हम टोटल रेनफॉल को हम डिवाइड देते हैं कि एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल जो कि 10 सेंटीमीटर से ज्यादा या 20 सेंटीमीटर से ज्यादा एक दिन में अगर ऐसा होता है तो उसका अगर काउंट करेंगे तो वो सब दिन का बढ़ रहा है। तो आप जैसे सवाल किया कि हमारा प्रणाली में पिछले 5-10 साल में हमने क्या सुधार किया है जो कि उसका आलिए, तो हमने काफी हमारा इम्प्रूवमेंट इसमें किया है। पहली तो बात यह है कि ये शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन इवेंट को पहले मॉनिटर करना पड़ता है, मॉनिटर करने पर कि अगर कोई चीज क्लाउड डेवलपमेंट हो रहा है या कुछ इसमें हो रहा है तो ये कि ऐसा इमीडिएटली अगर एक में या 12 घंटा में दे देगा तो उसको हम मॉनिटर कैसे करेंगे। हमारे पास मॉनिटरिंग के लिए बहुत सारे हैं, सरफेस ऑब्जर्वेशन है, हम बैलून छोड़ते हैं, हम ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन है, राडार है, सैटेलाइट है, उसमें कंटिन्यूअसली हमारे पास आज 50 राडार है तो हमने इसमें से कंटिन्यूअसली हम देखते रहते हैं कि कोई ये मैंने कन्वेक्टिव क्लाउड बन रहा है क्या। उसके बाद ये जब हो जाता है तो इमीडिएटली हमने इसका सूचित करते हैं कि ये इसी एरिया में बहुत हैवी रेनफॉल होगा। दूसरा है कि हमारे पास न्यूमेरिकल मॉडल, ये जो वेदर प्रेडिक्शन है खाली हम सैटेलाइट राडार इमेज देख के हम फोरकास्ट नहीं देते, उसमें से नहीं होगा, वो थोड़े से थोड़े हमारा 2-3 घंटा के लिए हम बता पाएंगे, लेकिन हम जब 5 दिन पहले कुछ बता रहे हैं कि 7 दिन पहले बता रहे हैं तो इस टाइप का इवेंट होने वाला है 2 दिन के बाद, इसके लिए हमें न्यूमेरिकल मॉडल चाहिए। तो न्यूमेरिकल मॉडल में हमने काफी इम्प्रूव किया है, हमारा सब जितना सारे डाटा अभी सैटेलाइट से AWS से सब आ रहा है वो मॉडल में जा रहा है, मॉडल में प्रोसेस हो रहा है, मॉडल का इम्प्रूवमेंट हुआ है। हमारे पास सुपर कंप्यूटर आया है, सुपर कंप्यूटर क्यों इसलिए चाहे कि बहुत पावरफुल कंप्यूटर का जरूरत पड़ता है जब वेदर प्रेडिक्शन करना पड़ता है, तो पावरफुल कंप्यूटर पहले नहीं था हमारा, अभी अभी हमने लाया है पावरफुल कंप्यूटर जो कि अभी हमारे पास 20 पेटाफ्लॉप से भी ज्यादा मशीन है। इसका चलते हुए हमारा जो मॉडल का जो भी है अच्छा इम्प्रूवमेंट हो गया है,

0: इसलिए अर्ली वार्निंग जो मॉडल फोरकास्ट दे देगा तो हम अर्ली वार्निंग इसमें अच्छे से कर पा रहे हैं, और अर्ली वार्निंग के कारण चलते हमारा वार्निंग जो मैकेनिज्म बाद में। और एक चीज है, ऑब्जर्वेशन हो गया, मॉडलिंग हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, उसके बाद हमारा जो डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, एक जो बोलते हैं हम जब एक डिसीजन लेते हैं जो कि डिजास्टर मैनेजर को हेल्पफुल होगा, क्योंकि डिजास्टर मैनेजर खाली हम ये हो जाएगा कि ओडिशा में बारिश हो जाएगा ऐसा बोलने से उन्होंने पिन पॉइंट एक्शन नहीं ले पाएंगे। डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए आपको एक्यूरेसी चाहिए, आपको लोकेशन स्पेसिफिक चाहिए, तो इसके लिए हम क्या करते हैं डिसीजन सपोर्ट सिस्टम में उसको हम स्टेट लेवल से फिर हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल में आ जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल से फिर कौन सा सिटी लेवल में आते हैं, तो वो इतना फाइन ट्यून करने के लिए हमारा डिसीजन सपोर्ट सिस्टम काफी मददगार होता है। और उसके लिए हमारा सैटेलाइट रडार के साथ साथ हमारा जितना भी मॉडल आउटपुट सब बन रहा है हमारा मॉडल, और हम कस्टमाइजली दूसरा मॉडल को भी यूटिलाइज करके हम एक कस्टमाइज फोरकास्ट प्रोडक्ट बनाते हैं। जैसे कि हैवी रेनफॉल अभी जैसे ओडिशा में चल रहा है, ये काफी दिन से हमने रेड कलर वार्निंग दिया है, तो ये सब संभव है कि काफी जो ऑब्जर्वेशन मॉडलिंग कम्युनिकेशन हमारा पर डाटा एसिमुलेशन न्यूमेरिकल मॉडल फिर हमारा डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, ये सारे कम्बाइन अगर हम देखेंगे पिछले 10 साल में तो काफी इंप्रूवमेंट हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ आर्थ साइंस इंडिया में डिपार्टमेंट, उसके चलते हुए हमारा ये फोरकास्ट एक्यूरेसी भी काफी इम्प्रूव।
1: जी डॉक्टर सूर्य प्रकाश, जैसा कि डॉक्टर पटनायक कह रहे हैं कि पिछले कुछ वर्षों में बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं मौसम विभाग की प्रणालियों में, जिससे कि जो पूर्वानुमान है वो 100% लगभग सही होने लगे हैं। अब एक व्यवहारिक सवाल पर आते हैं कि जब भी भारी बारिश या बाढ़ की चेतावनी जारी होती है तो एक आम परिवार को अपने घर के स्तर पर क्या सुरक्षात्मक कदम उठाने चाहिए, खासकर अगर हम जैसे बात करें तो कोई इमरजेंसी किट होनी चाहिए, जैसे हम फर्स्ट एड किट रखते हैं अपने घर में, क्या उस तरीके से आपदा के लिए या भारी बारिश की चेतावनी बाढ़ की चेतावनी के लिए कोई इमरजेंसी किट होनी चाहिए, और उसमें कौन कौन सी जरूरी चीजें होनी चाहिए जो मुसीबत के समय जान बचा सकती है।
2: आनंद जी आपने बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल किया है। जब भी भारी बारिश की हम चेतावनी आती है तो जन समुदाय को तैयार रहने के लिए कहते हैं, न सिर्फ जन समुदाय बल्कि जो हमारे विभिन्न विभाग हैं जो आपदा प्रबंधन के लिए जिन जिम्मेदार हैं उनको भी तैयार रहने को कहा जाता है। अक्सर एक आम व्यक्ति को या परिवार को जब भारी वर्षा की चेतावनी मिलती है उस समय सबसे पहले तो यही होता है कि आपको कहीं भी घर से बाहर निकलने नहीं चाहिए, क्योंकि बाहर रास्ते में कहीं पर भी बाढ़ मिल सकती है, कहीं पुल टूट सकता है, कहीं रास्ते बह सकते हैं, और इस तरह की कई संभावनाएं आपदाओं की होती हैं जो भूस्खलन या बाढ़ या भूमि के खिसकने के रूप में दिखाई दे सकती हैं। तो इमरजेंसी में आपको एक तो टॉर्च, क्योंकि अक्सर जब भी भारी वर्षा होगी तो पावर सप्लाई ब्रेकआउट होगा, तो उस समय में आपको टॉर्च की एक आवश्यकता रहेगी, कि टॉर्च जरूर होनी चाहिए। और इसके अलावा अगर आपको जरूरी है घर से बाहर निकलना तो आपको एक प्रॉपर अम्ब्रेला या रेनकोट वगैरह की जरूरत रहेगी, और इसके साथ में आप जो है कहीं पर अगर जा रहे हैं और कहीं मिट्टी या मलबे से क्रॉस करते हैं तो अगर आप डंडा या रस्सी भी साथ में रखते हैं तो बहुत हेल्पफुल रहता है। इसके अलावा जो जरूरी आपकी दवाइयां वगैरह हैं जो सर्वाइवल किट्स में जरूरी होती हैं, वाइटल मेडिसिन, वो भी आपके पास उपलब्ध रहनी चाहिए, क्योंकि ऐसे समय में हो सकता है बाजार वगैरह भी खुले ना रहें, तो जो भी बारिश का समय होता है और पूरा चेतावनी आती है उसके अनुसार उस समय अवधि के लिए आपको पूर्ण तैयारियां अपने सर्वाइवल के लिए करके रखनी चाहिए। पहले से हम मॉक ड्रिल्स वगैरह करके रखते हैं, इवैक्यूएशन रूट का हमें पता है, कहीं पे फंस गए या रिक्तिकरण करना है तो कौन से सुरक्षित स्थल हैं या कौन से सुरक्षित भवन हैं जहां पर आप समय रहते हुए अपने बचाव के लिए जा सकते हैं, उनका भी आपको ज्ञान रहना चाहिए। तो ये सब चीजें हैं। इसके अलावा आम व्यक्ति आजकल बारिश के सीजन में कहीं कहीं बाहर पर्वतीय स्थलों पर चले जाते हैं तो वहां पर बड़ा मतलब ध्यान से जाना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए भीड़ भाड़ इलाके में या फिसलन वाले इलाके में नहीं जाएं, और कहीं पर भी जैसे ज्यादा लोगों के जाने की संभावना है वहां जाने को आप अवॉइड करें, बचें, ताकि वहां पर भीड़ भाड़ ना हो और किसी तरह की भगदड़ ना मच पाए। तो ये अक्सर होता है कि बारिश के टाइम पे मंदिर में या जो हमारे पिलग्रिमेज प्लेसेस हैं वहां इकट्ठे हो जाते हैं और फिर एकदम बारिश होती है और लोगों में भगदड़ मच जाती है, उसकी वजह से भी कई बार डेथ्स हो जाती है। तो हमको तैयारी के लिए इमरजेंसी किट, जिसमें आपके पास एक टॉर्च होनी चाहिए, वाइटल मेडिसिन होनी चाहिए, और इसके अलावा आपके पास रस्सी या लाठी हो तो और अच्छा है, और अगर सीटी भी रखते हैं तो अच्छा रहता है दूसरों को सचेत करने के लिए या बुलाने के लिए।
1: डॉक्टर पटनायक, पिछले कुछ वर्षों में हमने देखा है कि मुंबई, दिल्ली और बाकी बहुत सारे महानगर

0: के छोटे छोटे ब्लॉक्स में अर्बन फ्लडिंग की समस्या काफी देखने को मिली है। अब इन अर्बन फ्लडिंग्स को लेकर आईएमडी के फ्लैश फ्लड गाइडलाइन सिस्टम, जिसे एफएफजीएस भी कहते हैं, उसका सटीक प्रभाव जमीनी स्तर पर नगर निगम और आपदा टीम तक कितनी तेजी से पहुंचाना संभव हुआ है, इस दिशा में क्या प्रगति हुई है?
1: आजकल जो है अर्बन फ्लडिंग जो है एक बहुत बड़ा समस्या है। हमारा जैसे अर्बनाइजेशन काफी हो रहा है, अर्बन डेवलपमेंट बहुत हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बन रहा है जिसमें कि पॉपुलेशन भी बढ़ गया है। तो जब सिटी में पहले इतना बारिश होता था तो ये इतना नोटिस नहीं हो रहा था, उसका पानी ठीक से निकल गया, ड्रेनेज सिस्टम है, ये है, तो थोड़ा सा अगर बेहतर है तो उसमें से ये फ्लडिंग नहीं होता। लेकिन आजकल क्या है, जब इंटेंस रेनफॉल इवेंट जब होते रहे, अगर एक घंटा में कभी क्लाउड बस्ट टाइप का जो आपको भी पता है कि एक घंटा में अगर 10 सेंटीमीटर बारिश हो जाता है तो उसको हम क्लाउड बर्स्ट टाइप का भी बोलते हैं। तो ये है हाई इंटेंसिटी रेनफॉल इवेंट जब होता है अर्बन में, तो इसमें ये अर्बन फ्लडिंग का समस्या आ रहा है। तो इसलिए अर्बन फ्लडिंग को हम जो आप बता रहे हैं कि फास्ट फ्लड गाइडेंस सिस्टम हमारा जो एफएफजीएस है, ये एक डब्ल्यूएमओ वर्ल्ड मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन तरफ से है, ये इंट्रोड्यूस किया है। तो हमारा जो इंडिया में है, हम सारे वाटर शेड रीजन के लिए हम ये अर्बन फ्लडिंग का एफएफजीएस है वो देते हैं। तो उसमें क्या हो रहा है कि छोटे छोटे एरिया के लिए भी हमारा सब मैपिंग हुआ है, तो जितना भी रेनफॉल हमको ऑब्जर्वेशन रेनफॉल मिल रहा है वो सारे उसमें आएगा। एंड उसके बाद वो जो सॉयल मॉइस्चर है, क्योंकि जब क्या होता है, जब सॉयल मॉइस्चर ऑलरेडी वेट है तो उसके बाद अगर बारिश हो जाता है तो उसका ड्रेनेज इतना जल्दी पानी निष्कासित नहीं हो पाता है। वो सब चीज उसी मॉडल में रहेगा एफएजीएस, और उसमें हमें कितना रिस्क है ये एक तरह से हम गाइडेंस देते हैं। तो हर दिन हमारा सुबह भी बनता है, शाम को भी बनता है, दो बार दिन में तो बन रहा है। तो अगले 6 घंटा के लिए देते हैं जो कि ऑब्जर्व रेनफॉल में कितना रिस्क है, और उसके बाद हमारा फोरकास्ट भी अगले 24 आवर्स में जो कहाँ कहाँ ये होने वाला है इसका देते हैं। आज जैसे कि अभी हमने मानसून डिप्रेशन चल रहा है, अभी ओडिशा में काफी किसी जगह में 300 मिलीमीटर रेनफॉल भी हुआ है, 250 बहुत जगह में ओडिशा के इंटीरियर ओडिशा में। तो हमारा फ्लैश फ्लड गाइडेंस सिस्टम में हमने इंडिकेट किया था इसमें, जैसे कि अभी फिर छत्तीसगढ़ जाएगा। तो ये एक जो फ्लैश फ्लड गाइडेंस सिस्टम है ये आपको कम टाइम में हमको जो वार्निंग है रेनफॉल को ट्रांसलेट करके, खाली रेनफॉल कितना होगा ये इतना सफिशिएंट नहीं, रेनफॉल जो होगा उसके बाद बाकी सॉयल मॉइस्चर को भी देखा जाएगा, बाकी उसका कितना ड्रेनेज में है, सॉयल मॉइस्चर का क्वालिटी है, अभी कितना वेट है, वो सब कंसीडर करके फ्लैश फ्लड। तो वही गाइडेंस जो हम दे रहे हैं ये काफी हद तक यूजफुल है। ऑलरेडी अर्ली वार्निंग हमने दे दिया, हैवी रेनफॉल या वेरी एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल दे दिया, तो फिर हम जो फ्लैश फ्लड गाइडेंस भी उसके साथ साथ इमीडिएटली देते हैं कि कौन सा ब्लॉक है, कौन सा एरिया है, कौन सा वाटर शेड है जिसमें कि फ्लैश फ्लड गाइडेंस का रिस्क ज्यादा है।
0: इसी चर्चा को अगर हम आगे बढ़ाते हैं, जैसा डॉक्टर पटनायक बता रहे थे कि शहरों में जो कम समय में ज्यादा बारिश होने से बाढ़ की स्थिति हो जाती है, सूर्य प्रकाश जी आपसे समझना चाहेंगे कि जब शहरों में जल भराव होता है तो अक्सर रास्तों पर चलने या बिजली के खंभों के पास जाने से हादसे हो जाते हैं, ऐसे जल भराव वाले क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को आप क्या कहेंगे कि सड़क पर निकलते समय और घरों के भीतर किन बुनियादी सावधानियों का पालन करें ताकि खुद भी सुरक्षित रहें और आसपास के लोगों को भी वो जागरूक कर सकें?
2: आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया है, क्योंकि जब भी बाढ़ आती है तो बाढ़ के साथ ही समस्याएं होती हैं शहरी क्षेत्रों में, कि जो अवसंरचनाएं हैं, जो हमारी पावर लाइंस हैं, इलेक्ट्रिकल लाइंस हैं, वो भी कई वक्त बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाती हैं या प्रभावित होती हैं। ऐसे समय में इलेक्ट्रिक करंट की वजह से डेथ्स होने की भी संभावनाएं बढ़ जाती हैं। सभी को जो भी घर से बाहर हों, अगर सड़क पर हैं, तो ये ध्यान रखें किसी भी ट्रांसफॉर्मर, इलेक्ट्रिक पोल या लाइव वायर्स के नीचे से ये ना क्रॉस करें और किसी तरह का रिस्क ना लें अगर वो पैदल भी चल रहे हों। दूसरा, अगर घर में आप रह रहे हैं तो जो भूतल पर रहते हैं उनके घरों में भी बाढ़ का पानी आ जाता है, भर जाता है, और कई बार उनका इलेक्ट्रिक कंट्रोल रूम भी बिल्कुल भूतल पर ही होता है जो पानी के अंदर सबमर्ज हो जाता है कई बार, तो उसको अगर हमने स्विच ऑफ नहीं किया तो उससे भी करंट लगने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो ऐसे में आप जो है अपना मेन कंट्रोल रूम जो है या स्विच है उसको हमेशा ऑफ कर दीजिए, ताकि पावर कंटिन्यूटी की वजह से इलेक्ट्रिकल करंट लगने के खतरे कम से कम हो जाएं। और दूसरा, अगर आप शहरी क्षेत्र में हैं और ड्राइविंग कर रहे हैं, सड़कों पर हैं, तो जो लो लाइंग एरियाज हैं, जो सब पासिस हैं या अंडरवेज हैं, उसमें भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि सबवेज में कई बार लो लाइंग एरिया होता है और काफी पानी भर जाता है जिसका अंदाजा हमें नहीं लगता है, तो ऐसे में भी डूबने की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं। तो ये दो बड़े प्रिकॉशन हैं जिसमें हमें ध्यान देने की जरूरत है।

0: ये आप किसी भी पानी के भराव क्षेत्र में बिना अंदाज लगाए और अनुमान के आप कहीं भी उसमें एंटर ना करें। और दूसरा, पावर सप्लाईज और करंट का हमेशा ध्यान रखें कि उनसे दूर रहें, बच के रहें, और कोई भी ऐसी संभावना नहीं होनी चाहिए जिसमें किसी को करंट लग सके। तो ये दो महत्वपूर्ण जानकारियां जिसका ध्यान रखने की जरूरत है। मैं इसके अलावा ये कह रहा था कि गैस सप्लाई का भी है, हमारे यहाँ PNG है दिल्ली में, जैसे उसमें भी कई बार लीकेज या कुछ चांसेस हो सकते हैं, तो उन चीजों का भी ध्यान रखें कि गैस सिलेंडर वगैरह या आपकी जो बिलोंगिंग्स हैं वो भी आप जो है भराव वाले क्षेत्र से ऊपर रखें, मतलब जितना अगर आप ऊंचाई पे रखेंगे उतना सुरक्षित रहेंगी वो चीजें। ठीक
1: डॉक्टर
0: है,
1: पटनायक, अगर आपसे ये समझने की कोशिश करें कि हाल के वर्षों में डॉपलर वेदर रडार का नेटवर्क काफ़ी बढ़ा है और मौसम के सटीक और नाउकास्टिंग का मतलब तत्काल पूर्वानुमान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रडार तकनीक से जो सुधार आया है, आपसे ये समझना चाहेंगे कि कितने प्रतिशत का सुधार आप देखते हैं और इससे आम जनमानस को कितना फायदा हो रहा है, किसानों के लिए ये कितनी राहत की बात है और सरकारी तंत्र इससे किस तरह लाभान्वित हो रहा है।
2: देखिए ये अभी जो आप बताए कि डॉपलर राडार हमारा काफी नेटवर्क बढ़ गया है। अभी हम अगर 2014-15 में जो 15-20 राडार के नीचे ही था उसमें आज हमारा 50 राडार के आसपास आ गया। तो ये डॉपलर राडार में क्या हो रहा है कि जब इंडिया बहुत बड़ा कंट्री है तो सारे जगह में हम जब रडार रखेंगे तो उसका 300 किलोमीटर कभी 400 किलोमीटर इफेक्टिवली 200 किलोमीटर ये रेंज में राडार जो है कोई भी कन्वेक्टिव सेल जो है जो कि ये हैवी रेनफॉल जो एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल इवेंट को जो देता है उसको मॉनिटर करने के लिए राडार एक बहुत उपयोगी है। तो पर्टिकुलरली जब हम जो जगह में जो हमारा ऑब्जर्वेशन दूसरा ऑब्जर्वेशन का कोई मैकेनिज्म है नहीं, जैसे पहाड़ी एरिया में उत्तराखंड एरिया ये एरिया में भी वो राडार जो बहुत हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होता है कि उसको मॉनिटर करेंगे। जैसे आपने बताया नाव कास्टिंग, तो ये राडार डाटा लेके हम जो डिस्ट्रिक्ट लेवल नाव कास्टिंग देते हैं अभी हर 3 घंटा में हम अपना नाव कास्ट देते हैं और अपडेट करते हैं। जो भी डिस्ट्रिक्ट एरिया में अगर कोई भी खतरा है तो उसमें रेड कलर वार्निंग दिया जाता है। तो जैसे कि आजकल ये हो रहा है कि आकाशीय बिजली में बहुत सारे लॉस ऑफ लाइफ हो रहा है, मैंने बहुत सारे कैजुअलिटी जो डेथ हो रहा है आकाशीय बिजली में होता है। तो ये मानसून टाइम में जो क्लाउड होता है, क्लाउड टू क्लाउड भी बिजली होता है, क्लाउड टू ग्राउंड भी बिजली होता है। तो जो क्लाउड टू ग्राउंड वाला जो बिजली स्ट्राइक होता है उसमें बहुत सारा जानमान का क्षति होता है। तो ये जो लाइटनिंग जो स्ट्राइक हो रहा है, डेथ हो रहा है, उसमें हमारा नावकास्टिंग काफी हेल्पफुल है। तो हमने पहले इतना हमारा नहीं था, जो नावकास्टिंग में हमने जितना इम्प्रूवमेंट किया है तो राडार नेटवर्क के चलते हमारे पास जो आपने और भी बताया AI ML भी है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी उसको भी हम यूज कर रहे हैं। तो उससे क्या होता है कि कोई भी अगर सेल जो कन्वेक्टिव सेल बनते हैं राडार में दिखता है वो धीरे धीरे मूव होता है। वो अगर 2 घंटा पहले अगर इसी जगह में है तो ये हमारे दिल्ली की तरफ आ रहा है, 2 घंटा के बाद यहाँ हो जाएगा, तो हमने 2 घंटा पहले ये वार्निंग दे देते। तो ये छोटा सा शॉर्ट टर्म में जो वार्निंग भी है काफी हद तक जो पॉपुलर सिटी है इसमें के लिए भी बहुत यूजफुल होता है, क्योंकि लोग ट्रैफिक जाम हो जाता है या आप जैसे देखे होंगे कि बारिश के कारण। तो ये सब चीज के लिए हमारा राडार जो नेटवर्क राडार जो इंटेंसिटी जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं राडार रिलेटेड वो सब यूजफुल होता है। और दूसरी बात जो गाँव के लिए भी जो खेती में भी काम करते हैं वो एक्सपोज होते हैं तो उसको लाइटनिंग का भी थोड़ा सा इंडिकेशन मिलना चाहिए। अगर उनको थोड़ा सा 2 घंटा पहले भी अगर लाइटनिंग स्ट्राइक होने का अगर संभावना अगर बताया जाता है तो वो क्या करते हैं कि उस जो सेफ एरिया में चले जाते हैं। तो वो सब चीज ये एक हिस्से में काफी मदद करता है हमारा राडार एंड उसका जो हमारा जो टेक्निक है।
1: प्रोफेसर सूर्य प्रकाश, जैसा कि डॉक्टर पटनायक बता रहे हैं कि थंडर स्ट्रॉम को लेकर भी जानकारी प्रदान की जाती है जिससे कि लोग सेफ जगह पर चले जाएं, आपसे इसी विषय पर समझना चाहते हैं कि जो सुरक्षित जगह है उसको लेकर भी बहुत सारी धारणाएं हैं। कुछ लोगों को लगता है कि अगर वो खुले में हैं तो किसी टीन शेड के नीचे चले जाएं या फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े हो जाएं तो वो सुरक्षित रहेंगे। जो किसान खेतों में रहते हैं वो कहां जाएं, चूंकि आसपास कोई छिपने की जगह नहीं होती है, पक्की छत नहीं होती है, तो वो क्या करें। और एक और बड़ा मिथ है, जो लोग समझते हैं कि वो घर में हैं उन्हें लगता है कि उन्हें किसी तरह की सावधानी बरतने की जरूरत नहीं है, वो घर में हैं वो सुरक्षित हैं। तीनों ही स्थितियों के लिए आप आकाशवाणी के श्रोता जो ये कार्यक्रम सुन रहे हैं उन्हें क्या सलाह देंगे?
0: बहुत ही संबंधित सवाल है, क्योंकि जब भी हमारे भारी वर्षा होती है उसके साथ थंडरस्टॉर्म्स और लाइटनिंग ये दोनों इवेंट्स भी अक्सर होती हैं, पर्टिकुलरली क्लाउड वर्स के टाइम पर। तो उस समय में बड़े ये ध्यान देने की बात है कि आप अगर खेत में हैं किसान लोग तो वो पेड़ तले ना जाएं। पेड़ तले बिजली लगने की जगह घटनाएं ज्यादा होती हैं, और अगर आप खुले मैदान में दोनों पैर एक साथ इकट्ठे करके उड़कू बैठ जाते हैं जैसे

0: लगा बैठता है तो उसमें करंट लगने की घटनाएं कम होती हैं। लाइटनिंग से हमारे यहाँ काफी डेथ्स होती रही हैं और इसकी मेन वजह जैसे आपने कहा कि आप टीन शेड के नीचे चले गए जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव मटेरियल है तो वहां पर करंट लगने का खतरा ज्यादा होता है। अगर ग्राउंड से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है और आपके जरिए अगर करंट पास करता है तो आपके बॉडी पे इम्पैक्ट्स हो सकते हैं। तो अक्सर लोग सोचते हैं छाता ले लें पेड़ के नीचे चले जाएं तो हम सेफ हैं, परंतु ऐसे में सेफ्टी आपके एक्शन पर है कि आप अगर उस समय में खुले में हैं और पास में नजदीक कोई सेफ शेल्टर नहीं है तो आपको वहीं पर उकड़ू दोनों पैर जोड़ के बैठना चाहिए ताकि आपके बॉडी के थ्रू मिनिमम लेवल से करंट पास हो और सीधा ग्राउंड में चला जाए। तो ये सबसे बड़ी प्रिकॉशन होती है। और दूसरा, शहरों की हम बात कर रहे हैं, शहरों में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज और इलेक्ट्रिकल डिवाइसेज हम बहुत यूज करते हैं। जब भी लाइटनिंग होती है तो उसमें अक्सर ये संभावना होती है कि हमारे जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स के जरिए जो लाइटनिंग का करंट फ्लो कर जाए और आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस भी फेल हो सकते हैं। तो कभी भी लाइटनिंग होती है तो उसमें अक्सर हमें प्लग्स को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के निकाल देना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि घर में लाइटनिंग की वजह से कोई करंट का प्रवाह ना हो। तो ये दोनों प्रिकॉशंस बहुत जरूरी हैं। और अगर आप गाड़ी में जा रहे हैं और ड्राइव कर रहे हैं तो भी आप सेफ साइड में होकर अपनी गाड़ी खड़ी कर दें ताकि आपको करंट की संभावना कम से कम रहे।
1: डॉक्टर पटनायक, आकाशवाणी के श्रोता जो ये कार्यक्रम सुन रहे हैं वो आपसे जरूर जानना चाहेंगे कि अलग अलग राज्यों में इस समय मॉनसून की वर्तमान स्थिति अलग अलग है। अगले 15 दिनों या अगले एक महीने की हम बात करें तो भारत के कुछ राज्यों का जिक्र करते हुए अगर समझा पाए आप कि मॉनसून की क्या स्थिति रहने वाली है।
2: आज तो 29 जुलाई है, आज अगर हम देखेंगे तो एक मानसून टाइम में जो बारिश देता है, मानसून डिप्रेशन सिस्टम जो है बेय बंगाल के से होते हुए उड़ीसा, उड़ीसा के बाद इंटीरियर उड़ीसा, थोड़ा सा झारखंड एरिया, छत्तीसगढ़ तरफ मूव हो रहा है। तो आज अभी वो थोड़ा सा छत्तीसगढ़ के तरफ भी एंटर हो रहा है। इससे चलते काफी जो वेस्टर्न ओडिशा में है, इंटीरियर ओडिशा में आज जो है रिपोर्ट हो गया, बहुत बारिश रिपोर्ट हुआ है, एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल भी हो गया है, कुछ कुछ जगह में 300 मिलीमीटर रेनफॉल भी ज्यादा हुआ है, उससे भी ज्यादा हुआ है, बहुत सारे स्टेशन में है 200 से भी ज्यादा रेनफॉल हुआ है, तो एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल है। तो ये एक बहुत हैवी रेनफॉल जो है वहाँ उसी एरिया में काफी फ्लडिंग उसके भी चलते, और वो थोड़ा सा वेस्टवर्ड जाएगा तो छत्तीसगढ़ एरिया में भी हमने चेतावनी दिया है, थोड़ा सा विदर्भ एरिया में भी चेतावनी दिए है। तो ये जो अभी एक्टिव जो मानसून सेंट्रल इंडिया मध्य भाग में है एक दो दिन चलेगा, वो जब तक ये सिस्टम थोड़ा सा वीक ना हो जाए, तब जब ये उसके बाद थोड़ा सा हो सकता है कि मानसून ट्रफ ऊपर जाएगा तो थोड़ा सा नॉर्थ इंडिया के पार्ट में भी थोड़ा सा बारिश होगा। जुलाई महीना एंड होने वाला है, जुलाई तो आप रेनी मंथ है, आपको पता है जुलाई में सबसे ज्यादा बारिश जो होता है हमारा मानसून सीजन में जुलाई महीना में होता है, और इस बार भी जुलाई खराब नहीं हुआ है, जुलाई अच्छा हुआ है। 1 जुलाई से अगर आज दिन तक देखेंगे तो हमारा जस्ट 1% रेनफॉल कम हुआ है, जून में हमारा 38% कम हुआ था। तो जुलाई में इतना कम होने के कारण आज के डेट में हम जो कंट्री का रेनफॉल है फर्स्ट जून से अगर हम 28 जुलाई का मानेंगे तो लगभग 15% दिन थोड़ा सा कम हुआ है, जो कि जो जून में जो कम हुआ था वो हमको जुलाई में काफी हद तक मेकअप हो गया है। लेकिन आप यस जो जैसा बता रहे हैं कि रेनफॉल जब देता है तो आपका हैवी रेनफॉल देता है, बाढ़ वगैरह भी सीमित आता है। और दूसरा, अगले महीने के हर दिन हम फोरकास्ट करते हैं 7 दिन के लिए, जैसे कि वार्निंग देते हैं पर्टिकुलरली, लेकिन महीने का जो फोरकास्ट है हम वो महीने में एंड में करेंगे, जुलाई का एंड में अभी आ गया है तो 31 जुलाई को हम अगस्त के लिए ओवरऑल एक फोरकास्ट भी बनाएंगे कि अगस्त मंथ कैसे रहने वाला है। और बाकी हमारा जो रेगुलर फोरकास्ट है हर दिन जो डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए चाहिए सिस्टम वगैरह वार्निंग वगैरह वो देते रहेंगे, एंड हर हफ्ते अगर गुरुवार को हमने एक 4 हफ्ते का फोरकास्ट भी देते हैं तो वो भी हमारे आने वाले गुरुवार को ये हो जाएगा, एंड उसके बाद फिर हम मंथली फोरकास्ट भी देते हैं। तो इसलिए हमारे जो फोरकास्ट है सारा डिफरेंट टाइम स्केल के देंगे। अभी फिलहाल मानसून अगर कंट्री एज ए होल अगर देखेंगे आज तक थोड़ा सा मानसून रेनफॉल कम हुआ है, 15% कम रेनफॉल हुआ है।
1: सूर्य प्रकाश जी, आकाशवाणी के इन कार्यक्रमों की कोशिश यही होती है कि श्रोताओं की जिज्ञासाओं को हम समाधान करें और साथ ही साथ समस्याओं का समाधान भी उन तक पहुंचाएं। मॉनसून में बहुत सारे लोग जो होते हैं वो पहाड़ी इलाकों में यात्रा करना पसंद करते हैं, आपने भी कुछ समय पहले उसका जिक्र किया था, वहां अचानक लैंडस्लाइड आ जाती है या फ्लैश फ्लड का खतरा ज्यादा होता है। ऐसे में आपसे जानना चाहेंगे कि सैलानियों या स्थानीय लोग जो वहां की यात्रा की योजना बना रहे हैं या जो वहां हैं, फंस जाने की स्थिति में तुरंत क्या सुरक्षात्मक कदम वो उठाएं?
0: भूस्खलन काफी मात्रा में और कई जगहों पर पहाड़ी पर्वतीय क्षेत्रों में होते हैं, और उसकी जब भी ऐसा घटना में आप अगर उसमें फंस जाते हैं तो सबसे पहला तो

0: ये कि आप अपना बचाव के लिए आपको पता होना चाहिए कि अगर आप फंस गए हैं तो, अगर गाड़ी में हैं तो गाड़ी को जो भूस्खलन वाला क्षेत्र है उसे या तो पहले रोक दें या तुरंत आगे जा निकलने के बाद ही रोकें, बीच में नहीं रोकेंगे। ऐसे में भूस्खलन में दबने की चांसेस बढ़ जाते हैं अगर आपकी गाड़ी भूस्खलन क्षेत्र में खड़ी रहती है। दूसरा, अगर आप पैदल जा रहे हैं और अगर कहीं पर भूस्खलन में आप फंस जाते हैं तो आपको नियरेस्ट जो सुरक्षित बाउंड्री है उसकी तरफ जाना चाहिए, आप स्लोप एरिया में, नीचे की तरफ नहीं। लोग, आपने देखा होगा अभी जो पीछे धराली में हुआ था, लोग नीचे की तरफ भाग रहे थे, जिधर भूस्खलन चल रहा था उधर ही उसी दिशा में लोग भी भाग रहे थे, तो ऐसे में दबने के जो है चांसेस बढ़ जाते हैं। और तीसरा, अगर आप दर्शक हैं और आप देख रहे हैं कि कोई फंस गया है या कोई गाड़ी फंस गई है तो तुरंत हमें 112 112 पर फोन कर देना चाहिए ताकि सहायता करने वाले जो हमारे आपदा मोचन बल के कर्मी हैं वो वहां पहुंच जाएं और समय पर उनको रेस्क्यू कर पाएं। तो ये सब चीजों का ध्यान बहुत देना जरूरी है। और एक सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण वो जो है, भूस्खलन में ज्यादातर कैजुअलिटीज 2 वजह से होती हैं। एक, कोई पत्थर सिर पे आके गिर गया, हेड इंजरी हो जाती है। तो आपको जैसे भूकंप में हम हेड को प्रोटेक्ट करते हैं, ऐसे ही भूस्खलन में भी अगर आपदा में फंस जाते हैं तो अपने सिर को हमेशा बचा के रखें, उस सिर पे हाथ डाल लें या कोई और कुछ रख लें ताकि आपको हेड इंजरी नहीं हो। दूसरा, अगर मलबे में फंस जाते हैं तो मलबे में एक हम कहते हैं एस्फिक्सिएशन होता है, मतलब आपके बॉडी के अंदर मलबा चला जाता है और आपको सांस लेने के लिए दिक्कत आने लग जाती है और उसकी वजह से डेथ्स होती हैं। तो ऐसे में कभी भी ऐसा हो तो आपको हमेशा अपना अंदाज लगाना है कि आप कैसे फंसे हैं, ऊपर हैं या नीचे हैं। अगर आप थूकेंगे तो ग्रेविटी से थूक हमेशा आपकी ठोड़ी की तरफ आएगा, और अगर नाक की तरफ जा रहा है इसका मतलब आप उल्टे हो गए हैं। भूस्खलन में फंसने में कई बार अपने घर में है और घर पूरा उलट पलट जाता है भूस्खलन के दौरान, तो पहले तो अपनी परिस्थिति की जानकारी लेनी है कि हम सही दिशा में ऊपर की तरफ हैं या उलट गए हैं। ऐसे कई सारे प्रिकॉशंस को हमें देना है और ध्यान रखना है ताकि घबराहट ना हो और आप अपने बचाव के लिए उपाय कर पाए। इससे पूर्व आपको उनके संकेत भी देखने हैं। भूस्खलन जब भी शुरू होता है, वर्षा के दौरान जो पानी की वजह से भूस्खलन होते हैं, वो अक्सर पहले थोड़ी थोड़ी मिट्टी निकलती है फिर बड़े पत्थर खिसकते हैं। तो अगर कहीं से ऐसे मिट्टी खिसक रही है और बह रही है और आ रही है तो हमेशा हम उस क्षेत्र में ध्यान पूर्वक जाएं, और जो हमारे डिपार्टमेंट के लोग हैं वो भी जहां जहां ऐसा भूस्खलन का खतरा होता है वहां पे बोर्ड लगाते हैं कि यहाँ भूस्खलन या भूधसाव की संभावनाएं हैं, तो उन क्षेत्र में वर्षा के दौरान जाने के लिए कोशिश ना करें। यही हमारे बचाव के उपाय हैं।
1: मानसून सिर्फ बादलों का बरसना भर नहीं है, यह हमारी मिट्टी की सौंधी महक है, हमारे किसानों की उम्मीद है और हमारी नदियों की रवानी है। लेकिन प्रकृति जब अपनी रौ में आती है तो एक बात हमें साफ समझा जाती है कि तैयारी ही बचाव है और जागरूकता ही हमारी सबसे बड़ी ढाल। आज की इस बेहद महत्वपूर्ण चर्चा से स्पष्ट है कि मौसम विज्ञान की सटीक तकनीक और आपदा प्रबंधन की मुस्तैदी तब तक अधूरी है जब तक हम और आप एक सजग नागरिक बनकर अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाते। जरा सी सावधानी, सही जानकारी और आपदा के समय एक दूसरे का थमा हुआ हाथ किसी का घर बहने से बचा सकता है, किसी की जिंदगी बचा सकता है। आज की इस चर्चा में भाग लेने के लिए डॉक्टर पटनायक आपका, प्रोफेसर सूर्य प्रकाश आपका बहुत बहुत आभार।
2: नमस्कार।
0: धन्यवाद आपका भी।
3: अभी आप सुन रहे थे मॉनसून में आपदाओं से बचाव के उपाय और जन जागरूकता पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे थे भारत मौसम विज्ञान विभाग में वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर DR पटनायक और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान में प्रोफेसर सूर्य प्रकाश। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आनंद श्रीवास्तव। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप News on AIR और YouTube चैनल News on AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है AIR NSDTalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
4: चर्चा का विषय है।
5: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। लोकसभा

0: ने लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक में 10 वर्ष तक के कारावास, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और अपराधियों की संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश को दैनिक सुनवाई के लिए विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने का आदेश दिया गया है। अपराधों की जाँच पुलिस थाने में सूचना दर्ज होने की तारीख से 2 महीने के भीतर पूरी की जानी चाहिए। मुकदमे की सुनवाई आरोप पत्र दाखिल होने की तारीख से 3 महीने के भीतर पूरी होनी चाहिए। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि यह संशोधन कानून को और अधिक सख्त बनाने तथा त्वरित न्याय दिलाने के लिए किया गया है। डॉक्टर सिंह ने कहा कि नया विधेयक छात्रों और युवाओं के कल्याण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। डॉक्टर सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री ने टास्क फोर्स का भी गठन किया है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित होने पर विद्यार्थियों और युवा अभ्यर्थियों को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री वैष्णव ने कहा कि ये विधेयक परीक्षा में होने वाली अनुचित गतिविधियों पर सख्त अंकुश लगाएगा। राज्यसभा ने राष्ट्रीय सम्मान की रक्षा के लिए राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक वंदे मातरम को राष्ट्रीय गान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करेगा। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि वंदे मातरम के अपमान के लिए अब 3 वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है। संसद के दोनों सदनों में आज हुई कार्यवाही पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट।
1: संसद के दोनों सदनों में आज महत्वपूर्ण विधायी कार्य संपन्न हुए। हालांकि कार्यवाही के दौरान कई बार व्यवधान भी देखने को मिला। लोकसभा में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 प्रस्तुत किया। इसके अलावा लोकसभा ने एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित विधेयक की जाँच कर रही संयुक्त संसदीय समिति का कार्यकाल संसद के शीतकालीन सत्र 2026 के अंतिम सप्ताह के पहले दिन तक बढ़ाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। नीट मुद्दे को लेकर छात्रों के प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई के विरोध में विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार बाधित हुई। इस कारण लोकसभा और राज्यसभा में प्रश्नकाल नहीं चल सका। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 अगस्त को नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान का शुभारंभ करेंगे। ये नशाखोरी के खिलाफ 100 सप्ताह का राष्ट्रव्यापी जन भागीदारी आंदोलन है। इस पहल का लक्ष्य जागरूकता, सामुदायिक सहभागिता और निरंतर जन भागीदारी को बढ़ावा देकर नशा मुक्त भारत के निर्माण के लिए युवाओं को सामूहिक राष्ट्रीय मिशन में एकजुट करना है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अशांति लगातार बढ़ रही है। मरने वाले प्रदर्शनकारियों की संख्या बढ़कर 40 हो गई है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय ने प्रदर्शनकारियों की मौत पर चिंता व्यक्त की है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त के प्रवक्ता जेरेमी लॉरेंस ने कहा कि एक नागरिक समाज संगठन को अपराधी घोषित करना और सभाओं पर कड़े प्रतिबंध लगाना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सभा और संगठन के अधिकारों के उल्लंघन के बारे में गंभीर चिंताएं पैदा करता है। ओडिशा में लगातार जारी तेज बारिश और नदियों में आए उफान के ने राज्य के विशाल भूभाग को गंभीर मानवीय संकट में डाल दिया है। इस कारण 4 लोगों की मृत्यु हो गई और हजारों लोग फंसे हुए हैं। प्रशासन ने बाढ़ की बिगड़ती और बेहद अस्थिर स्थिति के मद्देनजर बचाव और राहत कार्यों को तेज कर दिया है। छत्तीसगढ़ में पिछले 2 दिन से जारी मूसलाधार वर्षा के कारण कई जिलों में जनजीवन प्रभावित है। बस्तर मंडल के साथ महासमुंद, गरियाबंद और धमतरी सहित विभिन्न जिलों में कई नदियां उफान पर हैं। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय मुक्केबाज अंकुश, साक्षी, अरुंधति, सचिन और नरेंद्र ने सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। नरेंद्र ने 90 किलोग्राम, अंकुश ने 80 किलोग्राम और सचिन ने 70 किलोग्राम भार वर्ग के सेमीफाइनल में प्रवेश कर पदक पक्का किया। वहीं महिला वर्ग में अरुंधति चौधरी ने 70 किलोग्राम और साक्षी चौधरी ने 51 किलोग्राम भार वर्ग के सेमीफाइनल में जगह बनाई। भारतीय मुक्केबाजों ने अब तक 9 पदक सुनिश्चित कर लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams.

0: मुख्य समाचार। पाकिस्तान के अवैध व कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में मरने वाले प्रदर्शनकारियों की संख्या बढ़कर 40 हुई। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय ने चिंता व्यक्त की। भारत ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य में कई समुद्री जहाजों पर हाल के हमलों की कड़ी निंदा की। कहा, अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों में व्यापारिक आवाजाही जल्द बहाल हो। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कोर ने जॉर्डन में अमरीकी हवाई अड्डे और सेंट्रल कमांड मुख्यालय को निशाना बनाने का दावा किया। जापान के दक्षिण पश्चिमी हिस्से में आए भूकंप में मरने वालों की संख्या बढ़कर 18 हुई। और राष्ट्रमंडल खेलों में 9 भारतीय मुक्केबाजों ने सेमीफाइनल में जगह बनाकर पदक पक्के किए। अब समाचार विस्तार से। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अशांति लगातार बढ़ रही है। मानवाधिकार संगठन ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय से हस्तक्षेप करने का आह्वान किया है। ये आह्वान पाकिस्तानी सेना की अधिकृत क्षेत्र में शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर बर्बर गोलीबारी की खबरों के बाद किया गया है। इस गोलीबारी में 40 से अधिक नागरिक मारे गए और कई अन्य घायल हो गए। ये हत्याएं 27 जुलाई को रावलकोट से मुजफ्फराबाद की ओर संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी के शांतिपूर्ण मार्च के फिर से शुरू होने के बाद हुई। एक रिपोर्ट।
1: संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त के प्रवक्ता जेरेमी लॉरेंस ने कहा कि एक नागरिक समाज संगठन को अपराधी घोषित करना और सभाओं पर कड़े प्रतिबंध लगाना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सभा और संगठन के अधिकारों के उल्लंघन के बारे में गंभीर चिंताएं पैदा करता है। इस बीच पाकिस्तानी अधिकारियों ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में 13 निजी स्कूलों का पंजीकरण रद्द कर दिया है। इन स्कूलों के प्रबंधन, कर्मचारियों और छात्रों ने विरोध प्रदर्शनों में भाग लिया था। ये विरोध प्रदर्शन पाकिस्तान के दशकों पुराने नियंत्रण को सीधी चुनौती दे रहे हैं। पाकिस्तानी सेना की बार बार दमनात्मक कार्रवाई में कई नागरिक मारे गए और कई अन्य घायल हुए हैं। क्षेत्र में सख्त नाकाबंदी और कर्फ्यू लागू है तथा संचार व्यवस्था पूरी तरह से ठप है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: ब्रिटिश कश्मीरों ने आज बर्मिंघम स्थित पाकिस्तानी वाणिज्य दूतावास के बाहर पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर POJK में नागरिकों की कथित हत्याओं के विरोध में प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने हिंसा में पाकिस्तान की संलिप्तता का आरोप लगाया और POJK की स्वतंत्रता की मांग की। भारत ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य में हाल में हुए कई समुद्री जहाजों पर हमलों की कड़ी निंदा की है। भारत ने कहा है कि इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों और नागरिक बुनियादी ढांचे को निशाना बनाए जाने की घटनाएं तुरंत बंद होनी चाहिए। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वत नैनी हरीश ने कहा कि पश्चिम एशिया में हमले फिर से शुरू होना चिंता का विषय है। श्री हरीश ने इस महीने हॉर्मुज से गुजरने के दौरान GFS गैलेक्सी, MT अल बहिया और MT मोम्बासा सहित कई जहाजों पर हुए हमलों की निंदा की। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों पर नौवहन और व्यापारिक स्वतंत्रता शीघ्र बहाल की जानी चाहिए। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कोर IRGC ने आज दावा किया कि उसके एरोस्पेस फोर्स ने जॉर्डन स्थित एक अमरीकी हवाई अड्डे और अमरीकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम मुख्यालय को बैलिस्टिक मिसाइलों से निशाना बनाया। एक रिपोर्ट।
2: इस्लामिक रिपब्लिक न्यूज एजेंसी IRNA के अनुसार ये हमले ईरान पर अमरीकी सैन्य हमलों के जवाब में किए गए थे। IRGC ने अमरीकी धमकियों, अवैध और शत्रुतापूर्ण गतिविधियों के समाप्त होने तक अभियान जारी रखने का संकल्प लिया है। ये दावा ईरान और अमरीका के बीच सैन्य झड़पों के बाद पश्चिम एशिया में नए सिरे से बढ़े तनाव के बीच आया है। इस बीच अमरीकी सेना ने कहा है कि उसने ईरान से दागी गई कई बैलिस्टिक मिसाइलों को रोका, जिसे उसने क्षेत्र में अमरीकी पर अचानक हमले का प्रयास बताया। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने कहा कि ईरान के IRGC ने पश्चिम एशिया में अमरीकी बलों पर अचानक कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। IRGC ने कहा कि सभी मिसाइलों को रोक दिया गया और अमरीकी बल हाई अलर्ट पर हैं। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
0: विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। जापान के दक्षिण पश्चिमी हिस्से में आए 7

0: 1.1 तीव्रता के भीषण भूकंप में मरने वालों की संख्या बढ़कर 18 हो गई है। राहत और बचाव दल बचाव कार्य में जुटे हैं। इस भूकंप में कम से कम 62 लोग घायल हुए हैं, जबकि कई अन्य अब भी लापता हैं। एक रिपोर्ट।
1: कल क्यूशू द्वीप के कुमामोतो प्रांत में आए इस भूकंप से बड़े पैमाने पर तबाही हुई। काशिमा शहर के एओन मॉल में गैस विस्फोट के बाद दूसरी मंजिल का एक हिस्सा ढह गया। इस हादसे में 4 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि मलबे में फंसे लोगों की तलाश जारी है। भूकंप के बाद लगभग 34,900 घरों में बिजली और करीब 15,000 घरों में पानी की आपूर्ति बाधित है। 8,800 से अधिक लोग राहत शिविरों में रह रहे हैं। प्रशासन आवश्यक सेवाओं को बहाल करने में जुटा हुआ है। वहीं बुलेट ट्रेन सेवाएं अभी भी निलंबित हैं और कुछ उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। हालांकि कुमामोतो हवाई अड्डे पर परिचालन फिर से शुरू हो गया है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने दक्षिण पश्चिमी जापान के कुमामोतो इलाके में कल आए जबरदस्त भूकंप पर चिंता व्यक्त की है। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने वहां के लोगों और सरकार के प्रति भारत का समर्थन और एकजुटता व्यक्त की। उन्होंने भूकंप से प्रभावित सभी लोगों की सुरक्षा और जल्द ठीक होने की भी प्रार्थना की। हॉकी इंडिया ने आज 20वें एशियाई खेलों के लिए 20 सदस्यीय भारतीय पुरुष हॉकी टीम की घोषणा कर दी है। हरमनप्रीत सिंह भारतीय टीम के कप्तान होंगे। ये प्रतियोगिता 19 सितंबर से 4 अक्टूबर के बीच जापान के आइची नागोया में खेली जाएगी। सुनते हैं विशाल की ये रिपोर्ट।
2: भारतीय टीम में अनुभवी अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों और उभरती प्रतिभाओं का मिश्रण है। भारतीय टीम की नजर 2023 के हांगझोउ एशियाई खेलों में कप्तान हरमनप्रीत सिंह की अगुवाई में जीते गए स्वर्ण पदक का सफलतापूर्वक बचाव करने पर होगी। भारत के सबसे अनुभवी हॉकी खिलाड़ी और मिडफील्डर मनप्रीत सिंह को टीम में अनुभव और संतुलन देने के लिए शामिल किया गया है। गोलकीपिंग की जिम्मेदारी मोहित एचएस और सूरज करकेरा संभालेंगे। डिफेंस यूनिट में जर्मनप्रीत सिंह, हरमनप्रीत सिंह, अमित रोहिदास, जुगराज सिंह, संजय सुमित और यशदीप सिवाच को टीम में जगह दी गई है। भारत की मिडफील्ड में राजेंद्र सिंह, राजकुमार पाल, हार्दिक सिंह, मनप्रीत सिंह, नीलाकांता शर्मा और विवेक सागर प्रसाद होंगे, जबकि फॉरवर्ड लाइन में दिलप्रीत सिंह, शिलानंद लाखड़ा, सुखजीत सिंह, मनदीप सिंह और अभिषेक शामिल हैं। भारत को पूल ए में मेजबान जापान, कोरिया, बांग्लादेश, श्रीलंका और इंडोनेशिया के साथ रखा गया है।
0: 6-6 टीमों के 2 पूल में बंटी 12 टीमें खिताब के लिए मुकाबला करेंगी। सभी मैच काका मेघहारा के गिफू प्री फ्रैक्चुअल ग्रीन स्टेडियम में खेले जाएंगे। भारत अपने अभियान की शुरुआत 20 सितंबर को इंडोनेशिया के खिलाफ करेगा। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय मुक्केबाज अंकुश, साक्षी, अरुधंती, सचिन और नरेंद्र ने सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। नरेंद्र ने 90 किलोग्राम, अंकुश ने 80 किलोग्राम और सचिन ने 70 किलोग्राम भारवर्ग के सेमीफाइनल में प्रवेश कर पदक पक्का किया, जबकि महिला वर्ग में अरुधंती चौधरी ने 70 किलोग्राम और साक्षी चौधरी ने 51 किलोग्राम भारवर्ग के सेमीफाइनल में जगह बनाई। भारतीय मुक्केबाजों ने अब तक 9 पदक सुनिश्चित कर लिए हैं। पदक तालिका में भारत 2 स्वर्ण, 7 रजत और 3 कांस्य पदकों के साथ 9वें स्थान पर है। बाघों के संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने, प्राकृतिक आवासों की रक्षा करने और बाघों की घटती संख्या की रोकथाम के लिए आज विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जा रहा है। इसकी स्थापना नवंबर 2010 में रूस के सेंट पीटर्सबर्ग बाघ शिखर सम्मेलन के दौरान हुई थी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर वन्य जीव प्रेमियों को शुभकामनाएं दी हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में मरने वाले प्रदर्शनकारियों की संख्या बढ़कर 40 हुई। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय ने चिंता व्यक्त की। भारत ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य में कई समुद्री जहाजों पर हाल के हमलों की कड़ी निंदा की। कहा, अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों में व्यापारिक आवाजाही जल्द बहाल हो। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कोर ने जॉर्डन में अमरीकी हवाई अड्डे और सेंट्रल कमांड मुख्यालय को निशाना बनाने का दावा किया। जापान के दक्षिण पश्चिमी हिस्से में आए भूकंप में मरने वालों की संख्या 18 हुई और राष्ट्रमंडल खेलों में 9 भारतीय मुक्केबाजों ने सेमीफाइनल में जगह बनाकर पदक पक्के की। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। I am Reshma Tiwari with the World News.

आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रवि कपूर। लोकसभा ने लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक में 10 वर्ष तक के कारावास, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और अपराधियों की संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश को दैनिक सुनवाई के लिए विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने का आदेश दिया गया है। अपराधों की जांच पुलिस थाने में सूचना दर्ज होने की तारीख से 2 महीने के भीतर पूरी की जानी चाहिए। मुकदमे की सुनवाई आरोप पत्र दाखिल होने की तारीख से 3 महीने के भीतर पूरी होनी चाहिए। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि यह संशोधन कानून को और अधिक सख्त बनाने तथा त्वरित न्याय दिलाने के लिए किया गया है। डॉक्टर सिंह ने कहा कि नया विधेयक छात्रों और युवाओं के कल्याण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। डॉक्टर सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री ने टास्क फोर्स का भी गठन किया है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित होने पर

0: विद्यार्थियों और युवा अभ्यर्थियों को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री वैष्णव ने कहा कि ये विधेयक परीक्षा में होने वाली गड़बड़ियों और अनुचित गतिविधियों पर सख्त अंकुश लगाएगा। राज्यसभा ने राष्ट्रीय सम्मान की रक्षा के लिए राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक वंदे मातरम को राष्ट्रीय गान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करेगा। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि वंदे मातरम के अपमान के लिए अब 3 वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है। संसद के दोनों सदनों में आज हुई कार्यवाही पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट।
1: संसद के दोनों सदनों में आज महत्वपूर्ण विधायी कार्य संपन्न हुए, हालांकि कार्यवाही के दौरान कई बार व्यवधान भी देखने को मिला। लोकसभा में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 प्रस्तुत किया। इसके अलावा लोकसभा ने एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित विधेयक की जाँच कर रही संयुक्त संसदीय समिति का कार्यकाल संसद के शीतकालीन सत्र 2026 के अंतिम सप्ताह के पहले दिन तक बढ़ाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। नीट मुद्दे को लेकर छात्रों के प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई के विरोध में विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्रवाई कई बार बाधित हुई। इस कारण लोकसभा और राज्यसभा में प्रश्नकाल नहीं चल सका। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन से आज संसद भवन में स्काई रूट एयरोस्पेस के सह संस्थापक और सीईओ पवन चंद्रा ने अपनी टीम के साथ मुलाकात की। इस मुलाकात के बारे में उपराष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पर जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बैठक में स्काई रूट एयरोस्पेस की प्रेरणादायक यात्रा, विक्रम एक मिशन और भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र के भविष्य को लेकर कंपनी की योजनाओं पर चर्चा हुई। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अशांति लगातार बढ़ रही है। मरने वाले प्रदर्शनकारियों की संख्या बढ़कर 40 हो गई है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय ने प्रदर्शनकारियों की मौत पर चिंता व्यक्त की है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त के प्रवक्ता जेरेमी लॉरेंस ने कहा है कि एक नागरिक समाज संगठन को अपराधी घोषित करना और सभाओं पर कड़े प्रतिबंध लगाना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सभा और संगठन के अधिकारों के उल्लंघन के बारे में गंभीर चिंताएं पैदा करता है। ओडिशा में लगातार जारी तेज बारिश और नदियों में आए उफान ने राज्य के विशाल भूभाग को गंभीर मानवीय संकट में डाल दिया है। इस कारण 4 लोगों की मृत्यु हो गई है और हजारों लोग फंसे हुए हैं। प्रशासन ने बाढ़ की बिगड़ती और बेहद अस्थिर स्थिति के मद्देनजर बचाव और राहत कार्यों को तेज कर दिया है। ताइपे ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत के खिलाड़ियों ने शानदार शुरुआत की है। पुरुष सिंगल्स में एचएस प्रणॉय, थारुन मन्नेपल्ली और किरण जॉर्ज ने अपने अपने मुकाबले जीतकर दूसरे दौर में जगह बना ली है। महिला सिंगल्स में उन्नति हुड्डा, तान्या हेमंत, अनमोल खरब और तन्वी शर्मा ने भी जीत दर्ज कर अगले दौर में प्रवेश कर लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

भाई आज पूरे दिन हल्की हल्की बारिश होती रही तो खोया खोया चांद इन बादलों में ज़रूर होगा, है ना। और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत मेरे मनमीत, और एक बार फिर से मैं रितिका आप सभी का स्वागत करती हूँ आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल पर। ১৯৬০ में आई फिल्म काला बाजार से आपने ये गीत सुना, एसडी बर्मन का संगीत, मोहम्मद रफी की आवाज, और इस गीत को लिखा शैलेंद्र ने।

11:22 ஆகுது. நிகழ்ச்சியை நடத்த

0: இன்னும் சில நொடிகளில் தொடர்வது ஹிந்தியிலும் ஆங்கிலத்திலும் செய்திகள். டெல்லி அஞ்சல்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே ரவி கபூர். लोकसभा ने लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक में 10 वर्ष तक के कारावास, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और अपराधियों की संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश को दैनिक सुनवाई के लिए विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने का आदेश दिया गया है। विधेयक में अपराधों की जांच पुलिस थाने में सूचना दर्ज होने की तारीख से 2 महीने के भीतर पूरी की जानी चाहिए। मुकदमे की सुनवाई आरोप पत्र दाखिल होने की तारीख से 3 महीने के भीतर पूरी होनी चाहिए। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि यह संशोधन कानून को और अधिक सख्त बनाने तथा त्वरित न्याय दिलाने के लिए किया गया है। डॉक्टर सिंह ने कहा कि नया विधेयक छात्रों और युवाओं के कल्याण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। डॉक्टर सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री ने टास्क फोर्स का भी गठन किया है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस विधेयक के पारित होने पर विद्यार्थियों और युवा अभ्यर्थियों को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री वैष्णव ने कहा कि यह विधेयक परीक्षा में होने वाली अनुचित गतिविधियों पर सख्त अंकुश लगाएगा। राज्यसभा ने राष्ट्रीय सम्मान की रक्षा के लिए राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक वंदे मातरम को राष्ट्रीय गान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करेगा। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि वंदे मातरम के अपमान के लिए अब 3 वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि नवाचार, नई तकनीक, स्टार्टअप, लघु एवं मध्यम उद्यम और विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी विनिर्माण भारत की आर्थिक विकास यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। नई दिल्ली में आयोजित 22वें जीआरडी टाटा स्मृति व्याख्यान को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए देश को गुणवत्ता, नवाचार और प्रतिस्पर्धा के क्षेत्र में उत्कृष्टता हासिल करनी होगी। नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने देश में सतत विमानन

0: ईंधन अपनाने और अंतर्राष्ट्रीय विमानन के लिए कार्बन उत्सर्जन कम करने की योजना के क्रियान्वयन की तैयारियों की समीक्षा की। नई दिल्ली में हुई उच्च स्तरीय बैठक में श्री नायडू ने सतत विमानन ईंधन के उत्पादन, मिश्रण, कार्बन गणना और आपूर्ति व्यवस्था से जुड़ी रणनीति की जानकारी ली। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने बताया कि बैठक में सतत विमानन ईंधन उत्पादन परियोजनाओं, प्रमाणन प्रक्रिया और वर्ष 2027 से संभावित मांग को पूरा करने के लिए ईंधन की उपलब्धता पर चर्चा हुई। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अशांति लगातार बढ़ रही है। मरने वाले प्रदर्शनकारियों की संख्या बढ़कर 40 हो गई है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय ने प्रदर्शनकारियों की मौत पर चिंता व्यक्त की है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त के प्रवक्ता जेरेमी लॉरेंस ने कहा कि एक नागरिक समाज संगठन को अपराधी घोषित करना और सभाओं पर कड़े प्रतिबंध लगाना, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सभा और संगठन के अधिकारों के उल्लंघन के बारे में गंभीर चिंताएं पैदा करता है। अमेरिका ने ईरान की 2 समुद्री सेवा कंपनियों पर प्रतिबंध लगाए हैं। इन कंपनियों पर आरोप है कि वे ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के समर्थन से एक बीमा योजना चला रही थीं, जिसके जरिए हॉर्मुज जल डमरू मध्य से गुजरने वाले वाणिज्यिक जहाजों से धन वसूला जाता था। अमरीकी वित्त मंत्रालय ने 8 अन्य कंपनियों पर भी प्रतिबंध लगाए हैं। अमरीकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा कि इन प्रतिबंधों का उद्देश्य ईरान की आर्थिक गतिविधियों पर लगाम लगाना है, जिनसे IRGC को मदद मिलती है। ताइपे ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत के खिलाड़ियों ने शानदार शुरुआत की है। पुरुष सिंगल्स में HS प्रणॉय, थारून मन्नेपल्ली और किरण जॉर्ज ने अपने अपने मुकाबले जीतकर दूसरे दौर में जगह बना ली है। महिला सिंगल्स में उन्नति हुड्डा, तान्या हेमंत, अनमोल खरब और तन्वी शर्मा ने भी जीत दर्ज कर अगले दौर में प्रवेश कर लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Reshma Tiwari. The Lok Sabha has passed the anti-paper leak bill proposing tougher penalties and fast-track courts to curb exam malpractices yesterday. The bill seeks to amend the Public Examinations Prevention of Unfair Means Act 2024. The Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026 incorporates several significant provisions, including stringent penalties such as imprisonment for up to 10 years, fines of up to 10 crore rupees, and the seizure of the properties of convicted offenders. The legislation mandates that every state government and union territory administration establish special fast-track courts for the day-to-day trial. Replying to the discussion on the bill, Minister of State for Personnel, Public Grievances and Pensions, Dr. Jitendra Singh said the amendment in the bill has been brought to make the law more stringent and ensure speedy justice in paper leak cases.
2: The earlier bill and the amendment today are reaffirmation of this government's deep commitment to safeguard the welfare of the students and the youth of this country. And therefore, this bill can be described as a milestone legislation in the history of Indian Parliament.
1: Dr. Singh criticized Leader of Opposition and Congress MP Rahul Gandhi for using unparliamentary language, saying it is inappropriate and unfortunate. Earlier, participating in the discussion, Congress MP Rahul Gandhi said the students' protest on the NEET issue was not violence or hatred, but a deep expression of the youth, and all political parties must respect this expression. After the passage of the bill, the lower house was adjourned till 11 a.m. today. The Rajya Sabha has passed the Prevention of Insults to National Honour Amendment Bill 2026. The bill will further amend the Prevention of Insults to National Honour Act 1971. The proposed legislation seeks to give Vande Mataram the same statutory protection as the national anthem Jana Gana Man. These offences are punishable with imprisonment up to 3 years, a fine, or both. After the passage of the bill, the upper house was adjourned till 11 a.m. today. In Odisha, heavy rains and rising rivers have triggered a severe flood situation.

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रवि कपूर। लोकसभा ने लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक में 10 वर्ष तक के कारावास, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और अपराधियों की संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश को दैनिक सुनवाई के लिए विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने का आदेश दिया गया है। विधेयक में अपराधों की जांच पुलिस थाने में सूचना दर्ज होने की तारीख से 2 महीने के भीतर पूरी की जानी चाहिए। मुकदमे की सुनवाई आरोप पत्र दाखिल होने की तारीख से 3 महीने के भीतर पूरी होनी चाहिए। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि ये संशोधन कानून को और अधिक सख्त बनाने तथा त्वरित न्याय दिलाने के लिए किया गया है। डॉक्टर सिंह ने कहा कि नया विधेयक छात्रों और युवाओं के कल्याण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। डॉक्टर सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री ने टास्क फोर्स का भी गठन किया है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस विधेयक के पारित होने पर विद्यार्थियों और युवा अभ्यर्थियों को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री वैष्णव ने कहा कि यह विधेयक परीक्षा में होने वाली अनुचित गतिविधियों पर अंकुश लगाएगा। राज्यसभा ने राष्ट्रीय सम्मान की रक्षा के लिए राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक वंदे मातरम को राष्ट्रीय गान के सम्मान वैधानिक संरक्षण प्रदान करेगा। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि वंदे मातरम के अपमान के लिए अब 3 वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि नवाचार, नई तकनीक, स्टार्टअप, लघु एवं मध्यम उद्योग और विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी विनिर्माण भारत की आर्थिक विकास यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। नई दिल्ली में आयोजित 22वें JRD टाटा स्मृति व्याख्यान को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए देश को गुणवत्ता, नवाचार और प्रतिस्पर्धा के क्षेत्र में उत्कृष्टता हासिल करनी होगी। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने नई दिल्ली में इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2026 के 10वें संस्करण की थीम जारी की है। एशिया के सबसे बड़े डिजिटल टेक्नोलॉजी मंचों में शामिल इंडिया मोबाइल कांग्रेस का आयोजन दूरसंचार विभाग और सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के सहयोग से अक्टूबर में किया जाएगा। इसमें दुनिया भर के तकनीकी विशेषज्ञ, टेलीकॉम कंपनियां, स्टार्टअप निवेशक और नीति निर्माता शामिल होंगे। श्री सिंधिया ने बताया कि इस बार की थीम है सीमाओं के बिना विस्तार, जिसका उद्देश्य भारतीय तकनीक और डिजिटल समाधानों को पूरी दुनिया तक पहुंचाना है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अशांति लगातार बढ़ रही है। मरने वाले प्रदर्शनकारियों की संख्या बढ़कर 40 हो गई है। संयुक्त राष्ट्र

0: இன்னும் சில நொடிகளில் ஹிந்தியிலும் ஆங்கிலத்திலும் செய்தி அறிக்கை டெல்லி அஞ்சல்.
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रवि कपूर। लोकसभा ने लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक में 10 वर्ष तक के कारावास, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और अपराधियों की संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश को दैनिक सुनवाई के लिए विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने का आदेश दिया गया है। विधेयक में अपराधों की जांच पुलिस थाने में सूचना दर्ज होने की तारीख से 2 महीने के भीतर पूरी की जानी चाहिए। मुकदमे की सुनवाई आरोप पत्र दाखिल होने की तारीख से 3 महीने के भीतर पूरी होनी चाहिए। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि ये संशोधन कानून को और अधिक सख्त बनाने तथा त्वरित न्याय दिलाने के लिए किया गया है। डॉक्टर सिंह ने कहा कि नया विधेयक छात्रों और युवाओं के कल्याण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। डॉक्टर सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री ने टास्क फोर्स का भी गठन किया है। राज्यसभा ने राष्ट्रीय सम्मान की रक्षा के लिए राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक वंदे मातरम को राष्ट्रीय गान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करेगा। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि वंदे मातरम के अपमान के लिए अब 3 वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है।
2: राष्ट्रीय गीत अपमान पर इस विधेयक के माध्यम से दंडनीय प्रावधान करने का विचार हुआ है। वर्तमान संशोधन का उद्देश्य राष्ट्र गीत वंदे मातरम के जानबूझकर किए गए अपमान को भी उसी प्रकार के दंडनीय बनाया जाए जैसा कि वर्तमान कानून में है। हर भारतवासी के राष्ट्र प्रेम का उद्घोष है वंदे मातरम, विकसित भारत का संकल्प है वंदे मातरम।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 अगस्त को नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान का शुभारंभ करेंगे। ये नशाखोरी के खिलाफ 100 सप्ताह का राष्ट्रव्यापी जन भागीदारी आंदोलन है। इस पहल का लक्ष्य जागरूकता, सामुदायिक सहभागिता और निरंतर जन भागीदारी को बढ़ावा देकर नशा मुक्त भारत के निर्माण के लिए युवाओं को सामूहिक राष्ट्रीय मिशन में एकजुट करना है। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने नई दिल्ली में इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2026 के 10वें संस्करण की थीम जारी की है। एशिया के सबसे बड़े डिजिटल टेक्नोलॉजी मंचों में शामिल इंडिया मोबाइल कांग्रेस का आयोजन दूर संचार विभाग और सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के सहयोग से अक्टूबर में किया जाएगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अशांति लगातार बढ़ रही है। मरने वाले प्रदर्शनकारियों की संख्या बढ़कर 40 हो गई है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय ने प्रदर्शनकारियों की मौत पर चिंता व्यक्त की है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त के प्रवक्ता जेरेमी लॉरेंस ने कहा है कि एक नागरिक समाज संगठन को अपराधी घोषित करना और सभाओं पर कड़े प्रतिबंध लगाना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सभा और संगठन के अधिकारों के उल्लंघन के बारे में गंभीर चिंताएं पैदा करता है। अमेरिका ने ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड से जुड़े कई संस्थानों पर नए प्रतिबंध लगाए हैं। अमेरिकी राजकोष विभाग के अनुसार इन प्रतिबंधों के अंतर्गत 8 तेल टैंकरों और 10 कंपनियों को निशाना बनाया गया है। अमरीका का आरोप है कि ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड्स सेना होर्मुज जल डमरू मध्य से गुजरने वाले वाणिज्यिक जहाजों पर दबाव डाल रही है और उनसे अनिवार्य समुद्री बीमा लेने के लिए मजबूर कर रही है। अमरीका ने कहा है कि ये कदम ईरान के अवैध तेल व्यापार और गुप्त जहाज बेड़े पर दबाव बढ़ाने की उसकी नीति का हिस्सा है। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के अनिमेश कुजूर ने 200 मीटर दौड़ के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। राष्ट्रीय रिकॉर्ड धारक अनिमेश ने ग्लासगो में 20.46 सेकंड में रेस पूरी कर जीत दर्ज की।

0: ஒலித்த சூரியகாந்தி படத்தின் பாடல்களை பாடியவர்கள் மனோரமா, எஸ்பி பாலசுப்ரமணியம், டி எம் சவுந்தரராஜன், ஜே ஜெயலலிதா ஆகியோர். கேட்ட நிகழ்ச்சி நெஞ்சம் மறப்பதில்லை. சில நொடிகளில் செய்தியறிக்கைகள். டெல்லி அஞ்சல்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷவாணி சமாச்சார் கே சாத் மே ரவி கபூர். लोकसभा ने लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक में 10 वर्ष तक के कारावास, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और अपराधियों की संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश को दैनिक सुनवाई के लिए विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने का आदेश दिया गया है। विधेयक के अनुसार अपराधों की जांच पुलिस थाने में सूचना दर्ज होने की तारीख से 2 महीने के भीतर पूरी की जानी चाहिए और मुकदमे की सुनवाई

0: आरोपपत्र दाखिल होने की तारीख से 3 महीने के भीतर पूरी होनी चाहिए। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि ये संशोधन कानून को और सख्त बनाने तथा त्वरित न्याय दिलाने के लिए किया गया है। डॉक्टर सिंह ने कहा कि नया विधेयक छात्रों और युवाओं के कल्याण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। डॉक्टर सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री ने टास्क फोर्स का भी गठन किया है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस विधेयक के पारित होने पर विद्यार्थियों और युवा अभ्यर्थियों को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री वैष्णव ने कहा कि यह विधेयक परीक्षा में होने वाली अनुचित गतिविधियों पर सख्त अंकुश लगाएगा। राज्यसभा ने राष्ट्रीय सम्मान की रक्षा के लिए राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक वंदे मातरम को राष्ट्रीय गान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करेगा। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि वंदे मातरम के अपमान के लिए अब 3 वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है।
1: राष्ट्रीय गीत अपमान पर इस विधेयक के माध्यम से दंडनीय प्रावधान करने का विचार हुआ है। वर्तमान संशोधन का उद्देश्य राष्ट्र गीत वंदे मातरम के जानबूझकर किए गए अपमान को भी उसी प्रकार के दंडनीय बनाया जाए जैसा कि वर्तमान कानून में है। हर भारतवासी के राष्ट्र प्रेम का उद्घोष है वंदे मातरम, विकसित भारत का संकल्प है वंदे मातरम।
0: केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने नई दिल्ली में इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2026 के 10वें संस्करण की थीम जारी की है। एशिया के सबसे बड़े डिजिटल टेक्नोलॉजी मंचों में शामिल इंडिया मोबाइल कांग्रेस का आयोजन दूरसंचार विभाग और सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के सहयोग से अक्टूबर में किया जाएगा। श्री सिंधिया ने बताया कि इस बार की थीम है सीमाओं के बिना विस्तार, जिसका उद्देश्य भारतीय तकनीक और डिजिटल समाधानों को पूरी दुनिया तक पहुंचाना है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अशांति लगातार बढ़ रही है। मरने वाले प्रदर्शनकारियों की संख्या बढ़कर 40 हो गई है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय ने प्रदर्शनकारियों की मौत पर चिंता व्यक्त की है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त के प्रवक्ता जेरेमी लॉरेंस ने कहा कि एक नागरिक समाज संगठन को अपराधी घोषित करना और सभाओं पर कड़े प्रतिबंध लगाना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सभा और संगठन के अधिकारों के उल्लंघन के बारे में गंभीर चिंताएं पैदा करता है। विदेश मंत्रालय ने दोहराया है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के सभी इलाके और पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले क्षेत्र में भी भारत के अभिन्न और अविभाज्य अंग हैं। मंत्रालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा है कि पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले क्षेत्र में जारी चुनावी प्रक्रिया पाकिस्तान द्वारा अपने इस क्षेत्र में अपने अवैध कब्जे को छिपाने और क्षेत्र में हो रहे गंभीर मानवाधिकारों के उल्लंघन से ध्यान हटाने का मात्र एक दिखावटी प्रयास है। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने पैरा एथलेटिक्स में इतिहास रच दिया है। पुरुषों की 100 मीटर T47 स्पर्धा में भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण और रजत दोनों पदक अपने नाम कर लिए हैं। दिलीप महादू गावित ने 10.71 सेकंड का गेम्स रिकॉर्ड और अपने सत्र के सर्वश्रेष्ठ समय के साथ स्वर्ण पदक जीता, जबकि मोहम्मद बासिल मोरसिंगन नकात ने 10.83 सेकंड के समय के साथ रजत पदक हासिल किया। ये ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत का तीसरा स्वर्ण पदक है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: நேர்களே, இன்றைய இனியராகும் நிகழ்ச்சியில் இதுவரை உஸ்தாத் பிஸ்மில்லா கான் அவர்களின் ஷெனா இசை, பண்டிட் ஜெகதீஷ் பிரசாத் அவர்களின் பாட்டு ஆகியவை கேட்டோம். சில நொடிகளில் இந்தியிலும் ஆங்கிலத்திலும் செய்தி அறிக்கைகள் டெல்லியிலிருந்து அஞ்சலாகும்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே ரவி கபூர். लोकसभा ने लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक में 10 वर्ष तक के कारावास, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और अपराधियों की संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश को दैनिक सुनवाई के लिए विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने का आदेश दिया गया है। विधेयक के अनुसार अपराधों की जांच पुलिस थाने में सूचना दर्ज होने की तारीख से 2 महीने के भीतर पूरी की जानी चाहिए और मुकदमे की सुनवाई आरोप पत्र दाखिल होने की तारीख से 3 महीने के भीतर पूरी होनी चाहिए। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि यह संशोधन कानून को और अधिक सख्त बनाने तथा त्वरित न्याय दिलाने के लिए किया गया है। डॉक्टर सिंह ने कहा कि नया विधेयक छात्रों और युवाओं के कल्याण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। डॉक्टर सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री ने टास्क फोर्स का भी गठन किया है। राज्यसभा ने राष्ट्रीय सम्मान की रक्षा के लिए राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक वंदे मातरम को राष्ट्रीय गान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करेगा। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि वंदे मातरम के अपमान के लिए अब 3 वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है।
2: राष्ट्रीय गीत अपमान पर इस विधेयक के माध्यम से दंडनीय प्रावधान करने का विचार हुआ है। वर्तमान संशोधन का उद्देश्य राष्ट्र गीत वंदे मातरम के जानबूझकर किए गए अपमान को भी उसी प्रकार के दंडनीय बनाया जाए जैसा कि वर्तमान कानून में है। हर भारतवासी के राष्ट्रप्रेम

0: उद्घोष है वंदे मातरम, विकसित भारत का संकल्प है वंदे मातरम।
1: ग्रामीण विकास मंत्रालय ने दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से प्रोजेक्ट कंसर्न इंटरनेशनल इंडिया के साथ एक गैर वित्तीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते का उद्देश्य सार्वजनिक खरीद और बाजार से जुड़े उद्यम विकास के माध्यम से महिला नेतृत्व वाले उद्यमों, विशेष रूप से स्वयं सहायता समूह के नेतृत्व वाले उद्यमों को सशक्त बनाना है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अशांति लगातार बढ़ रही है। मरने वाले प्रदर्शनकारियों की संख्या बढ़कर 40 हो गई है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय ने प्रदर्शनकारियों की मौत पर चिंता व्यक्त की है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त के प्रवक्ता जेरेमी लॉरेंस ने कहा है कि एक नागरिक समाज संगठन को अपराधी घोषित करना और सभाओं पर कड़े प्रतिबंध लगाना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सभा और संगठन के अधिकारों के उल्लंघन के बारे में गंभीर चिंताएं पैदा करता है। विदेश मंत्रालय ने दोहराया है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के सभी इलाके और पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले क्षेत्र भी भारत के अभिन्न और अविभाज्य अंग हैं। मंत्रालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा है कि पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले क्षेत्र में जारी चुनावी प्रक्रिया पाकिस्तान द्वारा अपने इस क्षेत्र में अपने अवैध कब्जे को छिपाने और क्षेत्र में हो रहे गंभीर मानवाधिकारों के उल्लंघन से ध्यान हटाने का मात्र एक दिखावटी प्रयास है। जापान की आबादी लगातार घट रही है। जापान के गृह मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार देश में जापानी नागरिकों की आबादी पहली बार 12 करोड़ से नीचे आ गई है। 1 जनवरी तक जापानी नागरिकों की संख्या करीब 11 करोड़ 97 लाख दर्ज की गई, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 9,17,000 कम है। ये 1968 के बाद सबसे बड़ी वार्षिक गिरावट है। सरकार के प्रयासों के बावजूद देश में घटती जन्मदर के कारण जनसंख्या में लगातार कमी आ रही है। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने आज शानदार प्रदर्शन किया। खेल के 7वें दिन पुरुषों की T47 100 मीटर दौड़ में भारत ने स्वर्ण और रजत दोनों पदक जीत लिए। दिलीप महादू गावित ने 10.71 सेकंड का समय लेकर नया रिकॉर्ड बनाया और स्वर्ण पदक अपने नाम किया। वहीं मोहम्मद बासिल मोर्सिंगन काथ ने 10.83 सेकंड के समय के साथ रजत पदक जीता। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Ashish P. Abraham. The Lok Sabha has passed the anti-paper leak bill proposing tougher penalties and fast-track courts to curb exam malpractices yesterday. The bill seeks to amend the Public Examinations Prevention of Unfair Means Act 2024. The Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026 incorporates several significant provisions, including stringent penalties such as imprisonment for up to 10 years, fines of up to 10 crore rupees, and the seizure of the properties of convicted offenders. The legislation mandates that every state government and union territory administration establish special fast-track courts for the day-to-day trial. Replying to the discussion on the bill, Minister of State for Personnel, Public Grievances and Pensions, Dr. Jitendra Singh said the amendment in the bill has been brought to make the law more stringent and ensure speedy justice in paper leak cases. Dr. Singh criticized Leader of the Opposition and Congress MP Rahul Gandhi for using unparliamentary language, saying it is inappropriate and unfortunate. Earlier, participating in the discussion, Congress MP Rahul Gandhi said the students' protest on the NEET issue was not violence or hatred but a deep expression of the youth and all political parties must respect this expression. After the passage of the bill, the lower house was adjourned till 11 a.m. today. The Rajya Sabha has passed the Prevention of Insults to National Honour Amendment Bill 2026. The bill will further amend the Prevention of Insults to National Honour Act 1971. The proposed legislation seeks to give Vande Mataram the same statutory protection as the national anthem Jana Gana Mana. These offences are punishable with imprisonment up to 3 years, a fine, or both.

0: பொங்கும் மங்கலம் நிகழ்ச்சியில் இதுவரை மூஞ்சூர்பேட்டை எம் பழனி அவர்களின் நாதஸ்வரைசை கேட்டீர்கள். முள்ளந்திரம் எம் எம் வெங்கடேசன் அவர்கள் தவில். தொடர்வது இந்தியிலும் ஆங்கிலத்திலும் செய்தி அறிக்கைகள். டெல்லி அஞ்சல்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே ஃபர்ஹத் நாஸ். लोकसभा ने लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक में 10 वर्ष तक के कारावास, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और अपराधियों की संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश को दैनिक सुनवाई के लिए विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने का आदेश दिया गया है। विधेयक के अनुसार अपराधों की जांच पुलिस थाने में सूचना दर्ज होने की तारीख से 2 महीने के भीतर पूरी की जानी चाहिए और मुकदमे की सुनवाई आरोप पत्र दाखिल होने की तारीख से 3 महीने के भीतर पूरी होनी चाहिए। कार्मिक और लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा है कि ये संशोधन कानूनों को और अधिक सख्त बनाने तथा त्वरित न्याय दिलाने के लिए किया गया है। डॉ. सिंह ने कहा कि नया विधेयक छात्रों और युवाओं के कल्याण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। डॉ. सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री ने टास्क फोर्स का भी गठन किया है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित होने पर विद्यार्थियों और युवा अभ्यर्थियों को बधाई दी है। श्री वैष्णव ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये विधेयक परीक्षा में होने वाली गड़बड़ियों और अनुचित गतिविधियों पर सख्त अंकुश लगाएगा। राज्यसभा ने राष्ट्रीय सम्मान की रक्षा के लिए राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक वंदे मातरम को राष्ट्रीय गान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करेगा। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि वंदे मातरम के अपमान के लिए अब 3 वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है।
2: राष्ट्रीय गीत अपमान पर इस विधेयक के माध्यम से दंडनीय प्रावधान करने का विचार हुआ है। वर्तमान संशोधन का उद्देश्य राष्ट्र गीत वंदे मातरम के जानबूझकर किए गए अपमान को भी उसी प्रकार के दंडनीय बनाया जाए जैसा कि वर्तमान कानून में है। हर भारतवासी के राष्ट्र प्रेम का उद्घोष है वंदे मातरम, विकसित भारत का संकल्प है वंदे मातरम।
1: ग्रामीण विकास मंत्रालय ने दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से प्रोजेक्ट कंसर्न इंटरनेशनल इंडिया के साथ एक गैर वित्तीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते का उद्देश्य सार्वजनिक खरीद और बाजार से जुड़े उद्यम विकास के माध्यम से महिला नेतृत्व वाले उद्यमियों, विशेष रूप से स्वयं सहायता समूह के नेतृत्व वाले उद्यमियों को सशक्त बनाना है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि नवाचार, नई तकनीक, स्टार्टअप, लघु तथा मध्यम उद्यम और विश्व स्तर पर

इस पर ही विनिर्माण भारत की आर्थिक विकास यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। नई दिल्ली में आयोजित 22वें जेआरडी टाटा स्मृति व्याख्यान को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए देश को गुणवत्ता, नवाचार और प्रतिस्पर्धा के क्षेत्र में उत्कृष्टता हासिल करनी होगी। उन्होंने कहा कि अनुसंधान विकास नवाचार कोष, इंडिया एआई मिशन और दूसरे सेमीकंडक्टर मिशन जैसी पहले देश के नवाचार तंत्र को और मजबूत करेंगी। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने देश में सतत विमानन ईंधन अपनाने और अंतर्राष्ट्रीय विमानन के लिए कार्बन उत्सर्जन कम करने की योजना के क्रियान्वयन की तैयारियों की समीक्षा की। नई दिल्ली में हुई उच्चस्तरीय बैठक में श्री नायडू ने सतत विमानन ईंधन के उत्पादन, मिश्रण, कार्बन गणना और आपूर्ति व्यवस्था से जुड़ी रणनीति की जानकारी ली। नागर विमानन मंत्रालय ने बताया कि बैठक में सतत विमानन ईंधन उत्पादन परियोजनाओं, प्रमाणन प्रक्रिया और वर्ष 2027 से संभावित मांग को पूरा करने के लिए ईंधन की उपलब्धता पर चर्चा हुई। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अशांति लगातार बढ़ रही है। प्रदर्शन में मरने वाले प्रदर्शनकारियों की संख्या बढ़कर 40 हो गई है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय ने प्रदर्शनकारियों की मौत पर चिंता व्यक्त की है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त के प्रवक्ता जेरेमी लॉरेंस ने कहा है कि एक नागरिक समाज संगठन को अपराधी घोषित करना और सभाओं पर कड़े प्रतिबंध लगाना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सभा और संगठन के अधिकारों के उल्लंघन के बारे में गंभीर चिंताएं पैदा करता है। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने पैरा एथलेटिक्स के पुरुषों की 100 मीटर T47 स्पर्धा के फाइनल में स्वर्ण और रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। भारत के दिलीप महादू गावित ने 10.71 सेकंड का समय लेकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।